FM 101.1 MHz पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 28वीं तिथि, तदनुसार 18 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:57 हुए हैं। अब हमारी आज की ये सभा आरंभ होती है।

कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए सी एस राजन रचित देशभक्त गीत, स्वर सुरेश तिवारी और साथियों का है।

0: FM 101.2 MHz पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के ठीक 6 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत, कार्यक्रम है आस्था के स्वर।
1: आस्था के स्वर।

माँ अम्बिके। आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आस्था के स्वर। कार्यक्रम का अगला भजन है माँ इंदिरा देवी का, स्वर नंदिनी शरण का है।

0: चंद्रु आत्मा के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही आस्था के स्वर कार्यक्रम अब संपन्न हुआ।
1: आस्था के स्वर।

फीकी पड़ गई। वह मुनि के चरणों में धरती, गोधन, राजकोष, अपना सब कुछ अर्पित करने को प्रस्तुत थे, किंतु प्राणों से भी अधिक प्रिय राम को मुनि को देते किसी प्रकार नहीं बनता। ये सुकुमार किशोर भला किस प्रकार राक्षसों का सामना कर सकेंगे? तब गुरु वशिष्ठ ने अपने वचनों द्वारा राजा दशरथ का संदेह और अज्ञान दूर किया। राजा ने अपने दो पुत्र मुनि विश्वामित्र को सौंप दिए। पुरुष रूप में दो सिंह श्रीराम और लक्ष्मण मुनिजन के कष्ट हरने चले। श्याम और गौरवर्ण के दो परम सुंदर किशोरों के रूप में मुनिवर को जैसे दुर्लभ निधि प्राप्त हो गई हो। राह में ताड़का वध करते हुए दोनों भाई मुनि के आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने ऐसी विद्या प्राप्त की जिससे भूख प्यास न लगे तथा शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो।

अभी श्रीरामचरितमानस गान प्रसारित किया गया। गायक सर राजेंद्र काचरुका और आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के संगीत निदेशक श्री सतीश भाटिया। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं।

0: लीजिए प्रस्तुत है कृषि चर्चा, वाचक स्वर वाणी महोदय का है।
1: किसान भाई बहनों ने राम राम। आज कृषि चर्चा में हम बात करांगा पशु न कल्याण पौष्टिक आहार अजोला का बारे में। अजोला एक पानी सतह पर तैरने वाली फरना है। अजोला ख हरी खाद का रूप में उगायो जा सके। पशु न ख अजोला चारों खिलौने से पशु न में कैल्शियम फास्फोरस न आयरन की पूर्ति हो जेका सी पशु न को शारीरिक विकास अच्छो हो। अजोला ख आदर्श पशु आहार का रूप में भी जाने जाए। दुधारू पशु न ख उनका दैनिक आहार का साथ 1.5 से 2 किलोग्राम अजोला प्रतिदिन देने से पशु न को दुग्ध उत्पादन 15 से 20% अधिक हो। अजोला चारा ख पशु न ख खिलौने से गाय भैंस का दूध की गुणवत्ता भी बढ़ी जाए। अजोला चारा ख मुर्गी न ख भी खिलौनू चाहिए क्योंकि इस उपाच्य होने का साथ साथ मुर्गी न को पसंदीदा आहार भी छे। कुक्कुट आहार का रूप में भी एको प्रयोग करो जाए। बॉयलर पक्षी

0: न का भारम वृद्धि का साथ अंडानको उत्पादन भी अधिक हो। अजोला को उपयोग भेड़ बकरी सुकर न खरगोश बतख गाय भैंस का आहार का रूप में इस्तेमाल करो जा सकज। अब बात करें अजोला उत्पादन की। अजोला उत्पादन करण छायादार जगह को चुनाव करना चाहिए। न वहाँ पर 2 मीटर लंबो न 2 मीटर चौड़ो न 30 सेंटीमीटर गहरो गड्ढो खोदी न पानी का रिसाव ख रोकना का लेना इना गड्ढा का प्लास्टिक की शीट सी ढाकी देनु चाहिए। पराबैगनी किरण रोधी प्लास्टिक शीट को उपयोग करनु चाहिए। गड्ढा में 10-15 किलोग्राम मिट्टी फैलाई न 2 किलो गोबर न 30 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट 10 लीटर पानी में मिलाई न गड्ढा में डालनु चाहिए। 10-12 सेंटीमीटर तक पानी होनु चाहिए। अब एम 500 से 1000 ग्राम अजोला कल्चर ख पानी में डाली देनु चाहिए। अजोला बहुत तेजी से बढ़े न 10-15 दिन का अंदर पूरो गड्ढो अजोला सी ढकई जाए। एका बाद में 1000 ग्राम से 1500 ग्राम यानी कि 1 किलो से 1.5 किलो अजोला रोज छलनी सी न बाँस की टोकरी सी पानी का उपरा सी बाहर निकाले जा सकें। हर सप्ताह गड्ढा में 1 किलो गोबर न 20 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट डालना सी अजोला को विकास तेजी से होए। अजोला ख निकालने का बाद साफ पानी सी धोई न 1.5 से 2 किलोग्राम अजोला नियमित आहार का साथ पशु नख खिलायो जा सके। अब बात करें अजोला का उत्पादन में सावधानी न की। भाई बहनों अजोला की तेज बढ़वार न उत्पादन करना एक रोज लगभग 200 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से बाहर निकालनो जरूरी छे। समय समय पर गड्ढा न गोबर ख न सिंगल सुपर फास्फेट डालता रहनो चाहिए। हर महीना में एक बार अजोला का गड्ढा ख या टंकी सी 5 किलो मिट्टी निकाली न दूसरी ताज़ा मिट्टी डालनु चाहिए। जेका सी नत्रजन की अधिकता या दूसरा खनिज की कमी होना सी बचो जा सका। अजोला तैयार करने वाली टंकी या गड्ढा का पानी को पीएच मान को समय समय पर जांच करता रहना चाहिए। टंकी या गड्ढा का पानी को पीएच मान 5.5 से 7 का बीच होना चाहिए। हर 10 दिन का अंतर पर अजोला तैयार करने की टंकी या गड्ढा से 25 से 30% पानी काली न ओकी जगह ताजो पानी डालना सी नाइट्रोजन की अधिकता सी बचो जा सकज। साथज भाई बहनोनी हर 6 महीना का बाद एक बार अजोला तैयार करने की टंकी न गड्ढा ख पूरी तरह से खाली करी न साफ करनो चाहिए। न बाद में नया सिरा सी मिट्टी गोबर पानी न अजोला कल्चर डालनो चाहिए। तो किसान भाई बहनोनी आज की कृषि चर्चा में बस इतो।
1: आप सुन रहे थे कृषि चर्चा, विषय अजोला की खेती और वाचक स्वर वाणी महोदय का।
2: हाँ, जब तक निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवानी सुनी लेती है, जब तक तमक चैनन नहीं मिलतो है, तो आप भी सुनी लो निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
1: और श्रोताओं, आइए अब हम आपको आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। तो आपसे कुछ ही देर बाद 7:00 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा वार्ता मेरे घर के आंगन में एक पेड़। वार्ताकार होंगी सुषमा श्रीवास्तव। 7:20 पर होगा हमारा साप्ताहिक गुड मॉर्निंग खंडवा कार्यक्रम। निमाड़ी लोक संगीत का आनंद लीजिएगा 8:15 पर और 5:30। आपकी फरमाइश करेंगे पूरी और सुनवाएंगे आपकी ही पसंद की फिल्म नगमे आपके मीति गीत कार्यक्रम में 8:30 पर। 10:00 जिले की चिट्ठी हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे और 10:05 पर होगा हमारा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। 10:35 पर ग्रामीण बहनें सुने अपना पसंदीदा ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज होगी

भेंटवार्ता, एड्स, जानकारी ही बचाओ। इसके अलावा चर्चा होगी अनाजों व मसालों का सुरक्षित भंडारण विषय पर, घरेलू नुस्खे होंगे, घरेलू व्यंजन, रसोई टिप्स और होगा निमाड़ी लोकगीत। शाम 6 बजे युववाणी कार्यक्रम में आज सुने कुछ बातें कुछ गीत। फिल्म संगीत का लुत्फ उठाइएगा शाम 6:30 बजे। 7:21 पर खेती गृहस्थी कार्यक्रम में होगी किसान उपयोगी भेंटवार्ता, निमाड़ी लोक संगीत, कृषि समाचार, मौसम की जानकारी, मंडी भाव और आज की विशेष बातचीत। रात 9:15 स्पॉटलाइट हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। तो ये थे आज के शेष कार्यक्रम।

0: अरे क्या बात है, सुबह की चाय और अखबार दोनों मिल जाए तो सुबह का आनंद दोगुना हो जाता है।
1: जी हुजूर, यदि चाय और अखबार के साथ हो निमाड़ की सुरीली धड़कन तो सुबह और भी सुहानी हो जाती है ना?
0: बिल्कुल सही कहा। तो सुनते रहिए
1: निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।
2: आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर।

आज की ताजा खबर में पेश है आज प्रकाशित विभिन्न समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खियां। जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आज। मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को जानकारी देने के उद्देश्य से ये बैठक आयोजित की गई है। जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान आज होगा शुरू। जनजाति विभाग के लिए शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार करने और इन योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 25 मई तक अभियान संचालित किया जाएगा। खंडवा जिले के 305 गांवों में ये शिविर आयोजित होंगे। इन शिविरों में कुल 18 विभाग की 25 सेवाओं से ग्रामीणों को उनकी पात्रता अनुसार लाभान्वित किया जाएगा। इंद्रपुरी कॉलोनी में नई बनेगी क्षतिग्रस्त पुलिया। निर्माण की तैयारी शुरू कर दी गई है। एक महीने के भीतर पुलिया बनकर तैयार हो जाएगी। फिलहाल यहां निर्माण कार्य के चलते मार्ग को बंद कर दिया गया है। ग्राम बोरगांव बुजुर्गों में विधिक सहायता शिविर संपन्न। इसके अंतर्गत संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों, गिरफ्तारी के समय नागरिकों के अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता और पॉक्सो अधिनियम के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। गुड़ीखेड़ा में होगा 16.78 करोड़ रुपए की लागत से महाविद्यालय का निर्माण। कल हुआ भूमि पूजन संपन्न। और अब एक नजर खेल समाचार पर। थाईलैंड ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स में सात्विक रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने रजत पदक जीता। ग्रैंड चेस टूर के अंतर्गत भारतीय ग्रैंड मास्टर और प्रज्ञानंद ने जर्मनी के वेसेंट कीमर के साथ ड्रॉ खेलकर सुपर शतरंज क्लासिक के तीसरे दौर में संयुक्त बढ़त बनाए रखी है। और अब एक नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। जिले में नमी का परिसंचरण होने से बादलों की आवाजाही बढ़ रही है, इससे उमस। इसके चलते कल दिन का अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये थी आज की ताजा खबरें। समाचारों का संकलन किया फातिमा लोखंडवाला ने।

0: सुबह बनारस, शामे अवध और शबे मालवा की तो क्या बात है।
1: लेकिन जब साथ में हो निमाड़ की सुरीली धड़कन तो यहाँ की सुबह भी किसी से कम नहीं है ना।
0: जी हाँ, सुनते रहिए आकाशवाणी खंडवा।

0: FM 101.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत आज सुनिए वार्ता, मेरे घर के आंगन में एक पेड़। वार्ताकार हैं सुषमा श्रीवास्तव।
1: गर्मियां आते ही कूलर एसी की डिमांड बढ़ जाती है, हो भी क्यों ना। एक बार पानी भरा नहीं कि बस दिन भर की फुर्सत, तो वहीं सुबह शाम पौधों और घर के बाहर छिड़काव भी आप कर ही देते हैं, ताकि आपके लॉन और घर की हरियाली में किसी तरह की कोई कमी ना आने पाए और साथ ही साथ मौसम की ठंडक में थोड़ा इजाफा भी हो सके। फिर खरीदते हैं गुलदान, सुंदर सुंदर वॉज और न जाने क्या क्या। फिर मन में एक ख्याल आता है, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। साथियों, अगले पल की हमें खबर नहीं, लेकिन वर्तमान को हम अपनी नेकियों से सवार जरूर सकते हैं। बदलते पर्यावरण से हम सब वाकिफ हैं। मानव के स्वामित्व की वजह से आज पूरी दुनिया के जीवों का जीवन मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि शायद हमें अपने दायित्वों का ज्ञान नहीं है। पर्यावरण के बदलाव से जीवों की जीवन शैली पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। गर्मी का मौसम पक्षियों के लिए बहुत कठिन होता जा रहा है। ऐसे में याद आती है दादी नानी की कहानी, जिसमें एक पेड़ होता था, उस पर ढेर सारे पंछी, वो दाने डाल डाल कर उनको बुलाना और उनका अपने घोंसलों से निकल कर आना। जैसे दादी या नानी कह रही हूँ, चहचहाती चंद चिड़ियों का बसर था पेड़ पर, चहचहाती चंद चिड़ियों का बसर था पेड़ पर, मेरे घर एक पेड़ था और एक घर था पेड़ पर। ये था शब्द भयावह नहीं लगता, लगना चाहिए, क्यों चलिए जानते हैं। एक दौर था जब शहर में पानी के तमाम प्राकृतिक स्रोत मौजूद थे, मगर आज ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पानी के प्राकृतिक स्रोत न के बराबर हैं। जो बचे हैं उनका पानी योग्य नहीं है, जिससे वे बीमार भी हो सकते हैं या स्रोतों के सूख जाने पर प्यास से मर भी सकते हैं और मर रहे हैं। पक्षियों के लिए गर्मी के दिनों में पानी की एक बूंद जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकता है और बन सकता है विलुप्त होने का कारण। विलुप्त हो रही विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों से जानते हैं क्या हो रहा है। इससे बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन प्रदूषण, साथ ही इन पक्षियों के विलुप्त होने से लोग इनकी आवाज़ सुने तक को तरस गए हैं। यदि यही परिस्थिति रही तो वो दिन दूर नहीं जब हमें मायूसी से कहना पड़े, अब तो चुपचाप शाम जाती है, पहले चिड़ियों के शोर होते थे। जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की जैव विविधता प्रभावित हो रही है, इसके चलते पशु पक्षी नदियाँ पर्वत पठार सब प्रभावित हो रहे हैं। कई क्षेत्रों में बर्फ पिघल रही है, जिससे बाढ़ की स्थिति पैदा होने से वहां रहने वाले जीव जंतुओं पर खतरा मंडरा रहा है। लगातार तापमान बढ़ने से न केवल मनुष्य बल्कि पक्षियों के लिए भी विनाशकारी संकट उत्पन्न हो गया है। यदि संकट इन मासूम पंछियों पर है तो क्या हमारे जीवन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। आइए जानते हैं कुछ उदाहरणों से। विलुप्त पक्षियों में सबसे पहले जिक्र करते हैं गिद्ध पक्षी का। जी हाँ, गिद्ध पक्षी वातावरण को स्वच्छ

बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका बनाता था। मृत पशुओं के सफाई के लिए गिद्ध प्रजाति के पक्षी उसके मांस का भक्षण करते थे। देखते ही देखते मृत पशुओं का केवल कंकाल ही रह जाता था। गिद्ध पक्षियों की संख्या में कमी के कारण मृत पशु शरीर सड़ जाते हैं और दुर्गंध से वातावरण प्रदूषित होता रहता है। लोगों में विभिन्न बीमारियों के फैलने का खतरा बना रहता है। आज मृत पशुओं के विच्छेदन होने के बाद उनका मांस हफ्तों तक पड़ा पड़ा सड़ता रहता है। इसी क्रम में आगे बढ़ें तो विलुप्त पक्षियों के दूसरे क्रम में गौरैया का स्थान है, जो अक्सर घरों में अस्थायी तौर पर निवास करती थी। ये पक्षी लोगों को अपनी सुरीली आवाज से मंत्रमुग्ध करने के साथ घर में नुकसान करने वाले कीट पतंगों को खाकर घरेलू वातावरण को शुद्ध करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। जब से इन पक्षियों ने घरों को छोड़ दिया, तभी से बीमारियां फैलाने वाले कीट पतंगों की संख्या में भारी इजाफा देखा जा सकता है। विलुप्त पक्षियों में बया की कलात्मकता को कैसे भूला जा सकता है, जिसका घोंसला बनाने का ढंग एक इंजीनियर की बुद्धि को भी मात देता है। विलुप्त होते पक्षियों से पर्यावरण संतुलन और बिगड़ता जा रहा है। पेड़ पौधों पर विचरण करने वाले ये पक्षी अपना स्थान तो सुरक्षित नहीं कर सकते। मानव समाज द्वारा बनाए गए पिंजरों में कैद होकर शो पीस बनकर कहीं कहीं जरूर रह गए हैं। अनेक पक्षी प्रजातियों की लगातार विलुप्त होती संख्या बड़ी चिंता का विषय है। इससे पूरे विश्व की जैव विविधता प्रभावित हो रही है। भारत में कई पक्षी प्रजातियां लगातार कम होती जा रही हैं। हाल ही में पक्षियों से संबंधित एक रिपोर्ट में लगभग 30,000 पक्षी प्रेमियों के आंकड़ों के आधार पर कहा गया है कि भारत में पक्षी प्रजातियों की संख्या में लगातार गिरावट देखने को मिली है। विशेषज्ञों के अनुसार इस रिपोर्ट में 942 पक्षी प्रजातियों के मूल्यांकन के आधार पर पाया गया कि 142 पक्षी प्रजातियों में लगातार कमी हो रही है। स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड्स के मुताबिक रैप्टर, जो प्रवासी समुद्री पक्षी है, और बतख, इनकी संख्या में सबसे अधिक गिरावट देखने को मिली है। एवेस, अमेरिकन वेटरनिटी एपिडमायोलॉजी सोसाइटी, इसके अंतर्गत सभी ज्ञात पक्षी प्रजातियों में से लगभग 11,154 हैं, जिनमें से 159 यानी 1.4% विलुप्त हो गई हैं और 226 अर्थात 2% गंभीर रूप से खतरे में हैं। पक्षी विज्ञानियों के अनुसार मानव जनित गतिविधियां जारी रही तो 21वीं सदी के अंत तक सभी पक्षी प्रजातियों में से और एक तिहाई पक्षी आबादी का एक बड़ा हिस्सा विलुप्त हो जाएगा, जो समस्त पर्यावरण और मानव जाति के लिए बहुत बड़े खतरे का कारण हो सकती है। सवाल ये है कि खतरा बढ़ाया किसने? गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है। इस मौसम में आराम करने के लिए पक्षियों को पेड़ों की घनी छाया की जरूरत है। हमने वो पेड़ छीन लिए। खुले आसमान में बेपरवाह उड़ने की चाह थी उनकी। हमने गगनचुंबी इमारतों से वो आसमान पाट दिया। इस किए पर वो उन इमारतों से टकराकर मर न जाए तो करें क्या? उन्हें जंगल पसंद थे। हाँ, हमने उन्हें जंगल दिए, कंक्रीट के जंगल। क्या इन पक्षियों के बारे में सोचा? आखिर वो भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है, एक अहम हिस्सा। आखिर उन्हें भी तो इस मौसम की मार को झेलने के लिए पानी की जरूरत है, खाने की दरकार है। अब इन बेजुबानों के लिए ये सारी व्यवस्था करने कौन आएगा? इन सब सवालों का जवाब है हम। जी हाँ, ये जिम्मेदारी हमारी है। इनकी सुरक्षा और देखभाल कैसे करें, आइए जानते हैं। चाहे गर्मी अभी शुरू हो रही हो, गर्मियों के पक्षियों की देखभाल के लिए बहुत कम समय और थोड़ी सी जगह की आवश्यकता होती है। बस आपके मन में सेवा भाव होना चाहिए। घर के बाहर बगीचे में, छत पे या बालकनी में अनेक पक्षियों की जरूरत को पूरा किया जा सकता है। भूखे पक्षियों की भूख मिटाने के लिए घर के बाहर छांव में अनेक प्रकार के बीज रखे जा सकते हैं, जैसे चावल, गेहूं, मूंगफली, सूरजमुखी, और ताजे पानी की व्यवस्था भी की जानी चाहिए, क्योंकि जैसे ही तापमान में वृद्धि होती है वैसे ही छोटे प्राकृतिक जल स्रोत जैसे पोखर और नदी नालों में पानी घटने लगता है और कई तो सूख भी जाते हैं। ऐसे में अच्छे और साफ पानी की तलाश को हम आसानी से पूरा कर सकते हैं। कई बार तो आपने एक छोटी सी चिड़िया को गर्मी के दिनों में पानी से भरे छोटे से गड्ढे में नहाने के लिए संघर्ष करते देखा ही होगा। इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि इन बेजुबानों को गर्मी की वजह से कितनी परेशानी उठानी पड़ती होगी। जिस तरह गर्मी में आपके लिए जगह जगह प्याऊ की व्यवस्था की जाती है, ठीक वैसे ही पक्षियों के लिए भी की जानी चाहिए।
ताकि उन्हें गर्मी में तृष्णा न सहनी पड़े। कुछ बातों को ध्यान में रखकर हम अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा सकते।

0: जैसे घर के बाहर या छांव वाली जगह पर बालकनी इत्यादि में बर्तन में पानी भरकर रखें। पक्षियों के लिए भोजन ऐसे स्थान पर रखें कि उन्हें भोजन की तलाश में ज्यादा दूर न जाना पड़े। साथ ही शिकारी पशुओं की पहुंच से भी भोजन का स्थान दूर होना चाहिए। पानी और दाना नियमित तौर पर बरकरार रखें। इस चीज को सुनिश्चित कर लें कि पानी का बर्तन पक्षी के आकार के लिहाज से उचित हो। ज्यादा छोटा या ज्यादा बड़ा बर्तन भी ठीक नहीं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पक्षियों को ऐसा भोजन बिल्कुल ना दें जिनमें कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग होता है, बल्कि उगाई जाने वाली चीजों पर कीटनाशकों का कम से कम प्रयोग किया जाए। बस इन्हीं सब बातों को अमल में लाते हुए और भीषण गर्मी को देखते हुए, गर्म मौसम में जहाँ आराम करने के लिए पक्षियों के छांव की जरूरत होती है, वहीं एक सच्चे हमदर्द और मित्र की भी जरूरत होती है, वो हम बन सकते हैं। इस भागदौड़ भरे जीवन में थोड़ा सा समय निकालकर हमें इनकी सहायता करनी चाहिए। इनकी जरूरत भी कोई ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा पानी और दाने। फिर देखिए मन को कितना सुकून मिलता है, जैसे तपती रेत पर पानी की एक बूंद। यकीन मानिए, फिर ये पक्षी सिर्फ दादी नानी की कहानियों में नहीं बल्कि हमारे आंगन में चहचहाते दिखेंगे। महसूस कीजिए अपना आंगन और उसमें चहचहाते पक्षी, आपका मन बोल उठेगा, शायद अब तक मुझ में कोई घोंसला आबाद है, शायद अब तक मुझ में कोई घोंसला आबाद है, घर में ये चिड़ियों की चहकारें कहां से आ गई। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।
1: विशेष कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष वार्ता, मेरे घर के आंगन में एक पेड़, वार्ताकार सुषमा श्रीवास्तव। हम सुबह के 7:10 हुए हैं। प्रादेशिक समाचार बस कुछ ही पलों में आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। 43 साल बाद नॉर्वे पहुंचने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। कल होगा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन। स्वीडन के सर्वोच्च रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से नवाजे गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देवास पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में लापरवाही भारी पड़ी। एसडीओपी और एसडीएम समेत 4 अधिकारी निलंबित। और प्रदेश में गर्मी का कहर, राजगढ़ में पारा 45 डिग्री। मौसम विभाग ने जारी किया 28 जिलों में लू का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे पहुंचेंगे। 43 साल में यह पहला मौका है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री नॉर्वे की यात्रा पर जा रहे हैं। वे नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास स्टोरे के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। कल तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें 5 नॉर्डिक देशों के प्रमुख शामिल होंगे। ग्रीन एनर्जी, समुद्री अर्थव्यवस्था, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं कल श्री मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन की बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। उन्होंने कंपनियों से मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन हाइड्रोजन और क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में भारत में निवेश बढ़ाने की अपील की।
1: स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी एंड एआई कॉरिडोर को मजबूत करने के लिए ठोस इनिशिएटिव्स पर काम करेंगे। दोनों देशों के स्टार्टअप्स और रिसर्च इकोसिस्टम्स के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए हम इंडिया स्वीडन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर बनाने जा रहे हैं।
0: स्वीडन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां के प्रतिष्ठित रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के कमांडर ग्रैंड क्रॉस सम्मान से नवाजा गया। यह सम्मान आमतौर पर राष्ट्राध्यक्षों को कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में योगदान के लिए दिया जाता है। इस सम्मान के साथ श्री मोदी को अब तक दुनिया के अलग अलग देशों से कुल 31 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। जबलपुर में कल हाईकोर्ट के कई डिजिटल

0: प्लेटफॉर्म एक साथ लॉन्च किए गए। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने इस पहल की तारीफ करते हुए कहा कि यह व्यवस्था पूरे देश में लागू होनी चाहिए। अब कोर्ट की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग, ऑर्डर की डिजिटल कॉपी और कैदियों की रिहाई की प्रक्रिया ऑनलाइन हो सकेगी। एआई से लैस प्रथम सिस्टम और संकेत वाणी ऐप भी लॉन्च हुई, जो सुनने और बोलने में अक्षम लोगों की मदद करेगी। प्रदेश में आज पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया जाएगा। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में सुबह 10 बजे कार्यक्रम होगा। इस चैटबॉट से लोग घर बैठे सोलर पैनल लगवाने की पूरी जानकारी और आवेदन प्रक्रिया समझ सकेंगे। रायसेन में बीजेपी का पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान कल खत्म हुआ। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी की असली ताकत होते हैं। वहीं विदिशा में श्री चौहान ने कैंसर मरीजों के लिए एक बड़ी घोषणा भी की।
1: यहाँ मेडिकल कॉलेज या जिला अस्पताल विशेषकर मेडिकल कॉलेज में अगर जगह मिल जाए तो वहाँ स्टेजेज में वो शुरू करेंगे कैंसर का इलाज। पहले स्टेज में वो उस जगह पर कीमोथेरेपी से शुरू करेंगे। मुझे विशेषकर चिंता थी मेरी बहनों की, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर बड़ी संख्या में होता है और बहनें बताती नहीं। तो ये आया कि एक व्यापक पैमाने पर स्क्रीनिंग हो जो 5, 6 और 7 जून को। तो टाटा मेमोरियल वालों ने सुझाव दिया कि 3 दिन करने।
0: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: धार की भोजशाला में कल सुबह मां वाग्देवी की प्रतिकृति गर्भगृह में स्थापित की गई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश के बाद सुबह 6:27 पर मंत्रोच्चार और हवन के बीच यह पूजन संपन्न हुआ। 15 मई को हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भोजशाला को मां वाग्देवी का मंदिर मानते हुए हिंदू पक्ष में फैसला सुनाया था। कोर्ट ने 2003 का वह आदेश भी रद्द कर दिया जिसमें मुस्लिम पक्ष को हर शुक्रवार नमाज की अनुमति दी गई थी। अब रुख करते हैं एक अच्छी खबर का। बैतूल के किसान कमलेश देशमुख ने आधुनिक तकनीकी अपनाकर खेती की तस्वीर बदल दी है। कृषि अभियांत्रिकी विभाग की योजना का लाभ उठाते हुए उन्होंने खेती को घाटे के काम से निकालकर मुनाफे का व्यवसाय बना दिया है। उनकी ये कामयाबी जिले के दूसरे किसानों के लिए भी प्रेरणा बन रही है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे बैतूल संवाददाता मयंक भार्गव।
3: बैतूल जिले के एक युवा किसान कमलेश देशमुख ने आधुनिक तकनीकी को अपनाकर खेती को लाभकारी व्यवसाय में बदल दिया है। पारंपरिक खेती से आगे बढ़ते हुए उन्होंने न केवल अपनी आय में उल्लेखनीय वृद्धि की है बल्कि क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने हैं। इस युवा किसान ने बढ़ती लागत और घटते मुनाफे को देखते हुए वैज्ञानिक पद्धति अपनाई और खेती को व्यवसाय के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया, जिससे मध्य प्रदेश शासन की किसान हितैषी योजनाएं भी मददगार साबित हुई।
4: मैंने कृषि अभियांत्रिकी विभाग की योजना से 9,60,000 रुपए का अनुदान लेकर कस्टमाइजिंग सेंटर स्थापित किया है। इसके साथ ही मैंने सुपर सीडर थ्रेसर रोटेटर को व्यवसाय का रूप देते हुए पहले वर्ष में 8,00,000 रुपए का और दूसरे वर्ष में 12,00,000 रुपए का लाभ प्राप्त किया है।
3: आज कमलेश देशमुख क्षेत्र के किसानों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। उनका मानना है कि नई तकनीक योजनाओं का समुचित उपयोग और नवाचार की सोच से खेती को लाभकारी एवं टिकाऊ व्यवसाय बनाया जा सकता है। बैतूल से मयंक भार्गव।
0: देवास के टोककला के पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के बाद सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। पुलिस और राजस्व विभाग के 4 अधिकारियों को तत्काल निलंबित कर दिया गया। जांच में सामने आया कि फैक्ट्री में तय मात्रा से ज्यादा विस्फोटक सामग्री रखी थी और सुरक्षा के इंतजाम भी कमजोर थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 मई को राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। इस साल कुल 131 पुरस्कार दिए जाएंगे जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं और 16 लोगों को यह पुरस्कार मरणोपरांत सम्मान के रूप में दिया जाएगा। 1954 से शुरू ये पुरस्कार हर साल गणतंत्र दिवस पर घोषित किए जाते हैं और देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में गिने जाते हैं। भारतीय नौसेना ने भोपाल की अपर झील में अपना नौकायन केंद्र शुरू किया है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कल इसका उद्घाटन किया। यह केंद्र नौसेना के साथ साथ एनसीसी कैडेट्स को भी रोइंग, कयाकिंग और कैनोइंग का प्रशिक्षण देगा। 5 साल पहले शुरू हुई नेशनल एक्शन प्लान फॉर टॉयज योजना आज रंग लाने लगी है। देश में खिलौनों का उत्पादन बढ़ा है और चीन से आयात में काफी कमी आई है। विदेशी खिलौनों पर आयात शुल्क 20 से बढ़ाकर 70% किए जाने का असर साफ दिख रहा है।

बाजार में अब घटिया और असुरक्षित खिलौनों पर भी लगाम लगी है। अलीराजपुर के कट्ठीवाड़ा में उगने वाला नूरजहां आम अपने विशालाकार की वजह से दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहा है। ये एक आम का वजन 2 से 5 किलो तक होता है, इसलिए इसे किंग ऑफ मैंगो भी कहते हैं। बाजार में इसकी कीमत 1500 से 3000 रुपये प्रति आम तक पहुंच जाती है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में गर्मी का कहर जारी है। कल राजगढ़ में पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा रहा। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, रतलाम और खंडवा समेत 28 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 4 दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री और बढ़ सकता है। लोगों से दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच घर से बाहर न निकलने की अपील की गई है। अब खबर क्रिकेट की। आईपीएल में कल दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। वहीं दूसरे मैच में आरसीबी धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर आईपीएल प्लेऑफ में जगह पक्की करने वाली पहली टीम बन गई। आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सीएसके और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में आज मतदाता सूची पुनरीक्षण पर जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की जाएगी। खजुराहो में कल सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने 50 बिस्तरों वाले आयुष वेलनेस सेंटर और एलीट शिक्षण संस्थान खोलने की घोषणा की। भोपाल के जनजाति संग्रहालय में संभावना गतिविधि के तहत कोरकू, बुंदेली और बघेली लोक नृत्य गायन की रंगारंग प्रस्तुति हुई। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटिक ने सागर से टीकमगढ़ तक का सफर सरकारी काफिले की जगह आम यात्री बस से किया। बैतूल में पर्यटन बोर्ड की जनजाति पर्यटन परियोजना के तहत बज्जरवाड़ा गांव में 3 नए ग्रामीण होम स्टे का उद्घाटन किया गया और विदिशा में 59,000 से अधिक किसानों से 5,09,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 43 साल बाद नॉर्वे पहुंचने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। कल होगा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन। स्वीडन के सर्वोच्च रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से नवाजे गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देवास पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में लापरवाही भारी पड़ी। एसडीओपी और एसडीएम समेत 4 अधिकारी निलंबित। और प्रदेश में गर्मी का कहर जारी। राजगढ़ में पारा 45 डिग्री। मौसम विभाग ने जारी किया 28 जिलों में लू का अलर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: एफएम 91.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक गुड मॉर्निंग खंडवा कार्यक्रम।

0: तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में सब है हमारे पास, गोलगप्पे, जलेबी, समोसा, आइसक्रीम और चाय,
1: आप सबकी और हमारी सबकी पसंदीदा चाय।
0: चाय।
2: छोटू आया है क्या? चाय लाया है?

0: जागो जागो जागो, सुबह हो गई, जल्दी से ले लो चाय, ठंडी हो गई। कोई
1: विद्या जी कहते हैं हमारे देश में दो चीजें बिना बुलाए घर पहुंच जाती हैं, एक रिश्तेदार और दूसरी चाय।
2: बिल्कुल, आप थक गए हो तो चाय, नींद आ रही हो तो चाय, जागना हो तो चाय, आपके मेहमान आए तो चाय, दुखी हो तो चाय, दोस्तों से गपशप करना हो तो चाय, किसी का गम भुलाना हो तो चाय, किसी की खुशी में शामिल होना हो तो चाय,
1: दोस्तों के साथ मिलकर गपशप करने का बहाना चाहिए हो तो चाय,
2: किसी की नाराजगी मिटाना हो तो चाय, किसी को
1: मनाना हो तो भी चाय।
2: भारत का एक ऐसा पेय जो दिलों को जोड़ने वाला पेय कहा जाता है, और चाय केवल एक ड्रिंक नहीं बल्कि हमारी आदत, अपनापन और बातचीत का हिस्सा बन चुकी है।
1: और क्या कहते हैं कि जब तक चाय ना पिए सुबह उठकर, तब तक तो कुछ काम करने का मन ही नहीं होता है।
2: बहुत तारीफ हो गई चाय की, और अब ये गीत तो बनता है जो हमने खास चाय के लिए चुना है।

श्रोताओ, आप सोच रहे होंगे कि आज सुबह सुबह भाई हम गुड मॉर्निंग खंडवा कार्यक्रम में चाय की बात क्यों कर रहे हैं? तो ये अगर आपको जानना है श्रोताओं, तो अंत तक आपको सुनना होगा हमारे साथ गुड मॉर्निंग खंडवा।

0: विद्या जी, इन दिनों अधिक मास चल रहा है या जिसे मल मास के नाम से भी जाना जाता है, तो विद्या जी अधिक मास आखिर आता ही क्यों है?
1: कृति, अधिक मास हिंदू पंचांग का एक विशेष और अत्यंत पवित्र महीना माना जाता है। इसे पुरुषोत्तम मास और मल मास के नाम से भी जाना जाता है। ये महीना लगभग 32 महीने और 16 दिन बाद आता है और धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण भी माना जाता है।
0: यानी कि यूं कहे कि कैलेंडर का संतुलन बनाए रखने के लिए ये अतिरिक्त महीना आता है जिसे अधिक मास कहते हैं।
1: हाँ, ये भी कहा जाए कि हिंदू कैलेंडर चंद्रमा की गति पर आधारित होता है जबकि अंग्रेजी कैलेंडर सूर्य की गति पर आधारित होता है। तो चंद्र वर्ष लगभग 354 दिन के होते हैं और सौर वर्ष लगभग 365 दिन के, और दोनों के बीच में लगभग 11 दिनों का अंतर होता है। और जब ये अंतर बढ़कर लगभग 30 दिनों के बराबर हो जाता है तब हिंदू पंचांग में एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है। इसी अतिरिक्त महीने को अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है।
0: यानी कि बोनस महीना। जैसे ऑफिस में बोनस सैलरी आती है वैसे ही, बस फर्क इतना सा है कि सैलरी में खुशी होती है, और अधिक मास बीच में आ जाए तो शादी वाले कहते हैं अब एक महीना और इंतजार करना पड़ेगा।
1: इंतजार का महीना, व्रत रखने का महीना, कथा सुनने का महीना, भजन कीर्तन, गीता रामायण पाठ करने का और दान पुण्य करने का भी ये अधिक मास होता है। और ये मान्यता है कि इस महीने में किए गए धार्मिक कार्यों का कई गुना फल प्राप्त होता है। कीर्ति, अधिक मास है और ज्येष्ठ के दो महीने आए हैं। ज्येष्ठ के महीने में सबसे ज्यादा
0: गर्मी पड़ती है
1: और बाहर निकलना एकदम नामुमकिन सा हो जाता है, क्योंकि गर्मी के मौसम में दोपहर 12 बजे से शाम के 4 बजे तक का समय सबसे ज्यादा गर्म माना जाता है। इस दौरान जो सूरज की किरणें होती है ना, वो सीधे
0: पृथ्वी पर
1: पड़ती है जिससे शरीर पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए डॉक्टर और स्वास्थ्य विशेषज्ञ इस समय धूप में कम निकलने की सलाह देते हैं।

धूप में बाहर न निकलने की सलाह देने वाला हमारा ये गीत कीर्ति के साथ साथ हमारे सभी श्रोताओं के लिए भी है, क्योंकि इस कड़कड़ाती धूप में गोरा रंग थोड़ा बहुत काला हो जाए तो चलेगा, लेकिन आप बीमार हो जाएं ये बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि आपका स्वस्थ रहना आपके परिवार के लिए तो जरूरी है और हमारे लिए भी जरूरी है। भाई हमारे कार्यक्रम सुनकर इतनी अच्छी अच्छी प्रतिक्रियाएं भला कौन लिखेगा, इसलिए स्वस्थ रहिए, मस्त

0: रहिए, सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा। और अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे।
1: बिल्कुल, पर जैसे कि आपने जिक्र किया कि इस बार तो ज्येष्ठ मास दो बार आने वाले हैं, तो कहने का मतलब गर्मी लंबी चलेगी।
0: बिल्कुल लंबी चलेगी गर्मी, और उसके बाद नौ तपा, जो नौ दिन की धूप तपती है, तो इसमें हमारा बचाव बहुत जरूरी है। फिलहाल ज्येष्ठ मास में मौसम कैसा रहने वाला है, इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए हमने कार्यक्रम में शामिल किया है कृषि महाविद्यालय से मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर सौरभ गुप्ता जी को।
2: मैं डॉक्टर सौरभ गुप्ता, कृषि एवं मौसम विशेषज्ञ खंडवा।
0: स्वागत है गुड मॉर्निंग खंडवा कार्यक्रम में आपका। और डॉक्टर साहब, जैसा कि आप देख रहे हैं, मौसम दिन दोपहर सुबह शाम और हर तीसरे दिन अपना रंग बदल रहा है, तो मौसम के इस मिजाज का आप कारण बताइए।
2: जी सभी, तो सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपने बताया, मौसम मिजाज बहुत ज्यादा बदल रहा है और इसका कारण भी सामने है। जनसामान्य, किसान भाई, या सभी लोग जान रहे हैं कि वैश्विक गर्माहट का बहुत ज्यादा असर हमारे भारत देश पे लगातार हो रहा है। साथ ही साथ खाड़ी क्षेत्र जो अपना अरब सागर है, उसके पास भी लगातार युद्ध की स्थिति बनी हुई है, जो भी काफी हद तक प्रभावित कर रही है। और दूसरा एक मुख्य कारण है जिसको हो सकता है हम लोग ठीक कर सकें, कि वृक्षारोपण, लगातार जंगलों के काटे जाने से भी, या जंगल की आग जो होने में आ रही है, तो उसके चलते भी वैश्विक गर्माहट काफी हद तक बढ़ रहा है। तो इसी कारण हम देख रहे हैं कि हमारे खंडवा जिले में अभी बीते चार पांच दिन में टेम्परेचर लगभग 43.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। रात का तापमान भी लगभग 33 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। लेकिन अभी दोबारा से पाकिस्तान के ऊपर से पश्चिम विक्षोभ का असर हुआ, जिसके कारण राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश हुई और दोबारा से तापमान में हल्की सी, मतलब लगभग 42-45 के आसपास आ गया है, ये स्थिति आ चुकी है। लेकिन अभी भी दक्षिण भारत में बंगाल की खाड़ी में, जिसका मूवमेंट वर्मा साइड है, म्यांमार साइड दिख रहा है मुझे, तो उसके कारण लगातार नमी का परिसंचरण हमारे खंडवा जिले में भी देखने को मिल रहा है, मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। उसके चलते बादलों का आवागमन जारी है, और बादलों के आने से चूंकि टेम्परेचर भी 43 से ऊपर है और नमी का परिसंचरण भी जारी है, उसके चलते बहुत ज्यादा उमस हो रही है, और उमस के कारण ही एकदम जितनी टेम्परेचर रहता है उससे 1-2 डिग्री ज्यादा महसूस होता है और ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है, क्योंकि भारत तीन साइड से पानी से घिरा है। इस कारण से और ज्यादा हमारा जो देश है, हमारा मध्य प्रदेश है, प्रभावित होता है।
0: डॉक्टर साहब, इस बार अधिक मास है, मल मास है, और ज्येष्ठ के दो महीने हैं। हमेशा ज्येष्ठ में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है और साथ ही नवतपा भी लगने वाला है, तो कैसा रहेगा नवतपा इस बार?
2: देखिए, इस बार तो वैसे भी गर्मी ही नहीं पड़ी है, जो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है, 3-4 दिन हमें लग रहा है गर्मी आ रही है, और दोबारा से या तो पश्चिम विक्षोभ के चलते या फिर दक्षिण भारत में बंगाल की खाड़ी से होते हुए नमी का परिसंचरण होने से कहीं ना कहीं पानी गिर जा रहा है, तो प्रभावित बार बार गर्मी हो रही है। और जैसा कि आपने बात बताया नवतपा, जो 25 मई से 3 जून तक रहने वाला है, और चूंकि पुराणों में भी कहा है, रोणी में यदि नौतपा अच्छे तपते हैं तो बारिश अच्छी होती है, मानसून अच्छा रहता है, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि मुश्किल से 3-4 दिन हमको नौतपा का जो गर्मी है वो देखने को मिल सकती है। उसके बाद लगभग 27 तारीख के बाद बारिश की स्थिति मुझे हुए बनती हुई दिख रही है। और वैसे भी मौसम विज्ञान विभाग द्वारा बताया गया है कि इस बार एल नीनो के प्रभाव के कारण मानसून थोड़ा सा पहले आ सकता है, तो जहां केरला तट पे मानसून 1 जून को एंट्री करता है, मुझे लग रहा है इस बार लगभग 4 से 5 दिन पहले आ सकता है। और हमारे मध्य प्रदेश में भी, हमारे खंडवा जिले में जो मानसून 15 जून के आसपास आता है, वो मुझे लग रहा है कि मई के आखिरी में उसकी हलचल चालू हो जाएंगे, तो ये स्थितियां थोड़ी सी जो नौतपा है उसको प्रभावित कर सकती हैं, और यदि नौतपा प्रभावित होता है तो मानसून पे भी इसका असर पड़ सकता है।
0: ऐसा कहा जाता है कि नौतपा में तपिश बढ़ेगी तभी अच्छी बारिश होगी और तभी हमारे किसान भाई भी इस वर्षा का लाभ ले सकेंगे। आप जन सामान्य को और किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हैं?
2: देखिए, अभी तो वर्तमान में मेरी ये सलाह है जन सामान्य किसान भाइयों को कि अभी जो 12 से 4 के बीच में आप घर से यदि जरूरी ना हो तो निकलने से बचें, क्योंकि तापमान भी बढ़ा हुआ है, थोड़ी सी गर्म हवाओं की स्थिति भी बनी हुई है, हवाएं काफी तेज चल रही हैं, अप्रॉक्स 18 किलोमीटर से ऊपर की गति बनी हुई है, और उमस होने से डिहाइड्रेशन की समस्या हो रही, बच्चों में उल्टी दस्त की समस्या देखने में आ रही है, तो विशेष ध्यान रखें, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। और किसान भाई, चूंकि हमारे यहाँ किसान भाई थोड़ा बुवाई के लिए जल्दी चले जाते हैं, थोड़ा सा पानी गिरता है, तो इस बार थोड़ा सा आप धीरज रखें, क्योंकि मानसून भले ही जल्दी का बोल रहे हैं और आ भी सकता है, लेकिन ये अनियमितता बहुत ज्यादा रहेगी। हो सकता है शुरुआत में 1-2 झले अच्छे गिर जाएं, उसके बाद 15 दिन के लिए गायब हो जाए, कुछ भी स्थिति हो सकती है। तो जब तक मानसून स्थिर ना हो जाए तब तक बुवाई करने से आपको रुकना है। 15 जून

0: तक मानसून की स्थिति मुझे लग रहा है एक क्लियर अनुमान आ जाएगा उसका सामने। उस हिसाब से जैसा भी हमारे द्वारा जानकारी दी जाएगी उस हिसाब से बुवाई के लिए जाएंगे, और अन्यथा जो बीज की समस्या, वैसे बीज बहुत महंगा है तो नुकसान हो सकता है।
1: बहुत अच्छी आपने जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कीर्ति, मई का महीना छुट्टियों का महीना, और इस समय घूमने का भी आनंद ही कुछ और होता है, चाहे धूप लगे, गर्मी लगे या नौतपा आ जाए, लेकिन ये होता है कि भाई घूमने निकलना है तो निकलना ही है। तो कहीं जाने की तैयारी है क्या कीर्ति की?
2: बिल्कुल, हर साल की तरह हमारा इस बार भी कहीं ना कहीं घूमने जाने का प्लान जरूर बनेगा। पर पता है, ज्यादातर हमारे यहाँ पे, मतलब हमारे श्रीमान जी को और बेटे को अगर हम कहें कि घूमने फिरने का शौक कहाँ जाना है, तो कोई ना कोई ऐतिहासिक जगह ही कहते हैं कि कुछ इतिहास से जुड़ी जगह पर घूमने जाएंगे। और सबसे ज्यादा मजा उन्हें आता है म्यूजियम देखने में।

0: म्यूजियम यानी संग्रहालय, जहाँ पर कला संस्कृति और विरासत इसको सहेज कर रखा जाता है।
1: बिल्कुल, अगर ये संग्रहालय ना हो तो हमें कैसे पता चले भला कि हमारे इतिहास में क्या क्या हुआ है या किस तरीके की कलाएं हमारे यहाँ पर विकसित हुई है। तो इन्हें जानने का सबसे समृद्ध तरीका है म्यूजियम या संग्रहालय, और इसीलिए 18 मई को हर वर्ष इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है,
0: ताकि आप जान पाए कि हमारा स्वर्णिम इतिहास कैसा रहा।
1: बिल्कुल, तो म्यूजियम हमें इतिहास से जोड़ते हैं और बताते हैं कि पुराने जमाने में लोग वाईफाई के बिना भी खुश थे।
0: और कीर्ति, मई का महीना छुट्टियों का महीना, और इस समय घूमने का भी आनंद ही कुछ और होता है, चाहे धूप लगे, गर्मी लगे या नौतपा आ जाए, लेकिन ये होता है कि भी घूमने निकलना है तो निकलना ही है। तो कहीं जाने की तैयारी है?

0: बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग म्यूजियम देखने जाते हैं और बहुत सारी असावधानियां भी करते हैं, लेकिन म्यूजियम में हमें क्या क्या सावधानी रखना चाहिए ये तो हमें बाहर जो निर्देश पटल रहता है उसी पर पढ़ने को मिल जाता है।
1: बिल्कुल, हम जो है कि उसे नजरअंदाज कर देते हैं और जिस तरीके से हम सामान्य स्थलों को देखते हैं उसी तरीके से हम म्यूजियम को देखने भी अंदर चले जाते हैं। लेकिन म्यूजियम को देखने अगर आप जा रहे हैं तो कुछ सावधानियों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। विद्या जी,
0: बिल्कुल कीर्ति, बाहर निर्देशित है कि आपको मोबाइल नहीं ले जाना
1: जी,
0: तो नहीं ले जाना है।
1: बिल्कुल,
0: किसी चीज को नहीं छूना है।
1: बिल्कुल, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि बहुत पुरानी चीजें हैं, बड़ी नाजुक है, कुछ बड़ी जर्जर अवस्था में है, उनको सिर्फ संभाल कर रखा गया है ताकि आप उसे देख सकें, तो इन चीजों को हमें नहीं छूना चाहिए।

0: में रखना बेहद जरूरी है विद्या जी।
1: बिल्कुल कीर्ति, बाहर निर्देशित है कि आपको मोबाइल नहीं ले जाना
0: जी,
1: तो नहीं ले जाना है।
0: बिल्कुल,
1: किसी चीज को नहीं छूना है।
0: बिल्कुल, तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि बहुत पुरानी चीजें हैं, बड़ी नाजुक है, कुछ बड़ी जर्जर अवस्था में है, उनको सिर्फ संभाल कर रखा गया है ताकि आप उसे देख सके, तो इन चीजों को हमें नहीं छूना चाहिए।
1: तो ऐसे ही यदि आपने देखा कि ये धरोहर है तो थोड़ा ध्यान रखें, क्या आप अपना नाम लिखते हैं वहाँ जाकर?
0: वही
1: आप जाइए, देखकर आइए और अपनी यादें एक डायरी में लिखिए कि आप वहाँ गए थे तो आपने क्या क्या देखा, ताकि आपकी डायरी को भी म्यूजियम की तरह आपके बच्चे संभाल कर रखें।
0: हाँ, और आपको भी ध्यान रहे, जब आप अपने डायरी के पन्ने पलटाए तो आपको याद आ जाए कि आपने उस म्यूजियम में ये खूबसूरत चीज जो है वो देखी थी। साथ ही कई बार विद्या जी, कोई गाइड अगर आपके साथ में है जब आप म्यूजियम देख रहे हैं, तो उनकी बातों को भी ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि कई बार जो चीजें उनके पीछे के जो किस्से हैं वो हमें पता नहीं होते हैं, तो सुनने में बड़ा ही इंटरेस्ट आता है और म्यूजियम देखने में इंटरेस्ट जो है वो बढ़ जाता है अगर आप उनकी बातों को ध्यान से सुने।
1: बिल्कुल, और कोई कहानी चलती रहे और आप सुनते रहे और देखते रहे तो वो दृश्य आपकी आंखों के सामने आएंगे और जाएंगे।
0: और जैसे कि हम पहले भी बोल ही चुके हैं कि अगर फोटो लेना अलाउ है तो ठीक है, बट अगर कैमरे का प्रतिबंध है, फोटो लेना अलाउ नहीं है, तो फोटो विद योद्धा लेने की बजाय अच्छा होगा कि आप उस योद्धा की जो तस्वीर है अपने आंखों के लेंस में कैद कर लें।

0: साथ ही एक बात और आपको ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है।
1: बिल्कुल, तो जब भी घूमने फिरने जाएं सबसे बड़ी प्राथमिकता अपने स्वास्थ्य को दें।
0: तो जब स्वास्थ्य की बात आई है तो कीर्ति सुन लेते हैं ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर साहब से। आप हैं महामारी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर योगेश शर्मा, जिला चिकित्सालय खंडवा।
2: हाँ जी, अभी फिलहाल में जैसे आपको पता है खंडवा का मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टेम्परेचर हो रखा है, 45 डिग्री के अराउंड अभी हमारे टेम्परेचर है। तो लू ताप घात संबंधी बीमारियां अभी काफी हो रही हैं, जिनमें मुख्य रूप से चार प्रकार की बीमारी हैं जो लू ताप घात संबंधी रोग हैं, हीट रैश, हीट क्रैम्प, हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक। हीट रैश में हमारे जो त्वचा के नीचे ऊतक होते हैं उसमें पसीने के फंस जाने की वजह से घमोरी जैसे बारीक बारीक दाने हो जाते हैं, जिनको कि हम लोग अपनी त्वचा को सूखा रखकर या ठंडा रखकर या फिर घमोरी वाले दाने हो जाने पर प्रिकली हीट पाउडर का उपयोग करके इसे ठीक कर सकते हैं। दूसरा जो होता है हीट क्रैम्प, ये गर्मी के मौसम में यदि हम तेज धूप में परिश्रम करते हैं तो हमारी मांसपेशियों में अकड़न आ जाती है, जिसकी वजह से तेज दर्द होता है मांसपेशियों में और हमें खड़े होने में या काम करने में समस्या उत्पन्न हो सकती है। ये मुख्य रूप से जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है उसकी गड़बड़ी की वजह से होता है या डिहाइड्रेशन की वजह से होता है, जिसे ORS या इलेक्ट्रोल घोल या फिर पानी पी के हम इसकी कमी को दूर कर सकते हैं, जो कि ये स्वतः ही ठीक भी हो जाता है 5 से 6 घंटे के बाद में। इसके बाद जो हीट एग्जॉशन है, ये हीट स्ट्रोक से पहले वाली स्थिति है जिसमें फीवर आना स्टार्ट होता है, हमारे बॉडी में हाथ पैर दर्द हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, उल्टी या दस्त हो सकते हैं, जो कि धूप में परिश्रम करने से या धूप में निकलने से या गर्म हवा की चपेट में आने की वजह से ये लक्षण उत्पन्न होते हैं और इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके बाद जो सबसे खराब स्थिति होती है वो हमारा हीट स्ट्रोक की होती है। हीट स्ट्रोक में शरीर का तापमान 104 डिग्री या उससे अधिक हो जाता है और जो पेशेंट है वो बेहोशी की स्थिति में भी हो सकता है, मानसिक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है मरीज के साथ। ऐसे मरीज को हमें तुरंत यदि टाइट कपड़े पहने तो उन्हें कपड़ों को ढीला करना है, छायादार स्थान में पेशेंट को लिटा देना है। इसके बाद में यदि हमारे पास में ठंडा पानी है या बर्फ है तो उससे छाती पे हाथ में पैर में गर्दन के पास रख के और उसे ठंडक देने का प्रयास करना चाहिए। साथ में हमें 108 पे कॉल करके एम्बुलेंस को बुलाना है और जिला चिकित्सालय खंडवा ऐसे पेशेंट को लेके आना है। उस पेशेंट को तुरंत मेडिकल अटेंशन या मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। हमारे यहाँ वर्तमान में जिला चिकित्सालय में ICU में 2 बेड और

0: प्री वार्ड में दो मेल और दो फीमेल बेड लू तापघात संबंधी बीमारियों के मरीजों के लिए आरक्षित किए गए हैं और इन बीमारियों के इलाज हेतु पर्याप्त मात्रा में दवाएं ORS गोल ये सभी हमारी सभी स्वास्थ्य संस्थाओं पे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।
1: डॉक्टर साहब इस समय नकसीर भी होता है, नाक फूटना और नाक से खून जाना, तो क्या ये भी लू तापघात और इसकी कोई एक स्थिति है?
0: हाँ जी, यदि आप धूप में परिश्रम करेंगे तो उसकी वजह से भी होता है, साथ में यदि कुछ लोगों को जो हाई बीपी के पेशेंट्स हैं उन लोगों में भी ये नाक फूटने की या नकसीर की समस्या हो सकती है। तो जो पीक टाइम होता है धूप का 12 से 4, इसमें हमें बाहर निकलना अवॉइड करना चाहिए, यदि निकलना आवश्यक भी हो तो अपने नाक कान सिर को कपड़े से ढांक लें या बांध लें, उसके बाद ही बाहर जाएं, पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, हाइड्रेटेड रहें और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का सेवन ना करें या जो कैफीन युक्त पदार्थ हैं चाय कॉफी इनका सेवन ना करते हुए लस्सी है, छाछ है, नींबू पानी, शरबत है, इन चीजों का उपयोग करना है। जो रसीले फल हैं तरबूज खरबूज इनका प्रयोग करना चाहिए, अधिक गरिष्ठ भोजन नहीं करना है जिसमें तेल घी ज्यादा हो, तो हम लोग इन बीमारियों से बचे रह सकेंगे।
1: डॉक्टर साहब इसके अलावा क्या चिकनगुनिया मलेरिया डेंगू इस तरह की भी समस्याएं इस मौसम में आ रही है?
0: ये मौसम वेक्टर बॉर्न डिसीजेस का नहीं है, लेकिन अभी हमारे जिले में पुनासा ब्लॉक और किल्लोद ब्लॉक में चिकनगुनिया के पेशेंट निकले हैं। चिकनगुनिया में फीवर विद जॉइंट पेन होता है, शुरू के 2 या 3 दिन बुखार आता है, उसके बाद जो हमारे जितने भी स्मॉल जॉइंट्स हैं हाथ पैर के जितने भी जोड़ हैं इनमें काफी तेज दर्द होता है या सुबह और शाम के समय में अकड़न होती है, जो कि इसको ठीक होने में 1 महीने से 3 महीने का समय लगता है यदि अब एक बार पेशेंट चिकनगुनिया की चपेट में आ गया है तो। और हम लोग जो घरों में दैनिक उपयोग का जो पानी भर के रखते हैं जिसे हम लोग टंकी को ढाक नहीं रहे तो वहां पे मॉस्किटो आएगा और वो एक अंडे दे देगा और वही अंडे लार्वा प्यूपा में बदलकर एडल्ट मॉस्किटो बनते हैं और फिर उसमें वायरस कैरी करता है और यदि वायरस है मॉस्किटो में तो वो स्वस्थ व्यक्ति को काटेगा और उनको चिकनगुनिया बीमारी फैला देगा। तो ये इस तरीके से चिकनगुनिया फैलता है और यदि एक जगह हो गया है तो कम से कम मतलब 25-50-100 पेशेंट तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं क्योंकि काफी तेजी से फैलती है ये बीमारी। एडीज मॉस्किटो के काटने से डेंगू चिकनगुनिया दोनों बीमारी होती है। जो मच्छर है ये डे बाइटर है, केवल ये दिन में ही काटता है और इसके काटने की एक्टिविटी सूर्योदय के 2 घंटे बाद और सूर्यास्त के 2 घंटे पहले, ये इसका पीक टाइम होता है। तो हम उस टाइम में पूरी बांह के कपड़े पहन के रखें मच्छरदानी में, यदि पेशेंट है कोई तो उसको मच्छरदानी में रखें ताकि जो स्वस्थ मच्छर है वो इन्फेक्टेड ना हो, और जो घरों के आसपास हमने पानी भर रखा है या कूलर में पानी भरा है उसे 2 से 3 दिन में बदल लें, जो हमारे बर्तन है उसको अच्छे तरीके से साफ करके सुखाने के बाद में फिर से पानी भरें जिससे कि उसमें लार्वा होने की संभावनाएं कम हो जाए। और जो बीमारी है उसके इलाज के लिए इसमें केवल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है और ये जो बीमारी है ये 1 महीने से लेकर 3 महीने में स्वतः ही ठीक होती है। पेन यदि होता है तो पेन का मैनेजमेंट इसमें पेन किलर दिए जाते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी पेन किलर जो होते हैं वो दिए जाते हैं इस बीमारी में। तो यदि ये लक्षण दिखाई देते हैं तो आप निकट के हमारे स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करके वहां पे चिकित्सा अधिकारी से ट्रीटमेंट ले सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब आपने इतनी बढ़िया जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो श्रोताओं कार्यक्रम की शुरुआत में आपके और हमारे मन पसंद पेय चाय के बारे में हमने बातचीत की थी, क्यों की थी कीर्ति बताओ?
3: क्योंकि 21 मई को हम मनाने वाले हैं इंटरनेशनल टी डे। तो चाय तो हम सबका पसंदीदा पेय है ही, किसको बोलूं हेलो, किसको बोलूं हाय, किसको बोलूं हेलो और किसको बोलूं हाय, हर टेंशन की दवा है भाई एक कप अदरक चाय। तो श्रोताओं चाय की तारीफ तो हम पहले भी कार्यक्रम में कर ही चुके हैं, अब आपको बताते हैं कि किस मौके पर या किस समस्या के साथ किस तरीके की चाय पीना सही होता है, तो इस बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं हमारे ये साथी।
4: नमस्कार, मैं पुष्पा केमानी आज आपसे आपके पसंदीदा पेय की बात करूंगी। सही पहचाना आपने, हम बात कर रहे हैं सबसे आसानी से हमारे घर में उपलब्ध होने वाले पेय चाय की। क्या आपने आयुर्वेदिक चाय के बारे में सुना है? ये विभिन्न जड़ी बूटियों से बनी पारंपरिक चाय

उपाय है जिसके स्वास्थ्य संबंधी बहुत से लाभ है। अगर आप इन हर्बल चाय का सेवन करेंगे तो ये आपको स्वस्थ तंदुरुस्ती जीवन शक्ति प्राप्त करने में मदद करेगी। सही तरह की आयुर्वेदिक चाय आपके शरीर में दोषों को संतुलित करने में मदद कर सकती है। ये चाय शरीर को डिटॉक्सिफाई के शुद्ध करने वाली होती है। बात करते हैं कुछ खास चाय की जो हमारे घर में हमारे बुजुर्ग काढ़े के रूप में सेवन कर रहे हैं। यदि आप वात प्रधान व्यक्ति हैं तो आपको अपनी चाय में सौंफ, लौंग, अदरक, दालचीनी, मुलेठी जड़ी बूटियों को अपनी चाय में शामिल करें। पित्त प्रधान व्यक्ति अदरक, सौंफ, मुलेठी डालकर चाय बनाएं तो कुछ ही दिनों में पित्त से राहत महसूस होगी। कफ प्रधान व्यक्ति को लौंग, दालचीनी, मुलेठी, अदरक, इलायची और काली मिर्च जैसी सामग्री डालकर चाय बनाने फिर देखिए खुशबू के साथ ताजगी से भरपूर होती है ये चाय। अगर आप घी, नमक और गर्म पानी के साथ पेय बनाते हैं तो ये आपके पेट में अंदरूनी हिस्सों को चिकनाई देकर और बैक्टीरिया को हटाकर आपकी कब्ज की समस्या को हल कर सकती है। अगर चाय में काली मिर्च मिलाई जाए तो अंत में स्वास्थ्य बैक्टीरिया को बढ़ावा देती है। आयुर्वेदिक चाय वजन घटाने में मदद करती है। लौंग और मुलेठी वाली अदरक की चाय वजन घटाने के लिए अच्छी है। हल्दी की चाय चमकती त्वचा के लिए अच्छी होती है। यह एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करती है और इसमें त्वचा को साफ करने के गुण होते हैं। जीरा, मेथी, काली मिर्च भी रक्त को शुद्ध करती है और अतिरिक्त वसा को घटाती है। जीरा, सौंफ, चक्रफूल, लेमन ग्रास और धनिया जैसी जड़ी बूटियों से बनी आयुर्वेदिक चाय में शक्तिशाली विषहरण गुण होते हैं और यह लीवर के लिए भी अच्छे होते हैं। यह चाय पचन में भी मदद करती है। अगर आप दिमागी काम बहुत करते हैं तो सौंफ, धनिया और मुलेठी से बनी आयुर्वेदिक चाय आपके लिए कारगर साबित होगी। यह चाय याददाश्त बढ़ाने और तनाव दूर करने का काम करती है। तो श्रोताओं, अपनी चाय में बस थोड़ी सी घरेलू जड़ी बूटियों शामिल कीजिए फिर देखिए चाय के फायदे। और आज आप किस चाय को ट्राई करेंगे बताइए जरूर। जय हिंद।

0: और श्रोताओं आपको बता दें कि हमारे स्थानीय जो खेलकूद ग्राउंड है वहाँ इस समय ढेरों बच्चे खेलों का प्रशिक्षण लेते हुए देखे जा रहे हैं। आइए जानकारी ले लेते हैं, खेलों का आपके जीवन में क्या महत्व है?
1: मेरा नाम ऋषिकेश दामोदर है।
0: ऋषिकेश, किस खेल को पसंद करते हैं आप?
1: मुझे स्विमिंग अच्छी लगती है।
0: स्विमिंग क्यों अच्छी लगती है?
1: क्योंकि उससे अपना स्टेमिना बढ़ता है और मुझे उससे स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और दुनिया की सबसे अच्छी एक्सरसाइज है स्विमिंग।
0: अच्छा, कब से आप स्विमिंग कर रहे हैं?
1: मुझे 2 साल हो चुके हैं।
0: आपने स्विमिंग सीखी तो आपको लगभग कितने दिन लगे स्विमिंग सीखने में?
1: मुझे लगभग 15 दिन लगे थे स्विमिंग सीखने।
0: अच्छा, अभी आप अच्छे से तैर लेते हैं?
1: हाँ, मैं अच्छे से तैर लेता हूँ।
0: कभी किसी प्रतियोगिता में भाग लिया है आपने?
1: हाँ, लिया है मैंने। हाँ, मैं जीता था और मुझे 2nd रैंक प्राप्त हुई थी।
0: और अब आपके जैसे जो बच्चे थे उनको कुछ बोलेंगे आप?
1: खेली एक ऐसी विधा है जिसमें आप हमेशा स्वस्थ रहते हो और ये अपने स्वास्थ्य को भी अच्छी रखती है और अपने जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण चीज है अपने जीवन के लिए।
0: ऋषि, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका भविष्य उज्ज्वल हो और आप ऐसे ही स्विमिंग में आगे तक जाए।
1: धन्यवाद।
2: मेरा नाम सोम फुलवाली है। मैं ग्राउंड पे रनिंग करने जाता हूँ सुबह सुबह। ग्राउंड में सुबह सुबह मैं जैसे तैयारी करता हूँ, जैसे अभी भर्ती आ रही है अग्निवीर, ये जैसे तो जितनी भी भर्ती आए उसके लिए मैं ग्राउंड डेली दौड़ने जाता हूँ कि भर्ती जब आए तो उसके लिए मैं फिजिकल में प्रदर्शन कर सकूँ।
0: और आप कितने राउंड लगा लेते हैं इस स्टेडियम के?
2: मैं स्टेडियम के 15 राउंड लगाता हूँ सुबह सुबह रोज। रनिंग से हमारी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी रहती है और फिट रहता है इंसान और उससे कभी भी शरीर में कुछ भी बीमारियां नहीं होती है और स्टेमिना अच्छा रहता है शरीर का और जो अपना मोटापा रहता है वो नहीं बढ़ता है। धन्यवाद।

0: और श्रोताओं, छुट्टियां चल रही है तो छुट्टियों का आनंद लीजिए और कुछ सीखिए, सिखाइए, कुछ नया कीजिए, क्यों कीर्ति?
1: साथी श्रोताओं, हमें यानी रेडियो को, आकाशवाणी खंडवा को सुनना बिल्कुल ना भूले
0: और जरूर सुने हमारा
1: गुड मॉर्निंग खंडवा कार्यक्रम।
0: और गुड मॉर्निंग खंडवा कार्यक्रम सुनने के बाद चिट्ठी लिखें और हमें बताएं कि
1: आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा।
0: हमें आपके खतों और ईमेल्स का इंतजार रहेगा।
1: तो अब आज्ञा दे आज के इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की कीर्ति
0: और विद्या सिंह को नमस्कार।
2: गुड मॉर्निंग खंडवा।
3: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग,
4: गुड मॉर्निंग खंडवा।
2: गुड मॉर्निंग खंडवा।
0: आप सुन रहे थे गुड मॉर्निंग खंडवा कार्यक्रम।
5: ओए होए, ये है निमाड़ की सुरीली धड़कन। सुनते रहिए आकाशवाणी खंडवा।

हम जानते हैं, तभी तो मनोरंजन का खजाना लेकर आते हैं आपके लिए। सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेता भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की भावना और हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अनुरूप जनहित के नए अवसरों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की तात्कालिकता पर जोर दिया गया और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।
1: यात्रा के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2026 से 2030 तक के लिए संयुक्त कार्य योजना अपनाई, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान को दोगुना करना है। इंडिया स्वीडन स्ट्रॉन्गर टुगेदर टुवर्ड्स 2047 थीम के तहत दोनों देशों ने 2027 में भारत में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई। स्वीडन उद्योगपति और प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत निवेश बढ़ाने का आह्वान किया, विशेषकर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन जैसे क्षेत्रों में। दोनों देशों की साझेदारी अब सेमीकंडक्टर और मजबूत सप्लाई चेन जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर विस्तारित होगी। तकनीकी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए स्वीडन का विशेष आभार भी व्यक्त किया।

0: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: इस यात्रा में साझा बौद्धिक विरासत और व्यापक क्षेत्रीय सहयोग को भी नहीं पहचान दी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
2: प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं।
3: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
2: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन 165 से अधिक देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों, गणमान्य जनों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर आज सुबह 10 बजे तिरुवनंतपुरम में आयोजित समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल शाम शपथ ग्रहण समारोह से पहले 21 सदस्यीय UDF मंत्रिमंडल की घोषणा की।
6: कांग्रेस के नेतृत्व वाली UDF सरकार आज केरलम में 10 साल के अंतराल के बाद शपथ ले रही है। मुख्यमंत्री और 20 अन्य मंत्री तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित समारोह में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए UDF कार्यकर्ता कल दोपहर से ही बड़ी संख्या में राजधानी पहुंच रहे हैं। इस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
2: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल में नवनियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए हैं। 10 मई को हुए उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का आवंटन किया गया है। इस फेरबदल में 2 कैबिनेट मंत्रियों और 4 राज्य मंत्रियों को सरकार में शामिल किया गया, जबकि 2 राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर कल शाम रायपुर पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह रायपुर और बस्तर में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
7: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह रायपुर में आपातकालीन सेवा डायल 112 के तहत नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वे बस्तर जाएंगे और जिले के नेतानार गांव में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। इस केंद्र से दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को शासकीय और डिजिटल सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। इसके बाद श्री शाह जगदलपुर पहुंचकर अमर वाटिका में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शाम को वे बस्तर के संग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल मुक्त

0: सौंपने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का यह राज्य का पहला दौरा है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दक्षिण पूर्व अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर में अगले 2 से 3 दिन तक मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं।
2: मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश हो सकती है। वहीं विभाग ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में भीषण लू चलने की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ के कुछ इलाकों में भी लू चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना के पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल V.A. वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे नंबर हैं 0112331 0481 और 0112371 71। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नीट UG प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच अब महाराष्ट्र के लातूर से नांदेड़ तक पहुंच गई है। एक अभिभावक पर अपनी बेटी के लिए प्रश्न पत्र 5 लाख रुपए में खरीदने का आरोप है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने कल उस व्यक्ति से पूछताछ कर जांच के लिए पुणे कार्यालय में बुलाया है। इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने पुणे की आरोपी मनीषा मंधारे को 14 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया। एजेंसी के अनुसार मंधारे नीट जीव विज्ञान परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में मुख्य षड्यंत्रकारी हैं। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। मध्य प्रदेश के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी के एक यात्री डिब्बे, सामान रखने वाले डिब्बे और जनरेटर वाले डिब्बे में आग लग गई थी। समिति घटना के कारणों, तकनीकी पहलुओं और सुरक्षा मानकों की विस्तृत जांच करेगी, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। चेन्नई में IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने HD देवेगौड़ा को सही मायने में धरती का सपूत बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद विशाल। भारत और नीदरलैंड्स का द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने का निर्णय आज के सभी अखबारों की पहली खबर है। अमर उजाला की सुर्खी है, रक्षा, खनिज और AI में मिलकर काम करेंगे भारत नीदरलैंड्स, 17 समझौते हुए, 5 साल का रोड मैप तैयार। होर्मुज जलमार्ग में जहाजों पर हमले और आवागमन को रोकना मंजूर नहीं, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का बयान जनसत्ता में है। सुरक्षित आवागमन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए। भारत को मिलने लगा निर्यात विविधता का लाभ, नए बाजार तलाशने की कवायद का दिखा नतीजा, अप्रैल में भी निर्यात 13% बढ़ा। दैनिक जागरण के अनुसार वैश्विक व्यापार में रुकावटों के बावजूद एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को निर्यात में हुई मजबूत वृद्धि। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं के नतीजों पर छात्रों के विरोध के बाद बोर्ड के पुनर्मूल्यांकन फीस में बड़ी कटौती के फैसले को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता दी है। बोर्ड ने कहा, दोबारा कॉपी जंचवाने में एक नंबर भी बढ़ा तो पूरी फीस लौटाई जाएगी। NDA सरकारों पर लोगों का भरोसा, गृहमंत्री का ये बयान हिंदुस्तान में है। गुजरात के दौरे पर गए गृहमंत्री ने

0: हाल के विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत पर कहा, भाजपा और एनडीए की सरकारें आज देश के 80% भूभाग पर शासन कर रही हैं। दिल्ली में महिलाओं को मिलेगा 10 करोड़ का कर्ज, नहीं देनी होगी कोई गारंटी। पंजाब केसरी के अनुसार दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप और स्वयं सहायता समूहों को बिना गारंटी देगी ऋण। तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म पर परिवारों को आर्थिक प्रोत्साहन देने की आंध्र प्रदेश सरकार की घोषणा पर नवभारत टाइम्स संपादकीय में लिखा है, ऐसे प्रयोग दूसरी जगहों पर भी हुए लेकिन खास सफल नहीं रहे। दक्षिण भारत के राज्यों ने बहुत मेहनत से जनसंख्या नीति लागू की थी, शिक्षा और जागरूकता पर बाकी राज्यों के मुकाबले अधिक खर्च किया गया, यही कारण है कि आज दक्षिण के राज्य आगे खड़े दिखते हैं। पत्र लिखता है, आबादी को बढ़ाने की नाकाम कोशिशों के बजाय मौजूदा कार्य बल के बेहतर इस्तेमाल पर ध्यान देने होंगे।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं।

0: श्रोताओं, हम बोल रहे हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा से, और प्रस्तुत है निमाड़ी लोक संगीत का कार्यक्रम। तो निमाड़ी लोक संगीत के कार्यक्रम में आज हम सुनेंगे प्रभाकर दुबे और साथियों से ये गम्मत पटेल को नात्रो।
1: अरे यार, यो घर मगा खाने का दौड़ा है। आना, जब से लुगाई मरी गई, जब से कहीं मगा स्वादो नहीं।

0: अरे क्यों रे भाई, तुखा मैंने कहती हाक पाड़ी, थारो कहीं पत्तो नहीं है, कहाँ गयो तो तू?
1: अरे पटेल साहब मग माफ कर दियो, अरे हाँ ये बड़गांव बावड़ी खेड़ा ने पांजरिया ने बड़गांव गए तो बाल बनावना।
0: अरे बाल बनाने पर महारा भी तो बाल बनानू तो।
1: चलो लियो बैठो, अरे अंगो तो उतारो।
0: अरे यो अंगो उतार दियो यार, ले
1: जरा सिल्ली पर जरा उस तरह घिसी लियो।
0: हाँ घिस। देख तो भाई, क्यों रे वो तू अभी 3-4 गांव से आयो?
1: हाँ।
0: तो वहाँ का कहीं हाल चाल बताओगे कि नहीं?
1: हाल चाल लियो, अरे वो नानो छे ने नाना की छोरी का हम्मल रही गो थो, तो वो को लोग लाएगा दूसरा गांव।
0: अरे के को थो?
1: अरे लोग कैद की सखाराम को थो। अरे पटेल दाजी तुम हाथ से कब तक रिता रहोगा? अरे ये सुनसान घर आप खाना के दौड़े, अरे ब्याह क्यों नहीं करता?
0: अरे हाँ यार बुआनिया, बिना लुगाई का सब सुनो छे, मारी लुगाई मरी जब से घर सुनसान हुई गई, ये घर मगर काटना का दौड़े।
1: ता तुम कहो तो नात्रा को सोए भिड़ो, अब उठो बन गया बाल।
0: आता यो मैं कुर्तो पेरियो, कहाँ चला बोल, चलने का तैयार छ हूँ।
1: हाँ तो चलो, नया काम में देर नहीं होनी चाहिए, चलो जल्दी चलो।
0: हाँ चलो
1: चलो। अरे अरे थोप थोप, अरे बोरा जरा गाड़ी के थोप रहे। अरे पटेल, अरे जरा, अरे पटेल जरा गाड़ी के थोबार जा। अरे अरे हाँ सो जरा पुरिया थोप थोप थोप। अरे देख देख, अरे कुआ भाई देखे रही कुआ पर, अरे का सोई भेड़े नाव थारो। अरे बरे का से बाल्टी पानी पीना का बाल्टी मांगूंगा, इना भाना जाऊं
2: छोटी
1: न थारो सोई जमे नाव। यहां रजे पटेल गाड़ी जोड़े खड़े रजे
2: छोटी बड़वाणी को।

0: निमाड़ी लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे ये गम्मत पटेल का नात्रा, कलाकार प्रभाकर दुबे और साथी।
1: अरे पढ़ना होनी काई हुई गयो आज।
2: हम सुनी रहे आज आकाशवाणी खंडवा निमाड़ की सुरीली धड़कन।
3: न आज तक निमाड़ की सुरीली धड़कन सुनी खना।
4: मजा आ गया।
5: सुनते रहिए आकाशवाणी खंडवा।

0: हम हाजिर होते हैं बस कुछ ही पलों में। सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन। ये है निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा। लीजिए प्रस्तुत है आपके मीते गीत कार्यक्रम।
1: आपके मीत ये गीत।

आपके मिति गीत कार्यक्रम में स्वागत है हमारे सभी श्रोता साथियों का। इस कार्यक्रम के साथ आज मैं हूँ विद्या सिंह, आप सभी को हमारा नमस्कार। और कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है समाधि फिल्म से। इस गीत को स्वर से सजाया लता मंगेशकर ने, शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की, संगीत राहुल देव बर्मन का, और पसंद करता है आप सभी। कुम्हार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी ऋषिकेश, जीविका पुनावले पुणे से, अजय सोनवने, करिश्मा अविका और विशाखा तहंदा, पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत, लखनलाल, सावित्री और देवांगन परिवार के सभी सदस्य, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया और शेख रहीम मुन्ना, पालदाना का इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी मंसूरी और मोहम्मद रफी मंसूरी, प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा से है आनंद जोशी।

अनुजा जोशी, ध्रुवी जोशी और फाल्गुनी जोशी। पटेल नगर मालोड से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप आरजू और गुड्डू जाजोरिया। अडार नांदगांव छत्तीसगढ़ से हैं माखन वर्मा, चांदनी भूपेश, दीपेश। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता, किसु, तासु, अर्णव, आनंद और सत्यम। बोरागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भाई और गुड्डी भगत। माँ बिजासिनी रेडियो श्रोता संघ माता चौक खंडवा से राजेंद्र कटारे, नीता कटारे, उदय कटारे, उज्ज्वल कटारे और मितांश कटारे। मूंदी से है, अभी ये मूंदी चक भागलपुर बिहार से है, दिलीप कुमार सोनी, कमल किशोर शाह। खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल और भाविका। मोटका माफी से हैं हमारे किसान श्रोता जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति पटेल, शुभम, देवी किशन, भावना, मन, मानस और कनिका पटेल। नागपुर से विठल जाधव, अनुसुईया जाधव, पवन राजे। रोहिदास चौक पंडरपुर सिटी से है प्रशांत सिंधे, यशराज ऋषि, कृष्णा घोड़के शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सलरा विशाल, चेतन, रोशनी, बेबी प्रियांशी। मजनू कटिल्ला से है कलम कमल बालूजा, मधु बालूजा और सागर बालूजा। सतना से उमंग मलिक, आकांक्षा और माही। तालुका नादुरा से प्रमोद बगाड़े, वर्षा बगाड़े, प्रतीक और संकेत। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक और इनके परिवार के बहुत सारे साथी है। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे, प्रशांत राजे, संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली, सर्वत देशमुख और कुमारी सानवी। उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन, अमन और दीपांशु। जामली कला से राम माणिकचंद राठौर और पुष्पाबाई राठौर। छेगांव देवी से अशोक वाघे, वंदना वाघे, काना वाघे। खंडवा से है धुनी वाले मार्ग से मोहम्मद हसनैन, हसू बाबा, मोइन छोटू और मोहम्मद फाजिल। जामा मस्जिद रोड भिकनगांव से साफिया, एहरान खोकर, अनस, शिफा खोकर और अयान खोकर। बाजार फिर शेगांव महाराष्ट्र से मोहम्मद अनीस मोहाल, दानिश, जुनेद और रिवाज और मोहम्मद रिजवान। ताजमहल मंजिल लकड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, साकिब पवार, मोइन छोटू पवार, हसनैन पवार और उनके बहुत सारे साथी। बाजार चौक दीवार से शंकरलाल गंगराड़े, वनीता और वामिका। वैष्णो कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमस, मोहम्मद अल्तमश और रमेश गोड़, मोहम्मद शादाब। खत्री जामा मस्जिद रोड गोगावा से हाजी इसहाक, उमर कासमी और अयूब शेरी। पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरोल, नारायणी, रोमेश, नेहा और वान्या। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंग्या, नमन और अपार ढिंग्या। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये गीत जो हमने लिया है समाधि फिल्म से।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: खंडवा वाले हमेशा इतने खुश क्यों रहते हैं?
2: खंडवा वाले इसलिए खुश रहते हैं क्योंकि वो सुनते हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
3: समझे हाँ?
4: आपके मीठे गीत कार्यक्रम में फिर से एक बार स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। और अब सुनिए मिस्टर नटवरलाल फिल्म का गीत जिसे गाया लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने, बोल आनंद बख्शी की और धुन बनाई राजेश रोशन ने। इस गीत को सुनने के लिए अनुरोध किया आप सभी ने, तो ये हमारे श्रोता हैं बागपत उत्तर प्रदेश के संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपाल ढींगिया, सेक्टर 67 मोहाली से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जसवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज, शनि मंदिर चौक खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता सैनी, गौरव सैनी, ईशान और कार्तिक सैनी, लकड़ बिहार खंडवा से ठाकुर भवानी सिंह बेस, रिहा रोहन, अंगद ठाकुर, बड़ावम चौक खंडवा से ममता मारकंडे, संजय मारकंडे और बीबी किट्टू, नेपानगर से प्रभुदाल, शिवदे, शिवा और बसंती बाई के साथ है गणेश, खंडवा से श्यामाबाई रायकवार, छोटू और नारायण रायकवार, कहारवाड़ी मोहल्ला ग्राम जसवाड़ी से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से। इस गीत को सुनने के लिए हमें ईमेल भेजा है सीतामढ़ी बिहार से मुसर्रत जहां, तलहस जहां नाज, फरहस जहां, रिफस जहां, नूरहस जहां, शाजिया शाहिन नाज और नाजिया नूरी नाज, घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद और सन्मति पंचोलिया, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राशि, शीतल और इनके परिवार के सभी सदस्य, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिराही और मेराज जहां, दतरेंगी भाटापारा से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती और विनीता वर्मा के साथ है रुद्र वर्मा, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज और रिफाकत मोहम्मद, रिहान, समरीन परवीन और माहिना नूर, चंद्रनगर कॉलोनी से कौशल्य।

0: कि बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: अरे जनाब, गिले शिकवे छोड़िए और मजा लीजिए आकाशवाणी खंडवा के शानदार प्रसारण का। साथ ही अपने पसंदीदा गाने सुनने के लिए हमें मेल कीजिए। मेल एड्रेस तो आप सभी जानते ही हैं। आपका मेल हमें मिलेगा और हम आपका पसंदीदा गाना सुनवाएंगे, तभी तो हम कहेंगे तेरा नाम लिया।
2: आइए कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं और शामिल करते हैं इन श्रोताओं को जिन्होंने हमें ईमेल भेजे हैं। डोंडी लोहारा से शंकरदेव जाटोलिया और तुषार जाटोलिया, कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर जयप्रकाश, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द सिंह, अनिल कौचले, सभिया सुषमा ये लिखते इंदौर से, सिंधी बुजुर्ग से है किशोर वड़तकर शुभम और पुनु वड़तकर, बिहार स्टेट डुमराव से असमा अंसारी, आमना परवीन, टुक टुक लड्डू अंसारी, वलीउल्ला गाजियाबाद से सीमा गांधी, मनोहर लाल गांधी, डोंडी लोहारा छत्तीसगढ़ से ही है मास्टर कबीर डोम, राधिका पूजा डोमिन, जामनिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक स्वाति गमरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, देव कुमार और आर्य कुमार, ये है सनावत के हमारे श्रोता, हुकुमजन कटारिया, पिंटू सेन, हरनिवास केड़े, बाबूलाल चौधरी, मिश्रा गोल्डन, केपी सिंह चौहान, दीपक सचिन कटारिया, कृष्णा विराज अन्नव, काव्यांशी कृतिका, श्रीमती प्रभा कटारिया, मित्रनगर बीड शहर महाराष्ट्र से विकास बंसोड़े, रेखा बंसोड़े, अदिति, वैभव शिंदे, हिल स्टेशन खंडाला से आकाश सरोदे, प्रिया सरोदे, सनावत से है मास्टर अशोक वर्मा, अंजना अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद, मूसा और राजकुमार बुडाना, सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश जगताप, कापासेड़ा दिल्ली से फिरोज खान, अहमद मोगा और इकबाल मोगा, और जालंधर से संजीव जाटव और सुरेश जाटव। सुनिए ये गीत जो हमने लिया है आपकी पसंद पर, मेरा साया फिल्म से।

तो ये गीत हमने लिया था मेरा साया फिल्म से। आशा भोसले ने इस गीत को गाया, राजा मेहंदी अली खान ने इस गीत को रचा और लयबद्ध किया मदन मोहन ने। कार्यक्रम में अगला गीत हम सुनते हैं त्रिशूल फिल्म से, आवाज़ें लता मंगेशकर, किशोर कुमार और यशुदास की है, खयाम की तर्ज है और नगमा निगार है साहिर लुधियानवी। पसंद करता है आप सभी। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से है नारायण खर्चे, ललिता, गणेश, कार्तिक, परी, स्वाति, प्रयाग चौधरी और देविका चौधरी। सहारनपुर से आशा नारंग और सुरेश नारंग। एमएलबी रोड ग्वालियर से है सुरेश खुराना, पप्पी, किरण, लव्या, आरव और एस के खुराना। ढानकी रोड उमरखेड़ महाराष्ट्र से भाई रज्जाक खान, शबाना, जावेद, आसमा परवीन, आसिया परवीन। सुभाष नगर खंडवा से संजय पगारे और श्रीमती रेखा पगारे। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया। नागचूल रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल विलिस। राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामन शेंडे, प्रणय और प्रसिद्धि। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदर शहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहना सरफराज, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान और अबान। सुनते हैं ये जो गीत हमने लिया है त्रिशूल फिल्म से। कुछ और नाम हमारे पास हैं, कोल्हापुर महाराष्ट्र से विजय चौहान इंदुरकर, तेजस्विनी, माई इंदुरकर, बेबी शोरिया, अंकिता और अनिकेत। चांदनी चौक गंडे पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विक्की, नानू रौनक। धनुरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौसाद, बेबी आली और अयान। वरोड बकाल बुल्ढाना से नारायण हागे, कमल हागे और दिव्या हागे, जय हागे। मुरादाबाद ग्राम बुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, सलमान इरफान और नरगिस खातून। मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, नवेद हसन, सुहेल रशीद, अनम वारसी और ऋषफ। महनगर उमरखेड़ महाराज से अभिजीत गवानकर, श्रीमती सविता, प्रणीता, अर्जुन, टुकटुक और एकांश।

0: आपके मीत ये गीत।
1: एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के ठीक 9 बजे हैं। अब हम राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित करेंगे।

क्षेत्रलोक कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। लीजिए सुनिए गब्बर इज बैक फिल्म का गीत अरिजीत सिंह और पलक मुछाल की आवाजों में। मनोज यादव ने इसे लिखा है, चित्रंतन भट्ट का संगीत।

आज विश्व एड्स वैक्सीन दिवस है। ये दिन एचआईवी एड्स जैसी गंभीर बीमारी के खिलाफ प्रभावी वैक्सीन खोजने वाले वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और शोधकर्ताओं के प्रयासों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को जागरूक करना और ये समझना है कि सही जानकारी, सावधानी और समय पर जांच से इस बीमारी को काफी हद तक रोका जा सकता है। सुरक्षित जीवन शैली अपनाना, जागरूक रहना और भेदभाव से दूर रहना बेहद जरूरी है। आइए हम सभी मिलकर एचआईवी एड्स के प्रति जागरूकता फैलाएं और एक स्वस्थ, संवेदनशील समाज के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाएं। और आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत फिल्म हमारी अधूरी कहानी से, श्रेया घोषाल की आवाज, रश्मि विराग के बोल और जीत गांगुली का संगीत।

ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है चित्रलोक कार्यक्रम में। आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को संग्रहालयों के महत्व के प्रति जागरूक करना है। संग्रहालय हमारी संस्कृति, इतिहास, कला और विरासत को संजोकर रखने का महत्वपूर्ण माध्यम है। यहाँ हमें प्राचीन वस्तुएं, ऐतिहासिक दस्तावेज, दुर्लभ कलाकृतियां और सभ्यता, इन सब की अनमोल झलक देखने को मिलती है। संग्रहालय केवल ज्ञान का केंद्र ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़े रखने का एक सशक्त माध्यम भी है। आइए इस अवसर पर अपने इतिहास और संस्कृति को समझने, सहेजने और उससे जुड़ने का संकल्प लें। और लीजिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं तमाशा फिल्म का ये गीत मीका सिंह और नक्श अजीज की आवाजों में। इरशाद कामिल के बोल हैं, AR रहमान की धुन।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए।

0: शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जाने

एक पहेली लीला इस फिल्म का गीत सुनिए, मीत ब्रोज अनजान और अरिजीत सिंह की आवाजों में, कुमार के बोल, मीत ब्रोज अनजान का संगीत।

मीत ब्रो संजान और अरिजीत सिंह की आवाजों में गाए इस गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा, नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

वो जो बहुत खूबसूरत हैं, चुलबुली हैं, भोली हैं, भोले भोले चेहरे से बड़ी सहजता से संवाद बोल देती हैं, जो कभी सहनायिका थी अभिनेता राजेश खन्ना की। प्यारी भोली मासूम आवाज में बोलने वाली फनकार, आज उन्हीं पर केंद्रित है हमारा ये कार्यक्रम। इनका नाम है फरीदा जलाल।

0: सोमवार है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: अगर आपने फिल्म आराधना देखी होगी तो इस दृश्य को जरूर देखा होगा। इनके साथ अभिनेता थे राजेश खन्ना। इस फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया गया था। फरीदा जलाल का फिल्मी कैरियर सन 1967 से फिल्म तकदीर से शुरू हुआ।

1949 में फरीदा जलाल का जन्म हुआ था नई दिल्ली में। शुरू की युवा आयु में जब इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी तो इन्होंने कई फिल्मों में अलग अलग भूमिकाएं की, सखी के रूप में, बहन के रूप में, और ये भूमिकाएं सराही गईं। फिल्म तकदीर में गोपाल की छोटी लड़की की भूमिका

1973 में एक फिल्म आई थी लोफर। इस फिल्म में अभिनेत्री फरीदा जलाल ने रूपा की भूमिका निभाई थी, जो कि गोपीनाथ की बेटी है। इसी फिल्म का गाना सुनिए।

चर्चित फिल्में बहारों की मंजिल 1968 में, महल 1969 में, आराधना पुरस्कार, नया रास्ता 1970 में, गोपी देवी, पारस में बेला देवी नाम से भूमिका को जीवंत किया और इस फिल्म पारस के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का इन्हें अवार्ड दिया गया। एक और पुरस्कार इन्हें दिया गया BFJA अवार्ड। इस फिल्म में अभिनेता संजीव कुमार की बहन की भूमिका फरीदा जलाल ने निभाई थी। आइए सुनते हैं पारस फिल्म का गाना। अरे या या या।

1971 में अमर प्रेम प्यार की कहानी, जिंदगी जिंदगी, रिवाज, बुनियाद, हीरा, बॉबी, जिसमें इन्होंने चरित्र अभिनेत्री के रूप में काम किया, जिसे फरीदा जलाल ने बहुत ही सहजता से निभाया। बॉबी फिल्म में एक ऐसी धनी लड़की की भूमिका निभाई जो मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। उस अमीर लड़की को हीरो पसंद इसलिए करता है क्योंकि उसके पिताजी चाहते हैं कि इस अमीर लड़की से उनका बेटा शादी कर ले। फिल्म में पारस के बाद इन्हें एक और पुरस्कार दिया गया, फिल्म मजबूर के लिए, यानी कि मजबूर फिल्म की कहानी सलीम जावेद की जोड़ी ने लिखा था। अभिनेता अमिताभ बच्चन इसमें हीरो थे। इस फिल्म में फरीदा जलाल ने उनकी बहन की भूमिका निभाई थी। बहुत ही बेबसी और मजबूरी का अभिनय किया था फरीदा जलाल ने, जो बहुत लाजवाब था।

फरीदा जलाल ने 40 वर्ष की उम्र तक सिने जगत में अभिनय किया। 1983 और 1990 के बीच में फिल्मों से ब्रेक लिया और बेंगलोर जाकर शिफ्ट हो गईं। 1990 वर्ष के दौरान फरीदा जलाल ने अपना फिल्मी करियर फिर से शुरू किया और कई मेजर हिट फिल्म में चरित्र अभिनेत्री का किरदार निभाया। 1991 में हिना फिल्म में बीबी गुल की भूमिका निभाई और इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड से नवाजा गया। 1991 के बाद भी कई फिल्में आईं जिसमें इन्होंने तरह तरह की चरित्र अभिनेत्री की भूमिका निभाई। फिल्म पायल, बेखुदी, कल की आवाज, दिल आशना है। 1993 में गर्दिश। सन 1994 में फिल्म आई थी मम्मो, जिसमें फरीदा जलाल ने महमूदा बेगम अनवर अली उर्फ मम्मो का किरदार निभाया था। बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी, बहुत ही दमदार अभिनय था। इस फिल्म के लिए फरीदा जलाल को 2 अवार्ड मिले, एक तो फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए और दूसरा अवार्ड बंगाल की जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया। सन 1995 में दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म रिलीज हुई, जिसमें लाजवंती यानी लाजों की भूमिका फरीदा जलाल ने निभाया और इन्हें अवार्ड दिया गया फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का।

0: नारे नारे नारे नारे।
1: सन 2000 में हे राम फिल्म में कस्तूरबा गांधी की भूमिका फरीदा जलाल ने निभाई। इस भूमिका को बहुत सराहा गया। यही फिल्म हिंदी और तमिल में साथ साथ बनाई गई। ये फिल्म थी हे राम। सहनायिका बहन, पत्नी, माँ, धाई माँ, दादी माँ, इस तरह की भूमिकाएं आगे चलकर फरीदा जलाल को मिली और सभी भूमिकाओं में इन्होंने अपने खास अंदाज में जान फूंक दी। सन 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर, 2015 तक अनेक चरित्रों को पर्दे पर इन्होंने साकार किया। सन 2012 में फरीदा जलाल को ए ग्रैंड प्लान फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया हार्लेम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल।

1990 के बाद की कई फिल्में बहुत चर्चित रहीं। फिल्म राजा हिंदुस्तानी, कहो ना प्यार है, कभी खुशी कभी गम। फरीदा जलाल ने कई टेलीविजन सीरियल में भी काम किया, जिसमें देख भाई देख हिट सीरियल था। फरीदा जलाल ने कॉमेडी रोल भी अदा किए। थोड़ा जादू थोड़ी नजाकत, इसमें आपने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया, यूं कह सकते हैं कि लीडिंग रोल था। सन 2005 में मुंबई में 50वें फिल्म फेयर अवार्ड के स्टेज पर इन्होंने एंकरिंग की, साथ में थे सैफ अली खान और सोनाली बेंद्रे। पंजाबी फिल्म यारिया में एक विशेष भूमिका में फरीदा जलाल नजर आई। सन 1978 में इनका विवाह एक्टर तब्रेज बर्मावर के साथ हुआ, जो कि भटकल के थे। इन दोनों की मुलाकात फिल्म जीवन रेखा की शूटिंग के दौरान हुई थी और दोनों में प्यार हो गया और फिर इन्होंने शादी कर ली। फिल्म आराधना के बाद जीवन रेखा इनकी दूसरी फिल्म थी, जिसमें इन्होंने हीरोइन की भूमिका निभाई थी और साथ में थे उनके पति तब्रेज। इस फिल्म का एक गाना बहुत ही मकबूल हुआ।

फरीदा जलाल का एक बेटा है यासीन। अभिनेत्री फरीदा जलाल के अभिनय को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। फरीदा जलाल हमेशा उन्नति करें। हम सब विविध भारती परिवार की ओर से उन्हें शुभकामनाएं देते हैं।

आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित था अभिनेत्री फरीदा जलाल पर। शोध, आलेख और स्वर शहनाज अख्तरी का। कार्यक्रम का संपादन किया आकांक्षा सिंह ने। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। आज के फनकार।

0: जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
1: संगीतकार ओ पी नैयर।
0: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओ पी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता, आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है। ऐसी अद्भुत यादें।
2: अभी विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जा रहे थे। FM 101.2 MHz पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 10 बजे हैं। जिले की चिट्ठी अब हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे।
1: स्वर है अभिषेक कटियार का। भोपाल में इन दिनों गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। दोपहर में सड़कों और बाजारों में सन्नाटा नजर आ रहा है। कल शहर का अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने लोगों को धूप और लू से बचने की सलाह दी है। MVM कॉलेज में NCC के पूर्व कैडेट्स का चौथा एलुमनी फंक्शन आयोजित किया गया, जिसमें 1975 से अब तक के पूर्व कैडेट्स और नेवी ऑफिसर्स शामिल हुए। अब MP लॉकर एप्लीकेशन के जरिए लोगों को नगरीय सेवाएं भी मोबाइल पर मिलेंगी। इसमें संपत्ति कर, जल कर और लाइसेंस समेत 22 से ज्यादा दस्तावेज डिजिटल रूप में उपलब्ध होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने काफिले की गाड़ियों की संख्या 13 से घटाकर 8 कर दी है। उन्होंने लोगों से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की अपील की। भोपाल से छोड़ा गया एक दुर्लभ सिनेरियस गिद्ध 24 दिनों में करीब 3000 किलोमीटर उड़कर उज्बेकिस्तान पहुंच गया है। इस दौरान उसने राजस्थान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का सफर तय किया। वन विभाग ने उसकी पूरी यात्रा पर नजर रखी है। गर्मी बढ़ने के साथ ही शहर में जूस और लस्सी की दुकानों पर भीड़ बढ़ रही है। मिलावट की शिकायतों पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने कई दुकानों पर छापेमारी की है। रानी कमलापति स्टेशन के पास बंसल वन बिल्डिंग में NSG ने हाई इंटेंसिटी मॉक ड्रिल का आयोजन बीते दिनों किया। आतंकियों से बंधक छुड़ाने और सुरक्षा एजेंसियों के तालमेल का अभ्यास इस मौके पर किया गया। मानसून से पहले डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर शहर में बीते दिनों रैली, नुक्कड़ नाटक और जन जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए लोगों को बचाव के उपाय बताए गए। रविन्द्र भवन में आयोजित नर्मदा चिंतन संगोष्ठी में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान समर्थ दृष्टि साधना के शिखर पुस्तक का विमोचन किया गया और सामाजिक क्षेत्र में बेहतर काम करने वालों को सम्मानित किया गया। रेलवे ने गर्मी की छुट्टियों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए 3 समर स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। ये ट्रेनें भोपाल और रानी कमलापति स्टेशन से होकर गुजरेंगी, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी। भोपाल में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। राजधानी में पेट्रोल 109.70 रुपए और डीजल 95.04 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। भोपाल और इंदौर का मेट्रोपॉलिटन एरिया अब 28,000 वर्ग किलोमीटर तक विकसित किया जाएगा, जिसमें कई जिलों की तहसीलें और हजारों गांव शामिल होंगे। प्रदेश सरकार ने OBC युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना की शुरुआत की है। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में बीते दिनों चयनित युवाओं को प्रशिक्षण किट का वितरण किया गया। IPS शैलेंद्र सिंह चौहान ने भोपाल में डिप्टी कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर का पदभार संभाल लिया है। उन्होंने कहा कि शहर की शांति और सुरक्षा बनाए रखना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। भोपाल में किरायेदारों, PG में रहने वालों और होटल लॉज में ठहरने वालों की जानकारी पुलिस को देना अब जरूरी होगा। पुलिस प्रशासन ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। बीते दिनों मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनीष शर्मा ने जयप्रकाश जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान अनुपस्थित मिले डॉक्टरों को नोटिस भी जारी किए गए। भोपाल के पास बेतवा नदी के सूखे उद्गम स्थल को पुनर्जीवित करने के अभियान के दौरान एक प्राचीन जल स्रोत मिला है, जिसे पार्वती कुंड नाम दिया गया है। सफाई के बाद इसमें फिर से पानी निकलने लगा। जनगणना 2027 के तहत भोपाल में अब तक 3,60,000 से ज्यादा मकानों की गणना पूरी हो चुकी है। बेहतर काम करने वाले प्रगणकों को सम्मानित भी किया गया। बारिश के मौसम में सफाई मित्रों की सुरक्षा के लिए नगर निगम ने उन्हें रेन किट वितरित करना शुरू किया है। पहले चरण में 105 सफाई मित्रों को किट प्रदान की गई। रविन्द्र भवन में बीते दिनों आयोजित KF रुस्तम जी पुरस्कार समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 101 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। भोपाल जिला न्यायालय में बीते दिनों राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें बिजली बिल, जलकर और संपत्ति कर के मामलों में राहत दी गई और कई विवाद आपसी सहमति से निपटाए गए। बीते दिनों तुलसीनगर स्थित नगर निगम के नए अटल भवन का मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उद्घाटन किया। 43 करोड़ रुपए की लागत से बने इस भवन में अब नगर निगम के सभी दफ्तर एक ही जगह काम करेंगे। भोपाल से पहली बार बीते दिनों सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा रवाना हुई। मुख्यमंत्री ने रानी कमलापति स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस यात्रा में 1100 श्रद्धालु शामिल हुए। प्रदेश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 62 IPS अधिकारियों के तबादले बीते दिनों किए।

नई जिम्मेदारियां एडीजी से लेकर डीसीपी स्तर तक के अधिकारियों को सौंपी गयी। भोपाल के कुशभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में ग्रीन बिल्डिंग तकनीक पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के इंजीनियर, वैज्ञानिक और उद्योग प्रतिनिधि शामिल हुए और मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम बीते दिनों घोषित किए गए, जिसके तहत 12वीं में 76% और 10वीं में 73% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस बार भी बेटियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मेरिट में बाजी मारी। भोपाल जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे भोपाल जिले की चिट्ठी। आलेख ताहिर खान का था और वाचन स्वर अभिषेक कटियार का।
1: FM 101.2 MHz पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। दिल से दिल तक पहुंचती आवाज आकाशवाणी खंडवा की।

0: तू है तो
1: हम हो चुके आपके। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा। श्रोता, हम बोल रहे हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा से। लीजिए प्रस्तुत है हमारा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
3: और आपके मित्र अजीत का भी नमस्कार और जोहार।
2: बिना संघर्ष के सफलता बिना नमक के भोजन की तरह होती है। इससे हमारी भूख तो मिट जाएगी लेकिन ये स्वादिष्ट नहीं लगेगी।
3: श्रोताओं, ये सुंदर विचार हमें भेजा था बिहार से वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने। बिल्कुल सच कहा है, बिना श्रम के सफलता का सच्चा आनंद नहीं मिलता
2: जी।
3: आप दोनों का धन्यवाद। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
3: और भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का संदेश हमें मिला है। लिखते हैं,
2: गुरुवार 23 अप्रैल को सुविचार को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए आपने जानकारी देते हुए एक दोहा का उदाहरण दिया। इस दोहे में कबीरदास जी विश्वास को न तोड़ने की सीख देते हैं। दोहा इस तरह से था, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुरे, जुरे गांठ परे जाए।
3: आपने आगे लिखा है, आपके द्वारा इस दोहे के रचनाकार कवि का नाम कबीरदास बताया गया। वास्तव में इस दोहे को रहीम ने लिखा है, न कि कबीरदास जी ने। धन्यवाद और आभार।
2: आपका भी बहुत बहुत आभार। कृष्ण कुमार जी, आपको भी हमारा विशेष धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रमों को बड़ी बारीकी से सुनते हैं और उन पर प्रतिक्रिया भी देते हैं।
3: तो हम कहना चाहते हैं कि आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है हमेशा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया संदेश भेजते रहिए। अगला संदेश सुनते हैं जो हमें मिला है।
2: गाँव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
3: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
2: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी।
3: और बेगूसराय बिहार से हमें संदेश मिला है इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा का। लिखते हैं,
2: आज की प्रस्तुति कल्पना चावला जो सितारों में खो गई हमें बहुत अच्छी लगी, आपको साधुवाद।
3: और आप सबको हमारा हार्दिक आभार। आइए बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए।
2: इस प्रश्न का उत्तर है, नीली वेल को आकार में समुद्र का सबसे बड़ा

0: जीव माना जाता है। इसका वजन लगभग 100 से 150 टन का होता है, यानी किलोग्राम के अनुसार ये 1 लाख से 1.5 लाख किलोग्राम की होती है।
1: जी, और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, थर्मल लैग किसे कहते हैं?
0: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। गर्मियों में सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है। सुबह से सूर्य के ताप के कारण धरती गर्म होती रहती है और 12 बजे सूर्य की किरणें धरातल पर सीधी पड़ती हैं।
1: जी,
0: बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसीलिए उनका ताप कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान यानी 12 बजे के बाद भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है, जिसे थर्मल लैग कहते हैं।
1: और हमारा तीसरा प्रश्न था कि प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है?
0: इसका उत्तर है साथियों, प्रकृति जलवायु के अनुसार हर मौसम में वही उपज देती है जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। इसके अनेक उदाहरण हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि गर्मी के मौसम में जो फल आते हैं उनमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है, ताकि हमें गर्मी के मौसम में इसका लाभ मिले।
1: और हमारा अगला प्रश्न श्रोताओं, प्राथमिक उपचार से संबंधित था। हमारा प्रश्न था कि लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीले करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है?
0: तो साथियों, इसका उत्तर भी जान लेते हैं। लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से सांस लेने में आसानी होती है और शरीर का रक्त संचार आसानी से हो पाता है।
1: और अब हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमारा प्रश्न था, बच्चे अपनी गर्मियों की छुट्टी में और क्या क्या कर सकते हैं?
0: इसके बहुत से उत्तर हो सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे विद्यार्थी कोई भी शास्त्रीय नृत्य या वाद्य यंत्र सीख सकते हैं, जैसे हारमोनियम, तबला या बांसुरी।
1: जी विमरेश जी, ये सचमुच एक बड़ी अच्छी सलाह है। तो श्रोताओं, अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है?
1: 8800440559 हमारा IVRS नंबर है और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमें भेज सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स।
0: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित ये कार्यक्रम बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे प्रकृति का ध्यान से अवलोकन करें और उसकी सुंदरता का अनुभव करें। कार्यक्रम एक सुंदर गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें एक बच्ची आकाश में बादलों को ध्यान से देखकर उनके विभिन्न आकारों में पशु पक्षियों की छवि की कल्पना करती है।
2: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू?
3: वी आर फाइन सर।
4: आई एम फाइन।
5: आई एम गुड सर।
2: फाइन, गुड। ओके, सो टेल मी, what do you like most?
6: I like playing, sir.
7: I like painting, sir.
2: Very good. Anyone else?
8: Sir, I like singing.
9: I like playing with my pets.
2: Oh, that's great. Now tell me, do you like looking at the beautiful flowers in the garden?
3: Yes, sir.
7: We like.
2: Lovely butterflies?
3: Yes, sir.
2: And lovely colorful chirping birds? That's very nice, children.
10: Sir, I go to the park with my parents on holidays.
2: Okay. It's always wonderful to see the beautiful nature, isn't it?
3: Yes, sir.
2: The rivers, the mountains, and the green trees.
3: Yes, sir.
2: Okay. So let me tell you the story of a sweet child like you.
3: Like us?
2: Would you like to listen? To know what the child did, you have to listen to a beautiful poem. After listening to the poem, you will know what the child did. Okay?
3: Okay, sir.
2: Very good. Now I am going to read this poem. You have to repeat after me. Okay?
3: Okay, sir.
11: We love you, the child did.
2: As I lie on my back, looking up at the sky.
3: Looking up at the sky.
2: I see a big white bear.
3: I see a big white bear.
2: Looking down at me.
3: Looking down at me.
2: As I lie on my back.
3: As I lie on my back.
2: Looking up at the sky.
3: Looking up at the sky.
2: I see a ship sailing.
3: I see a ship sailing
2: on a white sea.

0: पर्यावरण विशेषज्ञ तुलसी गौड़ा के जीवन, उनके पर्यावरण पर शोधों और वृक्षों को बचाने के उनके प्रेरणादायक अभियान की जानकारी देता है। विशेष रूप से मातृ वृक्षों पर उनकी खोज के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है।
1: नंगे पांव, धोती नुमा पारंपरिक कपड़े, आदिवासी गहने पहने
2: तुलसी गौड़ा, 72-year-old ट्राइबल वुमन फ्रॉम कर्नाटका, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तंको पद्मश्री सम्मान रे सम्मानित करिछंती।
3: इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फॉरेस्ट शी इज कॉल्ड इन कर्नाटका तुलसी गौड़ा।
1: जंगलों की इनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली तुलसी गौड़ा
4: को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया है।
5: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। आज राष्ट्रपति भवन के एक भव्य समारोह में श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा सन 2020 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
6: श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण।
5: यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। देश भर में प्रसन्नता की लहर।
7: नवंबर 2020 को भारत सरकार ने श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, जो भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है। राष्ट्रपति भवन के रेड कार्पेट पर नंगे पांव चलते हुए श्रीमती तुलसी गौड़ा पद्मश्री सम्मान लेने जब महामहिम राष्ट्रपति के पास पहुंची, तो सादगी और विनम्रता की प्रतिमूर्ति इस आदिवासी महिला को देखकर सभागार देर तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा।

0: उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र पर्वतों और सघन जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। पहाड़ों से उछलती कूदती नदियां जब घाटियों और समतल मैदानों से कल कल करती हुई गुजरती हैं, तो एक अनोखा नजारा पेश करती हैं।
1: इस सुरम्य वातावरण को और भी संगीतमय बना देता है पक्षियों का कलरव। इस क्षेत्र में अनेक जनजातियां रहती हैं। उनके जनजातीय संगीत और नृत्य तो मानो संपूर्ण सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। ये जनजातियां मुख्य रूप से खेतीबाड़ी और पशुपालन पर निर्भर हैं। यहाँ के आदिवासी विशेष रूप से नर्सरियों में बागबानी करके औषधीय पौधों को उगाने का कार्य करते हैं।
0: समृद्ध आदिवासी संस्कृति और प्रचुर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच तुलसी गौड़ा का जन्म 1944 में होनाली गांव के हलक्की आदिवासी परिवार में हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से नर्सरी में काम करना शुरू किया। निर्धनता के कारण कभी वो स्कूल नहीं जा पाई।
1: बड़ी हो जाने पर तुलसी ने अपनी माँ और बहनों के साथ गांव की ही एक सरकारी नर्सरी में दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करना शुरू किया। पौधों से उनका बहुत लगाव था। तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
0: एक बार की बात है, उनके गांव की नर्सरी में वन विभाग द्वारा कुछ पौधे लाए गए। वो औषधीय पौधे थे और बहुत महंगे भी। वन विभाग की योजना थी बड़े पैमाने पर इन औषधीय पौधों की खेती करने की। पौधे रोप दिए गए, लेकिन एक दो दिनों के बाद वो मुरझाने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें उन पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
1: कुछ ही दिनों में उन पौधों में जान सी आ गई और वो खूब हरे भरे होकर पनपने लगे। इस घटना

0: कोरोना से तुलसी का नाम स्थानीय वन विभाग में फैल गया और सबने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इस घटना को याद करते हुए वो बताती हैं।
1: उन दिनों में करीब 20 वर्ष की थी। पौधों के बारे में मेरा अनुभव बहुत नहीं था। मुझे उस नर्सरी में बुलाया गया था। वहां जाकर मैंने देखा कि सब कुछ ठीक था। रोज उन्हें पानी 2 बार दिया जाता था और खाद की भी कोई कमी नहीं थी।
2: अच्छा,
1: अक्सर मैंने देखा था कि कई बार ज्यादा पानी देने से कुछ पौधे मर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पौधों को जरूरत से बहुत ज्यादा पानी मिल रहा है, क्यों ना पानी की मात्रा कम करके देखा जाए। जब ऐसा किया तो 2 दिनों में पौधों में कुछ अच्छे बदलाव आए। हाँ।
2: ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई तुलसी जी।
1: जी, पौधों के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें कितना पानी दिया जाए
2: और कितना नहीं दिया जाए। हाँ। तुलसी जी, ये तो हुई पानी की बात। क्या आपने उन पौधों के बारे में कुछ और भी अनुभव किया था?
1: हाँ हाँ, मैंने एक और बात पर गौर किया था कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि यदि उन्हें साथ साथ रखा जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं।
2: अरे वाह, ये तो बहुत ही सचमुच गौर करने वाली बात है।
1: हाँ, और अगर अलग अलग रखा जाए तो वो उस तरह से नहीं बढ़ पाते। कुछ पौधे तो अकेले लगाए जाने से बढ़ते ही नहीं हैं और फिर धीरे धीरे कमजोर होकर सूख जाते हैं।
2: अच्छा,
1: मुझे लगा कि क्यों ना इन्हें एक दूसरे के आसपास रोप कर देखा जाए। फिर हमने ऐसा ही किया तो पाया कि आश्चर्यजनक रूप से ये पौधे बढ़ने लगे थे। हाँ।
2: अरे, ये तो बड़ी ही अद्भुत बात बताई आपने तुलसी जी। हाँ, लेकिन इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं?
1: देखो, पहली बात तो ये कि पौधों में भी जीवन होता है।
2: बिल्कुल होता है।
1: और मुझे लगता है कि वे भी दुख सुख अकेलापन का अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए यदि उन्हें उचित दूरी पर आसपास रखा जाए तो वे बेहतर ढंग से बढ़ते हैं।
2: ये तो बड़ी ही दिलचस्प बात है तुलसी जी,
1: है ना?
2: जी।
1: और उचित दूरी पर आसपास लगाए जाने से वे एक दूसरे के साथ नमी और पोषण को साझा कर सकते हैं।
2: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे?
1: हाँ, बिल्कुल देना चाहूंगी। मेरा कहना है कि देश को बचाने के लिए वन को बचाना होगा। वन बचाओ, देश बचाओ।
3: उन्होंने पेड़ पौधों और जंगल को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से शामिल कर लिया था। उनके अंदर पेड़ पौधों की सेवा करने का जज्बा आ गया था। एक बार उन्होंने कहा था,
1: मुझे नहीं मालूम कि जंगल के बारे में मैंने इतना ज्ञान कैसे एकत्रित किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं पौधों से, जंगल से बातें कर सकती हूं। मैं जंगल की भाषा बोल सकती हूं।
3: कहते हैं कि वो जहां भी जाती थी वहां के सभी पेड़ पौधों के बारे में भली भांति बता सकती थी। वो विस्तार से चर्चा कर सकती थी कि किस पौधे को कितना पानी देना है, उन्हें खाद किस मात्रा में देना है और बीजों का संग्रह व भंडारण किस तरह से करना चाहिए।
0: श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को जंगल और उसके पौधों के बारे में उनके ज्ञान के कारण पर्यावरणविदों द्वारा जंगल के विश्वकोश और उनकी जनजाति द्वारा वृक्ष देवी और जंगल अम्मा के रूप में जाना जाता है।

0: जंगल में हर प्रजाति के पेड़ की माँ या मातृ वृक्ष की पहचान करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती हैं, चाहे वो कहीं भी हो। किसी भी पेड़ का मात्र एक सूखा पत्ता भी उठाकर वो बता सकती हैं कि इसकी माता पेड़ कहाँ है।
1: आइए जानते हैं कि मातृ वृक्ष या माता पेड़ किसे कहते हैं। नाम से ही विदित होता है कि एक बच्चे को पालने में माता की जो भूमिका होती है, वही भूमिका इन पेड़ों की भी होती है। तो आइए सुने कैसे।
2: तुलसी जी, अक्सर माता पेड़ों या मातृ वृक्षों के बारे में बात की जाती है, तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि माता पेड़ों या मातृ वृक्षों को आखिर पहचानते कैसे हैं?
3: बड़ा अच्छा सवाल है। माता पेड़ या मातृ वृक्ष अपने आकारों से पहचाने जाते हैं।
2: अच्छा।
3: ये जंगल के सबसे पुराने, बड़े, लंबे और घने पेड़ होते हैं। और हाँ, पुराने होने की वजह से इनकी जड़ें बहुत गहरी और दूर दूर तक फैली होती हैं।
2: अच्छा।
3: इनकी जड़ों से आसपास के बहुत से छोटे और समान वृक्ष भूमि के अंदर जड़ों से जुड़े होते हैं और मातृ वृक्ष से भोजन लेते हैं।
2: अच्छा, ये तो बड़ी दिलचस्प बात बताई आपने। अच्छा, मैंने तो ये भी सुना है कि मातृ वृक्ष मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है?
3: बिल्कुल सही सुना है आपने। मातृ वृक्ष गोंद की तरह मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं।
2: अच्छा।
3: और आंधी तूफान के समय दूसरे पेड़ों को गिरने या उखड़ने से बचाते हैं।
2: अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात बताई आपने।
3: इतना ही नहीं, यदि कई मातृ वृक्ष आसपास हों, तो छोटे पेड़ों के लिए आसपास की नमी को बनाए रखकर प्राकृतिक ग्रीन हाउस बनाते हैं। वे छोटे और युवा पेड़ों को नाइट्रोजन और कार्बन प्रदान करके उन्हें पालते हैं, समझे?
2: जी, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारियां आपने दी हैं। और अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और बताइए ना मातृ वृक्षों के बारे में।
3: हाँ हाँ, बिल्कुल। देखिए, जड़ें गहरी होने के कारण ये अपनी जड़ों द्वारा आसानी से भूमिगत जल और फास्फोरस जैसे मिट्टी के पोषक तत्वों को खींच लेते हैं और उन पेड़ों को देते हैं जिनकी जड़ें अभी बहुत गहरी नहीं है, ठीक है ना?
2: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी दिलचस्प और उपयोगी जानकारियां दी हैं आज। एक बार फिर से बहुत धन्यवाद।
3: आपका भी बहुत धन्यवाद।
1: तुलसी गौड़ा जी को 300 औषधीय पौधे और 1,00,000 से भी अधिक पेड़ लगाने का गौरव प्राप्त है। कहते हैं कि उनके द्वारा लगाया गया एक भी पेड़ सूखा नहीं है। उनके द्वारा लगाए गए औषधीय पौधों के इस्तेमाल से उस क्षेत्र की जनजातियों का बड़ा कल्याण हुआ है।
0: 78 वर्षीय श्रीमती तुलसी गौड़ा ने 60 वर्षों तक कर्नाटक वानिकी विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं और अब वो अवकाश प्राप्त जीवन बिता रही हैं। लेकिन आज भी उनकी ऊर्जा कम नहीं हुई है। इन दिनों भी वो अपने गांव की नर्सरी और वानिकी विभाग के दफ्तर में बीजों का संग्रह लेकर पैदल चलती हुई दिखाई देती हैं। किसी ने कहा है, महानतम चीजें हमेशा अति साधारण होती हैं, यानी ग्रेटेस्ट थिंग्स आर ऑलवेज सिंपलेस्ट। तुलसी गौड़ा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जंगल इंसाइक्लोपीडिया तुलसी गौड़ा। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटीलैंग लिंगडो, कलाकार अश्विनी वालिया, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, पूनम एस कुदेसिया और अंजलि, आलेख अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी।

0: प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम तुलसी गौड़ा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। उमंग, उमंग, उमंग,
2: उमंग। आप सुन रहे थे हमारा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT FM 101.2 MHz पर। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:35 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम।

0: तो हमारा जो ये अनाज छे ना मसाला छे वो साल भर अच्छा रहेगा ना। अभी तो समय अचार बनाना कुछ बनो, तो हमारी सब बहना तरह तरह का अचार बने रहेगा ना। तो अचार नाखते समय भी अपना बाल नख पर कपड़ो बांधी लेवा, मुंडा पर मास्क पहरा ना। अचार को जो बर्तन छे जेमा हम बने रहा जे काम हम अचार भरांगा ओखा भी अच्छी तरह से साफ स्वच्छ रखा। तो बनो इना प्रकार से आप ध्यान रखोगा तो हमारी जो भंडारित चीज न छे ना वो बहुत अच्छी रहेगा ना। ना बनो आज 18 मई का दिन ख, यो दिन हमारा लिए बहुत खास है। एक अंतर्राष्ट्रीय एड्स वैक्सीन दिवस का रूप में मनाया जाए। इना दिन का मनाने को मुख्य उद्देश्य आम जनमा HIV का प्रति जागरूकता लाने एक कारण यो दिन मनाया जाए। मैडम एक ही वैक्सीन का लेना देश विदेश प्रयासरत है, पर जब तक हम सावधानी रखा न जागरूकता बने न रखा उज हमारे लेना बचाव छे। तो आओ सुनाज एक बार हम जानकारी ग्राम अहमदपुर खैगांव की सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी चंदा कोचले से।
1: सभी बहनों को मेरा नमस्कार।

0: कल्याण यो दिन मनाए जाए मैडम। एक वैक्सीन कल्याण देश विदेश प्रयासरत है, पर जब तक हम सावधानी राखा न जागरूकता बढ़े न राखा उज हमारे लेना बचाव छे। तो आओ सुना एक बार हम जानकारी ग्राम अहमदपुर खैगांव की सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी चंदा कोचले से।
1: सभी बहनों को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ मेरी प्यारी सभी बहनें सकुशल और स्वस्थ होंगी। आज हम एक विशेष दिवस के उपलक्ष्य में एक विशेष ही महत्वपूर्ण अभियान पर बात करेंगे। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड ह्यूमनो डेफिशियंसी सिंड्रोम है। यह एक तरह का वायरस है जिसका नाम HIV है, ह्यूमन डेफिशियंसी वायरस। यह विषाणु हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देता है। एड्स का इलाज संभव नहीं है, लेकिन इसके प्रभावों को दवाओं और उपचार के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। तो आज मैं आप सभी मेरी प्यारी बहनों को इस खतरनाक बीमारी एड्स के लक्षण, उससे बचने के उपाय, उसकी रोकथाम, इन सभी के बारे में बहुत ही विशेष जानकारी दूंगी कि एड्स क्या है। जैसे कि मैंने बताया था कि एड्स एक्वायर्ड ह्यूमनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली इतनी कमजोर हो जाती है कि वह सामान्य संक्रमण से नहीं लड़ पाती। HIV का अंतिम और सबसे गंभीर चरण ही एड्स कहलाता है। अब हम जानते हैं कि एड्स जो है वो किन कारणों से होता है। एड्स के प्रमुख कारण जो इसके फैलने के तरीके होते हैं, वो पहला है असुरक्षित यौन संबंध। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है एड्स होने का, और इस कारण के बारे में अधिकतर जहाँ के लोग हैं वो इस कारण के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये असुरक्षित यौन संबंध से होता है। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यह सबसे महत्वपूर्ण कारण है एड्स होने का, और हमें इसके बारे में जागरूकता करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि एड्स एक लाइलाज बीमारी है। असुरक्षित यौन संबंध से हमारा मतलब है कि एक से ज़्यादा व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध करने से एड्स होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसलिए हमें इस पे गांव स्तर में, शहरी स्तर में, सभी स्तर में अपने अपने लेवल पे जागरूकता फैलानी चाहिए, जिससे कि हम एड्स होने से रोक सकें। दूसरा इसका महत्वपूर्ण कारण है संक्रमित सुई, सिरिंज व अन्य नशीली दवाओं का सेवन एक ही सुई के माध्यम से करना। अगर हम गांव में कहीं डॉक्टर के पास भी जाते हैं, इंजेक्शन्स लगवाते हैं, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके लिए जो सिरिंज यूज़ हो रही हो वो पैक्ड हो, ना कि पहले यूज़ की हुई हो। अब जो पुरानी सुइयाँ थी, पुराने ज़माने में जो सुइयाँ यूज कर ली जाती थी उबाल के, बट अब वो सिस्टम पूरी तरह से बंद हो चुका है। हर पेशेंट के लिए नई सुई का इस्तेमाल करना ही गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, तो इसका भी ध्यान हम सभी को ही रखना है। तीसरा एड्स होने का कारण है गर्भवती माता से उसके बच्चे को। गर्भवती माता से उसके बच्चे को भी एड्स हो सकता है। ये प्रसव के दौरान, गर्भावस्था के दौरान या स्तनपान के दौरान हो सकता है। इससे बचने का कारण भी यही है कि जब भी कोई गर्भवती गर्भावस्था में रहती है तो उन्हें अपना HIV टेस्ट करवा लेना चाहिए। HIV टेस्ट नज़दीक स्वास्थ्य केंद्र, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सभी जगह पे फ्री में होते हैं। ठीक है, जैसे ही आपको पता चलेगा कि आपको HIV पॉजिटिव है, तो आपकी वहीं पे दवाई गोलियाँ चालू हो सकती है और वो एड्स की स्टेज तक नहीं आएगा। चौथा कारण है संक्रमित रक्त चराना। संक्रमित रक्त चराने से मतलब यहाँ यह है कि जैसे कि आप हॉस्पिटल्स में किसी को खून की कमी है और आप जो ब्लड चढ़वाते हो, अगर आप वो ब्लड बैंक से ले रहे हैं, तो ये ज़रूरी है जानना कि उसका HIV टेस्ट हो चुका हो। अगर आप HIV टेस्ट किए बिना वो ब्लड चढ़वा लेते हैं, तो उससे भी खतरा रहेगा एड्स होने का। ये महत्वपूर्ण कारण है एड्स के। इसी के साथ मेरी प्यारी बहनों को मैं अब उसके लक्षण बताना चाहूँगी कि एड्स होने के लक्षण क्या क्या रहते हैं, जिससे कि आप अपनी जाँच करा सकें। अधिकांश लोगों को यह नहीं पता रहता है कि HIV के संपर्क में आ चुके हैं या वो प्रभावित हो चुके हैं। HIV के जो प्रारंभिक लक्षण होते हैं वो बड़े ही सूक्ष्म लक्षण होते हैं, नॉर्मल, इसलिए शायद उन्हें समझ आता है। बट इसके लक्षण इस प्रकार से रहते हैं, जैसे बुखार आना, ग्रंथियों में गले के पास सूजन आना, गले में खराश होना, रात्र में अधिक पसीना आना, मांसपेशी में दर्द होना, सर दर्द होना, अत्यधिक थकान होना, शरीर पर चकते, लाल पीले चकते हो जाना, ये बहुत ही सामान्य सिम्टम्स है, लेकिन लंबे समय तक और बार बार होना। तो अगर ऐसे सिम्टम्स लक्षण हमें आते हैं, तो हमें नज़दीकी केंद्र पर जाके

0: कैविकटस करा लेना चाहिए। कुछ लोग इन लक्षणों पर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि ये दिखने में साधारण लगते हैं, उन्हें लगता है कि ये सर्दी फ्लू के लक्षण हैं। लक्षणों के गायब होने के बाद भी HIV से प्रभावित व्यक्ति किसी भी लक्षण के बिना वर्षों तक जी सकता है। यदि आप HIV से प्रभावित हो तो इन्हें जानने का एकमात्र कारण HIV की जाँच कराना ही है। यदि आपको HIV के कुछ शुरुआती या थोड़े लक्षण ही दिखाई पड़ते हैं तो ये महत्वपूर्ण है कि आप HIV के टेस्ट करवाएं। इसी के साथ अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी, हमारी प्यारी बहनों को पता होना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही सामान्य बातें जिससे कि हम एड्स को फैलने से रोक सकते हैं। इसमें हम अब बात करेंगे इसके इलाज और रोकथाम के बारे में। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आज एड्स का कोई पूर्ण इलाज नहीं है, लेकिन एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी की दवाओं से HIV को नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे एड्स को रोका जा सकता है। नियमित जांच करवाना और सुरक्षित यौन संबंध बनाना जरूरी है। सुई और सिरिंज का साझा ना करना। साथ ही गर्भवती HIV पॉजिटिव महिलाओं को डॉक्टर की सलाह के अनुसार इलाज करवाना चाहिए ताकि बच्चे को संक्रमण का खतरा कम हो। इसी के साथ ही अपने गांव स्तर पे या हम हमारी बहन मित्रों के साथ HIV के बारे में खुल के बात कर सके, ताकि जो समाज की भ्रांतियाँ है वो दूर हो सके। क्योंकि एड्स को लेके एक भ्रांति यह भी है कि जिसे एड्स है वो इस चीज़ से डरेगा कि समाज मुझे अलग ना कर दे, निष्कासित ना कर दे, जो होता है क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि ये साथ खाने बात करने से फैलता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसे HIV है एड्स है वो नॉर्मल लोगों के जैसा हंस खेल सकता है, लोगों के साथ बैठ सकता है, खा सकता है, क्योंकि ये एक साथ बैठने से नहीं फैलता है। हमारी सरकार और बहुत सारे NGO विलेज स्तर पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर जगह विश्व एड्स दिवस के दिन रैलियाँ निकालते हैं लाल रिबन बांध के, ताकि हम व्यापक स्तर पर इसके लिए जागरूकता ला सकें। जो हमारे पेशेंट्स हैं एड्स के, जो इस बीमारी के साथ, खतरनाक बीमारी के साथ अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, हम उनकी मदद कर सके, समाज में उन्हें सम्मानजनक स्थान दिला सके और इसको लेके जो भ्रांतियाँ है उसको दूर कर सके, इसके लिए बहुत सारे अलग अलग स्तर पे काम कर रहे हैं। अब इसी के साथ मैं आप सभी से विदा चाहती हूँ, धन्यवाद।
1: बैरून, अभी हम सुन रहा था चंदा कोचले से जानकारी, एड्स जानकारी ही बचाओ। नाव आम सुनांज डॉक्टर अतुल माने, नोडल अधिकारी ART सेंटर, जिला चिकित्सालय खंडवा से यो संदेश।
2: HIV के लक्षण यह होते हैं कि यह कन्वर्ट हो जाता है एड्स में, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। यह सिंड्रोम होता है तो जो प्रारंभिक लक्षण होते हैं, बार बार दस्त का होना, वजन कम होना, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो सामान्यतः नहीं होते हैं, लेकिन इम्यूनिटी कम होने के कारण यह इन्फेक्शन होते हैं। इसमें सबसे जो मोस्ट कॉमन है वो ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन, मतलब आदमी में शाम होते से बुखार आना, लंबी खांसी चलना जो सामान्य ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होती, वजन कम होते जाना। तो कभी भी किसी भी मरीज को अगर मान लो कि TB हो रहा है तो उसकी HIV की जांच जरूर कराई जाती है। HIV की जांच हमारे जिला अस्पताल में ICTC सेंटर, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग एंड काउंसलिंग सेंटर, उसमें होती है। जो हाई रिस्क ग्रुप होते हैं, जो एंटीनेटल मदर होती है, ये मदर से बच्चे में ट्रांसमिट होता है, तो एंटीनेटल जो मदर रहती है उसका भी हम HIV करते हैं ताकि उसको संक्रमित बच्चा नहीं हो। और भी दूसरी रक्तजनित बीमारियों की एंटीनेटल में जांच की जाती है। अब यह एंटीनेटल में अगर पॉजिटिव आते हैं ये लोग, या हाई रिस्क वाले पॉजिटिव आते हैं, तो उनको ART सेंटर जो कि हॉस्पिटल कैंपस में ही है, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी देते हैं। एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी देने के पहले उसको हम काउंसलिंग करते हैं, CD4 सेल काउंट का सैंपल लेते हैं, रूटीन इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। CD4 सेल काउंट अगर 350 से ज़्यादा होता है तो उसको CPT देते हैं 10 दिन के लिए, फिर उसके बाद हम ART स्टार्ट कर देते हैं। ART स्टार्ट करने के 6 महीने बाद उसका अडेरेंस देखते हैं कि वो रेगुलर गोली दवाई ले रहा है कि नहीं, अपना सामान्य जीवन जी रहा है कि नहीं। उसके बाद उसका हम 6 महीने बाद वायरल लोड करते हैं। वायरल लोड में ये देखते हैं कि वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं। अगर वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करता तो हम उसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भोपाल जो है हमारा, उस पर भेजते हैं। तो वो ड्रग की रेजिम चेंज करके अगर हमने

0: फर्स्ट रेजिम दी है तो वो दूसरी रेजिम के लिए वो एडवाइस करते हैं 2 महीने वहीं पे ट्रीटमेंट देते हैं। पेशेंट स्टेबल होने के बाद हम एआरटी सेंटर खंडवा रिफर करते हैं। एचआईवी एड्स या से घबराने की कोई बात नहीं, इसका इलाज होता है। और इलाज होने के बाद पेशेंट को जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होते हैं, जो उसकी इम्यूनिटी कम होती है, वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है। नियमित अपना भोजन व्यायाम सब करे तो वह एक लंबा जीवन जी सकता है। इसके साथ एक स्टिग्मा ये होता है कि ये यौन संबंध से ही होता है, तो ऐसा नहीं है। यह पुरानी निडिल, संक्रमित निडिल और माँ से बच्चे में भी हो सकता है। तो एंटीनेटल में जो एचआईवी की जांच की जाती है उसके अंदर हम जैसे ही वो पॉजिटिव आती है, एचआईवी पॉजिटिव आती है, तो हम उसको एआरटी स्टार्ट कर देते हैं, तो उसका वायरल लोड कम हो जाता है, तो संक्रमित माँ से बच्चे में होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अभी हमारे एआरटी सेंटर पे 5 एंटीनेटल महिलाएं रजिस्टर्ड हैं, 56 बच्चे रजिस्टर्ड हैं, जो कि नियमित अपनी गोली दवाई ले रहे हैं और एक लंबा जीवन जी सकते हैं। तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है। जो भी अगर हाई रिस्क ग्रुप वाले हैं वो आईसीटी से सेंटर आए, अपनी जांच कराएं, और ये जांच पूरी गोपनीय रखी जाती है, ये इसकी किसी को जानकारी नहीं दी जाती। धन्यवाद।
1: सभी बहनों को मेरा नमस्कार।
2: बहनों, अभी हम सुनिया था डॉक्टर अतुल मानेसी एड्स जागरूकता पर यो संदेश। ना अब अपना कार्यक्रम में समय व्यंजन को। तो आज हम आपका लेन लाया गेहूं का आटा से बनाया गया चटपटो नाश्तो। एक लेन सामग्री लिख लियो, 1 कप गेहूं को आटो, नमक, आलू, हरा धनिया, जीरा, लाल मिर्च, तेल, ना कॉर्नफ्लोर यानी कि जो मक्का को बारीक पिसे लाटो रच वो अगर आपका डालनो हो तो, ना और भी जो मसाला आपका पसंद हो वो आप में नाखी सको। अब एक विधि इन प्रकार से कि गेहूं का आटा में मोयन ना नमक डाली ना आटो को थीले में, आटो ना ज़्यादा सख्त होना चाहिए ना ज़्यादा ढीलो। आमा उबले लालू नमक, हरा धनिया, जीरा, गरम मसालो न जो भी मसाला आपको हमने बताया वो सब आप में डाली ना मिला लियो। आमा 4 चम्मच मैदा या कॉर्नफ्लोर में 1 कटोरी पानी नाखा न फिर घोल बने ना एक अलग रखी देवा। इना घोल में हम हरा धनिया, कुटेल लाल मिर्ची, सफ़ेद तिल न नमक डाली सकें। आमा जो हमने आटो गुथियो ओको रोटी जैसो बेली लेवा, नो पर ये आलू को जो हमने मसालो तैयार करे ओका अच्छा से फैले लेवा। अब पर टमाटर की चटनी या हरी मिर्ची की चटनी जो भी आपका पसंद हो ओके एक हल्की परत लगाई लेवा। न चौकोर का आकार में ये रोटी का काटी लेवा। अभी जो चौकोर आकार हमको मिलियो एक एक का ऊपर एक पलटाई लेवा, यानी कि एक जो समोसो या कचौरी हम कवान उन हिसाब से एक आकार दे देवा। आमा इना चौकोर टुकड़ा नखा मैदा का घोल में लपेटी लेवा न फिर तेल में तड़े लेवा। तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए बहन, नहीं ना प्रकार से एक सुनहरी होना तक तड़े लेवा। न गर्मा गर्म नाश्तो तैयार छे अगर हम चटनी के साथ में खाई सकें। न अब इना व्यंजन का बाद आज को घरेलू नुस्खो। तो सौंफ, बादाम न मिश्री तीन ही नखा बराबर मात्रा में लेणुज, नेम 1/4 चम्मच सफ़ेद मिर्च या काली मिर्च को जो पाउडर रज वो मिले लेवा। अब इनका एक साथ पीसी लेवा इन चीज़ नखा, ने एक छोटा चम्मच चम्मच सुबह शाम दूध का साथ सेवन करने से आँख ने की जो रोशनी छे वो बढ़ज न बाल भी स्वस्थ रहज। ये घरेलू नुस्खो बहनों जरूर आजमाओ। न अब आज को टिप्स, अब हम टिप्स हम आज रसोई टिप्स लाए आपका लेना। हम देखें कि जो चाय छन्नी रज हमारी वो चाय छन्नी में अधिकतर चाय पत्ती अटकी जाए, नौका से ओका जो जाड़ाई छे वो बंद हुई जाए, तो एक आसानी से हम साफ कसा करा। तो कई करा कि चाय छन्नी का उबलता पानी में 5 से 7 मिनट का लेना डाली देवा, नोखा भी उबलना देवा। अब क्या होगा कि जो चाय पत्ती का कण है वो नरम पड़ जाएगा, नहीं नहीं छन्नी का हल्का ब्रश से साफ करो तो पूरी जाड़ाई साफ हो जाएगा, न एक जड़ावना की जरूरत पड़ने की न ना कहीं दूसरी हमको तकनीक वापरना पड़ेगा। तो इन प्रकार से आज को टिप्स। न अब अपना कार्यक्रम में समय एक निमाड़ी गीत को, तो आओ सुना बहन सरिता बाई ने उनका साथी नको गायो यो गीत।

आप सुन रहे थे ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। दिल से दिल तक पहुंचती आवाज आकाशवाणी खंडवा की।

0: तू है तो
1: हम हो चुके आपकी। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा। FM 101.2 MHz पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से

0: बोल रहे हैं। दिन के 11 बजे हैं। अब हम राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित करेंगे।
1: सभी सुनने वालों को नमस्कार। रंग तरंग कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। यह है लकी अली की आवाज, असलम के बोल और लकी अली का संगीत।

0: Civilian.
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

सोनू निगम की आवाज में आपने सुने फैज अनवर के बोल और साजिद वाजिद की धुन, और अब सुनते हैं सोनू निगम की ही आवाज में ये गाना। नुसरत बद्र के बोल हैं सोनू निगम की धुन।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, स्टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जान

रंग तरंग प्रोग्राम में आइए अब आपको सुनवाते हैं अदनान समी और आशा भोसले का गाया हुआ ये गाना, बोल रियाजुर रहमान सागर के हैं।

शान की आवाज में ये गाना अभी आपने सुना और यही है आज के रंग तरंग कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। अब दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती। रंग

आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से रिले होने वाले समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन की अपनी दो दिन की यात्रा के बाद नॉर्वे के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने

0: स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश में सभी कंपनियों के लिए अवसर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्षों से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की सुधार एक्सप्रेस पूरी गति से चल रही है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री को द्विपक्षीय संबंधों में उनके असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के सम्मान में स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के लिए इन दोनों एशियाई देशों का दौरा करने को लेकर वे उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग, रक्षा औद्योगिक साझेदारी और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता को प्रोत्साहित करना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन आज से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मेलन वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को दर्शाता है। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
1: ज्ञान वडसेरी दामोदर मेनो सतीशन नियम वी स्थापित भारत भरणघटनयोड निर्व्याजमाय विश्वस्तयुम।
0: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पीके कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को एक उज्ज्वल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर से एक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। ये हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 321 अंक गिरकर 74,917 जबकि निफ्टी 113 अंक लुढ़क कर 23,530 पर था। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला आज शाम 7:30 सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

यादों के महफिल कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गाना, मैंने प्यार किया फिल्म से। एसपी बाल सुब्रमण्यम की आवाज है, असद भोपाली के बोल राम लक्ष्मण की तर्ज।

यादों के महफिल कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं हम साथ साथ हैं फिल्म का गाना, कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं। 3
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में

0: 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
0: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: आइए अब आपको सुनवाते हैं खुशबू फिल्म का ये गाना, जिसे गाया है आशा भोसले ने, लिखा है गुलजार ने और धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

अभी आप सुन रहे थे ये गीत हम आपके हैं कौन फिल्म से। लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाजें थी, रविंद्र रावल के बोल थे, और अब सुनवा रहे हैं आपको ये गाना।

फिल्म लोफर का ये गाना आपने सुना, आशा भोसले का गाया हुआ। आनंद बख्शी के बोलों को संगीत से सवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और आइए अब आपको सुनवाते हैं आराधना फिल्म का ये गाना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, सुरों में पिरोया है सचिन देव बर्मन ने।

0: ना कर दो, सच लगे तो हाँ कर दो, झूठ लगे तो ना कर दो, हाँ के ना
1: हाँ हाँ
0: जीते रहो।

अपनी महफिल में जिसे चाहें बुला सकते हैं आप, हम भला क्या हैं सितारों को झुका सकते हैं आप।

0: आजम सुहाना है, दिलकश जमाना है,
1: फिर भी उदासी है
0: कि रात प्यासी है।

आशा भोसले और डैनी की आवाजों में अय्यब आपको सुनवाते हैं फिल्म काला सोना का गाना। मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है राहुल देव बर्मन ने।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा आदेश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर।

सुरीला सफर कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को राजुल का सादर नमस्कार। और आज का सुरीला सफर है बन रहा कुछ अलग ही ढंग से, क्योंकि आपके संदेशों में बात है आज की और गुजरे हुए कल की। तो अब आपको बता देते हैं आज का टेक्स्ट। जैसे हमारे कुछ श्रोता जो कि फेसबुक पेज पर, जहां पर गीत भी मिलते हैं और मीत भी मिलते हैं, वहां पर उन्होंने ये टेक्स्ट देख ली होगी। लेकिन जिन्होंने नहीं देखी है उनके लिए हम बता देते हैं आज की ये इबारत। कई बार कुछ ऐसा होता है कि गुजरा हुआ वक्त चुपके से दबे पांव मन में चला आता है और किसी जादूगर की तरह साकार कर देता है वो बीता हुआ पल। जब कोई मिला या कोई बिछड़ गया, कुछ टूट गया, कुछ छोड़ दिया या कुछ पा लिया, वो पल जहां मन के बावरे पंछी संग रोके नहीं रोकी उमंग, या जहां किनारे पर डूब गई दिल

की कश्ती। यादों की उन गलियों में भटकता ही रहे मन, लेकिन सितारे मेहरबान हो तो पुकार लेता है वर्तमान, ओ मितवा आ जा रे। इस गली में कहीं खो सकता है आपका आज, जल्दी से आगे बढ़कर थाम लीजिए अपने आज का हाथ, क्योंकि वक्त कभी ठहरता नहीं, तो चलिए उसी राह पर जिस पर खड़ा है आज अभी यहीं। तो ये है आज की इबारत, और इस इबारत को लेकर आपने चुन लिए हैं गीत। भाई गीत, गीतों की इस लिस्ट में बहुत लंबी सी लिस्ट है, और हमारे कुछ साथियों ने बताया है बहुत सारे गीतों के बारे में। एक श्रोता ने बताया है, कई बार यूं भी देखा है, गुजरा हुआ जमाना, चुपके से दिल दे दे, चला जाता हूं किसी की धुन में, जादूगर सैया, इस तरह के उन्होंने करीब 15 गीत छांटे हैं। वाह क्या बात है, गीतों के मामले में कितने संपन्न हैं हमारे श्रोताओं की याददाश्त। वाकई इस बात का हमें कई बार ये भी लगता है कि कितने ज़्यादा गीतों से जुड़े हुए लगाव है आप सभी को। एक श्रोता का जो संदेश है वो कह रहा है कि उसमें कुछ यूं कहा गया है कि आज की भारत ने मन के पक्षी को अतीत में ले गया। सही कहा गया है, आप भूगोल बदल सकते हैं, इतिहास नहीं। प्रत्येक व्यक्ति का एक अतीत होता है जो जिंदगी के हर मोड़ पर दस्तक देता है। यह अतीत सुनहरा या कड़वा हो सकता है, मगर वे लम्हे जीवन भर पीछा नहीं छोड़ते। बेहतर है बीते अतीत के बुनियाद पर जीवन को बुलंद कर वर्तमान में जीना ही सार्थकता है, क्योंकि वर्तमान ही हकीकत है। समय की रफ्तार कभी धीमी नहीं होती, लेकिन उसकी गहराई में छिपे यादों के मोती अक्सर हमारे दिल के आंगन में बिखर जाते हैं। कभी कभी हवा का एक झोंका, किसी पुराने पन्ने की खुशबू, या रास्ते में मिला कोई जाना पहचाना चेहरा हमें गुजरे जमाने की गलियों में वापस ले जाता है। वो लम्हे जो पीछे छूट गए थे अचानक सामने आकर दिल को एक अनूठे सुकून और भीगी हुई उदासी से भर देते हैं। वाह क्या खूबसूरत बात कही है। तो बताइए कि आज कई बार वो याद जो ताजा हो जाती है किसी ऐसे ही पुराने पन्ने की खुशबू के साथ, या हवा के किसी झोंके के साथ, या किसी जाने पहचाने चेहरे के साथ, कभी बहुत साल पहले गुजरी थी जो बात, वो बात ताजा हो जाती है, तो उस बात के बारे में हमें बताएं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि पुरानी यादों या बीते हुए वक्त की खुशनुमा या कठिन परिस्थितियों के पल जब भी स्मृति पटल पर पूर्व दीप्ति बनाने लगते हैं तो मन में एक भावुक संवेदना जागती है। ऐसे में मन का पंछी पुरानी यादों को एक नई उमंग और उम्मीद के साथ फिर से उड़ान भरने लगता है, और एक सकारात्मक सोच मन में आती है कि फिर एक बार कोई प्यार से पुकार ले। अपनी सुरीली धड़कन के सुरीला सफर कार्यक्रम में शामिल गद्यमय इबारत की इबादत की इबारत से निकले शब्दों में कई बार कुछ ऐसा गुजरा वक्त, चुपके से दबे पांव, मन आपका आज चला आता किसी जादूगर साकार, बीता पल मिला जल्दी गली मितवा, आगे बढ़ थाम लीजिए, जैसे संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण परक शब्दों की ही भरमार नहीं अपितु संबोधन परक शब्द भी हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि गुजरा हुआ जमाना, बीता हुआ वक्त और पुरानी यादें किसी जादूगर की तरह चुपके चुपके हमारे वर्तमान में लौट आती हैं। समय और यादों का ये सफर इतना गहरा होता है कि कई बार कुछ खट्टी मीठी यादें, कुछ पुरानी बातें और कुछ मधुर स्मृतियों के गीत अचानक दिल में उतर जाते हैं। भले ही आप दूर हो पर वो पल तो अचानक ही सजीव होकर आपके साथ हो जाता है। बहुत सुंदर बात कही आपने, और उन्हीं स्मृतियों के बारे में हम पूछ रहे हैं, उन्हीं खट्टी मीठी यादों के बारे में आप पूछ रहे हैं हम आज, जो आज से 20-25 साल पहले या 30 साल पहले या आज से 10 साल पहले गुजरी हो और आपको आज भी याद करा देती हूं। ये गाना सुनिए और बताइए कि ये किस कलाकार पर फिल्माया गया है।

हमारे एक श्रोता ने खुशी जाहिर की है कि वाह, मेरी लिस्ट का पहला ही गाना मिल गया। बिल्कुल सही बात। जवाब भी आए हैं बहुत ढेर सारे, ज्यादातर दिनेश ठाकुर या अमोल पालेकर जी की बात हुई है। एक श्रोता ने राजेश खन्ना का भी नाम लिखा है, ये रजनीगंधा फिल्म का गाना है। योगेश के बोल सलील चौधरी का संगीत, और गाना बैकग्राउंड में चलता है। दरअसल शुरू ये विद्या सिन्हा के चेहरे से होता है और बाद में फिर दिनेश ठाकुर और अमोल पालेकर भी इस गाने में नजर आते हैं। तो भाई ये जो गाना है कि कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है तो मन तोड़ता है जब वो सीमा रेखा, और कूद जाता है जाके जल्दी से अतीत की गलियों में। ऐसा जब कुछ आपके साथ हुआ हो उस वक्त के बारे में हम आपसे पूछ रहे थे। बताइए हमें, आज से 10, 15 या 20 साल पहले ऐसी कौन सी बात हुई थी जो आज भी याद करके या तो आप हंस पड़ते हैं या फिर दूसरों को हंसी आ जाती है। संदेश है एक श्रोता का, कहते हैं कि समय किसी के रोके नहीं रुकता, वक्त का पहिया लगातार घूमता रहता है, उसको पकड़ कर चलने में ही समझदारी है। वक्त के साथ ही लोग मिलते और बिछड़ते हैं, हमारा बीता हुआ कल वापस तो नहीं आ सकता, इसलिए हमें भविष्य की चिंता छोड़ आज में जीना चाहिए। बिल्कुल सही बात। एक और श्रोता कहते हैं कि बीता हुआ वक्त लौट कर तो नहीं आता, लेकिन उसकी यादें हमें यह एहसास जरूर दिलाती हैं कि हमने जीवन में कितना कुछ जिया है। कुछ अधूरे सपने, कुछ अधूरी बातें, कुछ बिछड़े रिश्ते, यही सब मिलकर मन एक ऐसी व्यथा पैदा करता है जिसे शब्दों में पूरी तरह बयां करना आसान नहीं होता। इन्होंने कुछ पंक्तियां भी लिखी हैं। यादें हमारे भीतर चुपचाप सांस लेती रहती हैं, कभी रात की खामोशी में, कभी बारिश की बूंदों में, तो कभी अकेलेपन की किसी लंबी शाम में वे फिर दस्तक देती हैं। बहुत सुंदर। एक और श्रोता ने आज शीर्षक से कुछ बात कही है। आज कोई ठहरा हुआ समय नहीं, बल्कि ये वो द्वार है जहां मनुष्य अपनी चेतना को जागृत करके शाश्वत सत्य का साक्षात्कार कर सकता है, क्योंकि जीवन केवल आज में ही धड़कता है। जो व्यक्ति आज में जीता है वो किसी भी कार्य को पूर्ण समग्रता से कर सकने की क्षमता रखता है, यही पूर्णता ही ध्यान।

यानी मेडिटेशन है। वाह क्या बात है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि अतीत के सबसे मोहक पलों में से एक होता है बीता हुआ समय। समय अपने अंदर कितना कुछ समोए रहता है, किसी अपने का मिलना बिछड़ना, यादों के तिलिस्म के ना जाने कितने दरवाजे हैं, मगर जीवन तब जीवन की तरह खिल उठता है जब कोई अपना हमें पुकार लेता है। ऐसे लोग जीवन की सबसे बड़ी सौगात लेकर आते हैं, ऐसे में उनका हाथ और साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि ये वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, जो है वो बस आज में है, इसी पल में है। बहुत सुंदर बात कही है। और एक और श्रोता ने बताया है कि सुरीला सफर में कुछ गाने, गुजरा हुआ जमाना, वक्त, पल, मितवा, कश्ती आर सच वर्ड्स ऑन विच टूडे सुरीला सफर विल गो ऑन, द रेस्ट डिपेंड्स ऑन द लिस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। आपकी लिस्ट में इसने, आपने जो शब्द चुने हैं, देखिए उन पर गाने आ रहे हैं या नहीं, और सोचिए तो कोई गाना आपके ख्याल में आ रहा है या नहीं। लेकिन अब जो गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, उसे सुनकर आपको बताना है फिल्म का नाम और किस कलाकार पर फिल्माया गया है।

बिल्कुल सही जवाब भेजा हमारे श्रोताओं ने। मधुबाला पर फिल्माया गया है शीरी फरहाद फिल्म का ये गाना है। लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना, तनवीर नकवी के बोल थे और एस मोहिंदर का संगीत था। श्रोताओं ने अपनी कुछ यादें भेजी हैं। जब मैं छोटा था तब मुझे उस समय की रिलीज हुई नई फिल्मों के गाने बहुत ज्यादा पसंद आते थे, पर जो जो समय बीतता गया मुझे ज्यादा पुराने गाने ज्यादा पसंद आने लगे। आज के समय में तो मुझे नए गाने बहुत कम पसंद आते हैं। क्या बात है। एक और श्रोता कह रही है कि आजकल किसी छोटे बच्चे को शरारते करते देखती हूँ तो अपने बच्चों का बचपन याद आ जाता है। तब की उनकी शरारतें कभी गुस्सा दिला जाती थी, आज याद कर मन को गुदगुदा जाती हैं। वो वक्त कितना जल्दी गुजर गया जिसे फिर से जीने का मन करता है। काश वो गुजरा हुआ जमाना फिर से आ जाता। बिल्कुल सही बात है, वो पल बीत जाते हैं लेकिन हम उन्हें याद करते रहते हैं। हमारे एक और श्रोता कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, फिर भी हम कहते हैं कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। वाकई एक और श्रोता ने आज की इबारत को पढ़कर सुरीले सफर में गुजरे हुए पलों की बातों से संबंधित गीतों को तवज्जो दिया गया है। ऐसा लिखा है, हर इंसान के जीवन में गुजरे हुए पलों की यादें सुखद और दुखद दोनों हो सकती हैं। सबसे ज्यादा बचपन से जुड़ी हर लम्हा और उनकी यादें बहुत कचोटती हैं। काश कोई खोया हुआ बचपन फिर से लौटा दे, लेकिन ये यथार्थ नहीं है। मनोविज्ञान के अनुसार पुराने सुनहरे पल हमें अपने उससे जोड़ते हैं। पुराने पलों की उन बातें जो अच्छी हैं उनके लिए कृतज्ञता

महसूस करें, लेकिन जो पल बीत गया उसको बदला नहीं जा सकता, उसे स्वीकार करने से शांति मिलती है। और इन्होंने कुछ गानों के नाम भी दिए हैं, चलिए आप जरा देखते हैं कि अगला गाना आपकी लिस्ट से मैच करता है या नहीं। अपनी यादों को हमारे साथ साझा करने के साथ साथ एक बात और, आज विश्व संग्रहालय दिवस है, तो बताइए कि संग्रहालय में ज़्यादातर गुजरे ज़माने की, इतिहास की उन अनमोल यादों को संजोया जाता है जो बहुत खास होती हैं। कभी आपने कोई संग्रहालय देखा है या बचपन में कभी गए हो उसके बारे में भी हमें बता सकते हैं। और अब ये गाना सुनिए और बताइए कि इस फिल्म के प्रमुख कलाकार कौन हैं।

0: सही जवाब के साथ आपके संदेश आ गए। संजीव कुमार और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया ये गाना फिल्म मन मंदिर में। गीत राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। और भाई संदेशों की तो क्या ही कहें। नौजवानी के दिन जब बचपना विदा ले रहा था और जवानी दस्तक दे रही थी, उस समय ट्यूशन में पढ़ने वाली एक सहपाठिनी का मेरी गलतियों पर मुस्कुराना याद है। वो निश्चल हंसी, उफ क्या बात है। तो भाई देखिए ना, किसी की हंसी, किसी की बात या किसी का टोकना भी याद रह जाता है। एक श्रोता कह रहे हैं कि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, जो बीत गया सो रीत गया, जो बच रहा वो यही पल है जिसका इस्तेमाल हम सब VBS के साथ कर रहे हैं। जी हाँ, विविध भारती के साथ आपका ये पल कैसा गुजर रहा है इस बारे में भी आप हमें बता सकते हैं। बहुत सारी श्रोताओं ने जो भेजे हैं हमें गानों के, बताइए कि ये पल, ये जो गाने हैं ये आपके लिस्ट से मैच कर रहे हैं या नहीं। एक श्रोता ने कई बार यूं भी देखा है, गुजरा हुआ जमाना, चुपके चुपके चल रही पुरवैया और जादूगर जैसे बहुत सारे गानों का अपना लिस्ट बना के भेजी है। एक श्रोता ने गुजरा हुआ जमाना वापस तो नहीं आ सकता ये कहते हुए अपना संदेश आगे लिखते हैं कि लेकिन हम कभी एकांत में बैठे पुरानी यादों में खो जाते हैं, तब उन बीते हुए लम्हों में खुद को महसूस करते पहुंच जाते हैं। मसूरी के कैंप्टी फॉल में नहाने, जहां यारों की टीम 44 साल पहले कैमरे लिए तस्वीरें खींच रहे थे। लौटते हरिद्वार में गंगा स्नान का वो दृश्य सामने आ जाता है, जब मना करने पर तेज धार में बहने लगे और दो तीन साथियों ने तत्परता दिखाते हमें गहरे पानी में जाने से बचा लिया। उससे भी 10 साल पहले वाल्मीकि नगर रिजॉर्ट में नेपाल और बिहार की सीमा में अभयारण्य में घूमने गए, जहां धुंधलाती शाम में एक जहरीले सांप से भेंट हुई और सभी साथियों के साथ कैसे बाल बाल बचे। ऐसे तमाम वो पल जो एक एडवेंचर थे भी याद आए। और परिवार के साथ वैष्णो देवी यात्रा, फिर दिल्ली में 2 दिन ऐतिहासिक इमारतों में घूमना, वो लाल किले में लिए गई कई तस्वीरें अच्छे दिनों में पहुंचा देती हैं। बहुत सुंदर यादें हैं आपने सजोई। यादें संजोने के लिए हम कई बार तस्वीरें भी खींचते हैं। आप बताइए कि क्या कभी तस्वीरों का वो एल्बम आप पलटते हैं जो आपने आज से 20-25 साल पहले खींचा था। और हाँ, उस वक्त तो तस्वीरें भी दूसरी तरह से ली जाती थी। अब जो गाना हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसे सुनिए और बताइए कि वो आपकी लिस्ट से मैच हो रहा है या नहीं, और साथ ही बताइए संगीतकार का नाम।
1: ए,
0: अरे
1: चुपके से दिल दे दे,
0: नहीं ते
1: नहीं ते

राजेश खन्ना और माला सिन्हा पर फिल्माया गया मर्यादा फिल्म का ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में आपने सुना। बोल आनंद बख्शी के थे और धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। सही जवाब के लिए बेहद शुक्रिया। हमारे एक श्रोता ने बताया कि मैसूर का किला देखा राजा का पुराना राजमहल है। विश्व संग्रहालय दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए एक श्रोता बता रहे हैं कि 1989 में मुंबई के संग्रहालय पुरानी वस्तुओं यादगार चीजें धरोहर विरासत ये म्यूजियम उन्होंने 2 बार देखा है। म्यूजियम में सबसे ज्यादा कौन सी चीज आकर्षित करती है या जब भी देखा किस चीज को के सामने आप बड़ी किस जो शोकेस में लगी रहती हैं तमाम चीजें उनमें से किस शोकेस के सामने आप काफी देर तक खड़े रहे अगर याद हो तो जरूर बताएं। और हाँ तस्वीरों के एल्बम की बात भी तो रह गई, कौन सा एल्बम आप अभी तक बहुत सहेज कर रखते हैं और जब तक उसे पलट लेते हैं मौका मिलते ही। श्रोताओं के संदेश कह रहे हैं कि मेमोरीज आर लाइक फोटोज, यू कैन लुक बैक बट यू कैन नेवर गो बैक। बहुत सुंदर बात कही आपने, मतलब यादें तस्वीर की तरह होती हैं, आप उसे पलट कर देख सकते हैं लेकिन उसमें वापस नहीं जा सकते। आज के सुरीले सफर की बातें भी कुछ ऐसे बीते हुए लम्हों से जुड़ी लग रही हैं। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, वापस आती हैं तो सिर्फ उससे जुड़ी कुछ खट्टी मीठी यादें और बातें, किसी से कुछ मुलाकातें जिसे याद कर कभी हमारे मन का बावरा पंछी भी बार बार डूलने लगता है। बीते हुए पल की कसक याद करते हुए कभी उदासी भी छा जाती है, इसलिए भूतकाल को याद कर उसमें से कुछ बोध पाठ लेते हुए वर्तमान को जी भर के जी लेना चाहिए, क्योंकि आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें हंसी खुशी जिंदगी बिता दो। वक्त का पहिया न कभी रुकता है न रुकेगा, इसलिए आप भी दोपहर ठीक 1 बजे VBS के सुरीला सफर में जुड़ जाइए। क्या बात है। और आगे लिखते हैं कि आप सभी का जीवन सफर सुरीला और हंसी खुशी से भरा रहे, यही कामना करते हुए स्वागत है। बहुत बहुत सुंदर बात कही आपने, वाकई वर्तमान में जीना ही समझदारी है और वर्तमान में जीते हुए ये गीत आपको किन की याद दिला रहा है हमें जल्दी से बताइए। और हाँ संग्रहालय की बात और अपने एल्बम की बात भी जरूर बताइएगा।

इस गीत का जवाब हम जरूर बताएंगे, लेकिन एक सवाल पहले पूछ लेते हैं। क्या कभी वो छूटा हुआ प्यार भी याद आता है आपको? उसके बारे में अगर बताइए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये जो सवाल था हमारा कि इस गाने को सुनकर आपको किन की याद आती है, तो हमारे साथियों ने बताया सरस्वती चंद्र नूतन, फिल्म का नाम और अभिनेत्री का नाम इन्होंने बताया है। किसी किसी श्रोता ने मोहनीश जी का नाम भी, यानी मोहनीश बहल शायद इनका मतलब है, उनका नाम लिखा है। एक श्रोता लिखती हैं कि मेरा जिला अहमदनगर स्थित कैवलरी टैंक संग्रहालय एशिया में अपनी तरह का एकमात्र और सबसे बड़ा सैन्य संग्रहालय है। फरवरी 1994 में स्थापित इस संग्रहालय में लगभग 50 दुर्लभ और ऐतिहासिक टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और तोपों का अद्भुत संग्रह है, जो भारतीय बख्तरबंद कोर के गौरवशाली इतिहास को दर्शाते हैं। बहुत सुंदर जानकारी साझा की आपने। तस्वीरों के बारे में हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जितने भी पुराने फोटो हैं सभी को सहेज कर रखती हूँ। अपने भाई बहनों के साथ वाले फोटो और अपने बच्चों का बचपन का फोटो, परिवार का फोटो, सभी जब भी फुर्सत में रहती हूँ जरूर पलट कर देखती हूँ और कुछ उसमें से फोटो निकाल कर उनसे संबंधित लोगों को शेयर भी करती हूँ। वाह, ये तो पुरानी यादें ताजा करने का बड़ा ही सुंदर तरीका है। एक और श्रोता बता रहे हैं कि तस्वीरें खींचने और खिंचवाने का जबरदस्त शौक है और उनका संग्रह करना भी, न सिर्फ एल्बम में बल्कि मोबाइल, लैपटॉप, सबके मेमोरी में भी संभाल कर रखती हूं और गाहे बगाहे उन्हें पलट कर देखने का भी शौक है। परिवार में सबके शादी ब्याह की तस्वीरें अपने पास रखना अच्छा लगता है वाकई, और जब देखते हैं ना वो तस्वीरें तो फिर याद आ जाती हैं वो सभी बातें और वो अच्छा हल्का फुल्का वक्त जो गुजरा था उस वक्त। एक और श्रोता कह रहे हैं कि मेरे ताऊजी की लड़की जो मेरी बहन थी, सन 1971 में उसकी शादी में हमारे सारे परिवार का एक साथ खींचा गया ब्लैक एंड व्हाइट बड़ा फोटो आज भी मेरे पास सुरक्षित है। उस समय मेरी उम्र 1 साल की थी और मैं अपने पापा की गोद में नजर आ रहा हूँ। उस फोटो की हमने तस्वीर में बनाकर रखा है, मतलब शायद फ्रेम करा कर रखा है आपने। वाकई ये तस्वीरें तो अनमोल होती हैं। एक और श्रोता ने

साझा की है एक तस्वीर की बात। मेरी बेटी की तस्वीर जिसका एल्बम बार बार देखता हूँ, कितनी मासूम मुस्कुराती, आज वो 36 साल की हो गई मगर मुझे बच्ची ही लगती है। सच, वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है। संदेशों की बात करें तो हमारे श्रोता बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ साझा करते हैं। एक साथी लिखते हैं कि आज की भारत यादों की एक ऐसे जादुई आईने जैसी है जिसमें हमारा बीता हुआ कल आज भी खुलकर सांस लेता हुआ महसूस होता है। सचमुच इंसान का मन भी एक अजीब मुसाफिर है जो वर्तमान की सड़क पर चलते हुए भी अक्सर अतीत की पगडंडियों पर मुड़ जाता है। कहाँ क्या छूटा और क्या मिला, इसी उलझन में भटकता रहता है। यादों के समंदर में डूबना तो आसान है पर जिंदगी किनारे पर ही जी जाती है। गुजरे वक्त की जंजीरें कितनी भी रेशमी क्यों ना हो, उन्हें तोड़कर आज के वर्तमान पल का हाथ थामना ही असल मायने में जीना है, क्योंकि जो ठहर गया वो कल था, आज तो चलते रहने का नाम है। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि आज इंसान के बीते समय वक्त पे चर्चा होने की संभावना है। कहावत है, गुजरा वक्त वापस नहीं आता, जिसका वर्तमान सही है भविष्य भी सही होगा, वक्त को पहचानो। अहमदाबाद की घटना ने बहुत कुछ सिखा दिया, पता नहीं पल में क्या हो जाए। वाकई बहुत छोटी सी जिंदगी है और इस जिंदगी को हंसी खुशी से ही बिताना चाहिए, सबसे मिलजुल कर रहते हुए। अब इस गाने को सुनिए और फिल्म का नाम बताइए।

अमरदीप फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल और सी रामचंद्र का संगीत याद किया है हमारे कुछ श्रोताओं ने। छोड़ दे सारी दुनिया सरस्वती चंद्र फिल्म के गाने की बात की है। नूतन और मनीष अभिनीत फिल्म सरस्वती चंद्र के इस गीत का फिल्मांकन जूनागढ़ गुजरात के गिरनार पर्वत की सीढ़ियों पर हुआ था। उन दिनों मैं और मेरा मित्र जो जूनागढ़ के नजदीक रहता था उसके साथ शूटिंग देखने वहां गया था, लेकिन हमारे वहां पहुंचने से पहले फिल्म यूनिट वहां से विदा हो गया था। हमारी बात रह गई हमारे मन में, कुछ कह ना सके उलझन में। क्या बात है। लेकिन कई बार ये प्रयास ही बहुत अपने आप में ऊर्जा भर देता है, उत्साह भर देता है। हमारे एक श्रोता ने ओडिशा कटक नगर के नंदन कानन प्राणी संग्रहालय के बारे में बताया है और कोणार्क सूर्य मंदिर के पास एक संग्रहालय बनाया गया है साइंस, जो सभी ग्रह और सूर्य के ऊपर बहुत सारे तथ्य दिखाता है। प्लैनेटोरियम की बात कर रहे हैं आप। और एक श्रोता कह रहे हैं कि इस उम्र के इस मोड़ पर पहले प्यार को सार्वजनिक करना जोखिम भरा काम है, क्योंकि मेरी पत्नी सुरीला सफर में भी साथ साथ सुनती है। क्या बात है। वाकई कई बार ऐसे जोखिम से तो बचना ही चाहिए। और बात हो रही है पुराने इश्क की, तो बड़ी सुंदर सी कविता साझा की है हमारे एक साथी ने। उन्होंने लिखी है, कभी कभी पुराना इश्क बरसों बाद भी दिल के किसी कोने में धीमी आंच सा जलता रहता है। ना वो आवाज देता है, ना कोई शिकायत करता है, बस अचानक किसी बारिश, किसी गीत या किसी खामोश शाम में याद बनकर उतर आता है। बहुत धीरे धीरे पढ़ने वाली कविता है, लेकिन समय की कमी के चलते मैं जल्दी पढ़ रही हूँ। बड़ा ही सुंदर शब्द है। वो इश्क भी अजीब था, न पूरा मिला न कभी पूरा तरह बिछड़ा, बस जिंदगी की किताब में एक मुड़ा हुआ पन्ना बनकर रह गया। आज भी जब तन्हाई में धीरे से दरवाजा खटखटाती है, उसकी हंसी, उसकी बातें मन में चुपके से चली आती हैं। मगर अब ना कोई गिला है, ना किसी के लौट आने की आस, क्योंकि कुछ मोहब्बतें मुकम्मल होकर नहीं, याद बनकर ही खूबसूरत लगती हैं। बड़ी सुंदर बात कही आपने। और ऐसी यादों की बात करते हुए अब इस गीत की तरफ बढ़ रहे हैं। सुनिए और बताइए फिल्म का नाम और संगीतकार का नाम।

बिल्कुल सही जवाब भेजा हमारे साथियों ने। हवस फिल्म का ये गाना संगीत उषा खन्ना का। और एक श्रोता ने बताया है कि बैंगलोर में संगीत म्यूजियम देखा है, बेहतरीन है, रिकॉर्ड रूम भी था, वहां गाना रिकॉर्ड किया था। क्या बात है, आपने तो बड़ी ही सुंदर स्मृति संजोली। एक और श्रोता कह रहे हैं कि आप कई बार ऐसे सवाल पूछ लेती हैं जिसका जवाब देना चाहकर भी जवाब नहीं दे सकते, जो जवाब देना खतरनाक हो जाता है। ओहो, ठीक है, चलिए, आपने छुपते छुपाते बात कही दी। संदेश भेजा है हमारे एक श्रोता ने, कह रहे हैं कि वक्त एक ऐसे परिंदे की तरह है जो कभी एक शाख पर दोबारा नहीं बैठता, जो लम्हा गुजर गया वो इतिहास बन जाता है। वक्त की उड़ान वाकई एक ऐसी हकीकत है जिसे ना तो रोका जा सकता है और ना ही बांधा जा सकता है। ये एक ऐसी खामोश रफ्तार है जो बिना किसी शोर के सब कुछ बदल देती है, बचपन की मासूमियत से जवानी के जोश और फिर बुढ़ापे के तजुर्बे तक, ये सफर इसी उड़ान की बदौलत तय होता है। इन्होंने एक शेर मुनीर साहब का साझा किया है हमारे साथ। वक्त की धूप हो या तेज हवाएं कौन वक्त की धूप हो या तेज हवाएं मुनीर, कौन रुका है यहाँ, किसकी उड़ान बाकी है। एक श्रोता ने बताया कि पल एक ऐसी चैतन्य की अद्भुत व्यवस्था है जो ज्यादा देर किसी से नहीं जुड़ी रहती है। सुख आनंद गानों के साथ जुड़ता जरूर है, लेकिन गानों से अलग भिन्न रहता है, इसलिए चैतन्य को हर गाने में आनंद मिलता है। पल पल हर पल विविध भारती के कार्यक्रम से सुखी रहता है और फिर सुख मरता नहीं है। क्या बात कही है, सुखी आनंद चैतन्य का स्वभाव है, इसलिए 24/7 पल हर पल व्यक्त रहती है, परंतु हम मानव को संसार की वस्तुओं में खुशी सुख है ऐसा अभिप्राय मान्यता मात्र है। बड़ी गहरी बात कही आपने। अब जरा इस गाने को सुनिए और बताइए कि ये गाना किस जगह पर फिल्माया गया है।

वाकई दुनिया फानी है और कुछ ही पलों का साथ रहता है सबका। हमारा आपका साथ भी अब शायद कुछ ही पलों का है और अगले गीत का शायद हम आपको थोड़ा सा हिस्सा ही सुनवा सके। जवाब बिल्कुल सही भेजा, बहुत बहुत शुक्रिया। द बर्निंग ट्रेन फिल्म में गाना ट्रेन में फिल्माया गया जितेंद्र नीतू सिंह आशा सचदेव पर, बिल्कुल सही जवाब। और एक याद ताज़ा की है प्रेम की। 8वीं कक्षा में पढ़ते अधकचरे प्रेम की याद बहुत बात समझ पाए। मैं कक्षा में आगे बैठता तो एक 14 साल की लड़की बार बार हमसे मदद मांगती, ये सवाल बताओ, ये ट्रांसलेशन बताओ। मेरी आधी कुर्सी पर बैठ जाती, मैं उसकी कॉपी पर जवाब लिखकर डांट देता था। बाद में एक एक्सीडेंट में घायल वो बहुत दिनों की पीड़ा के बाद गुजर गई। उसकी सहेली ने बताया था वो तुमसे प्यार करने लगी थी। उफ उफ उफ, ये जो जानकारी बाद में होती है ये सच में दिल तोड़ देती है। एक और श्रोता ने अपनी 1990 में हुई शादी की जो पोस्टकार्ड साइज के 100 फोटो याद के लिए अभी भी सुरक्षित रखे हैं। क्या बात है, ऐसी यादें तो बड़ी ही खूबसूरत होती हैं और बड़े दिनों तक गुदगुदाती रहती हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि वर्तमान के महत्व के सुंदर भावों में व्यक्त करती है आज की इबारत। स्मृति कभी खुशियां देती है तो कभी बिछड़ने और टूटने का दर्द याद दिलाती है। मन अक्सर यादों की गलियों में भटक जाता है, लेकिन जीवन हमें यह संदेश देता है कि बीते कल में खोने के बजाय आज को संभालना जरूरी है। समय की कभी रुकता नहीं, इसलिए वर्तमान का हाथ थाम कर जीवन को जीना ही आज का सबसे बड़ा सच है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि समय और समझ दोनों एक साथ किस्मत वालों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब तक समझ आती है तो समय निकल जाता है। वैसे समय में कल आज और आज कल में बदल जाएगा और जल्द ही एक समय ऐसा आएगा।

जो समय तेरा था वो तेरा होके तेरा ना रह जाएगा। बहुत गहरी बात कही आपने। इसी बात पर ये गीत सुनिए और बताइए कि आवाजें किन की हैं। साथ ही चलते चलते फिल्म का नाम भी बता दीजिए।

और हम पुकार ही रहे थे कि जवाब आ गया। फिल्म परिणय का गाना है ये, आवाजें मन्ना डे और वाणी जयराम की हैं। बिल्कुल सही जवाब, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अब इस कार्यक्रम का समय हो रहा है खत्म। तो सुरीला सफर के इस सफर में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन, विविध भारती।

श्रोताओ नमस्कार। आज त्रिवेणी में बातें होंगी परिवार पर। परिवार मानव जीवन की पहली पाठशाला होती है। परिवार केवल रिश्तों का समूह नहीं बल्कि प्रेम, संस्कार, सुरक्षा और अपनापन का सुंदर संगम होता है। हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में परिवार की बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिवार हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। माता पिता से हमें अनुशासन, त्याग और मेहनत का पाठ मिलता है, तो वहीं दादा दादी, नाना नानी हमें अपने अनुभवों से सही मार्ग दिखाते हैं। परिवार के बीच रहकर व्यक्ति सहयोग, सहनशीलता, सम्मान और जिम्मेदारी जैसे गुण सीखते हैं। हर परिवार में कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो माला के धागे की तरह पूरे परिवार को जोड़कर रखता है। फिर वो बड़ा भाई हो, बड़ी बहन, दादा दादी या माता पिता होते हैं। उस धागे की मजबूती पर पूरे परिवार की एकता टिकी होती है, जिनके बदौलत पूरा परिवार एकजुट, एक साथ होता है।

आज के आधुनिक युग में भले ही लोग भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे दौड़ रहे हों, लेकिन मानसिक शांति और सच्चा सुख केवल परिवार से ही मिलता है। जब हम किसी मुश्किल में होते हैं, उस वक्त हमारा परिवार एकजुट होकर हमारा सहारा बन जाता है। बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें परिवार का साथ मिलता है। एक अच्छा परिवार समाज की नींव होता है। यदि परिवार में एकता होगी तो ये परिवार समाज में अच्छा उदाहरण बन जाता है। परिवार की वजह से बच्चों को नैतिक शिक्षा मिलती है, जो उन्हें एक अच्छा नागरिक बनने की प्रेरणा देता है। कुछ खास अवसर पर जब पूरा परिवार इकट्ठा होता है, गीत संगीत की महफिल जमती है, तब वहाँ का माहौल इतना खूबसूरत हो जाता है जिसका हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते।

संजू, ए बिट्टू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ऐसे नहीं, बोलो मैं गाओ।

वो अनमोल खजाना है जिसकी कीमत धन दौलत से नहीं आकी जा सकती।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। इस दौरे में भारत और नॉर्वे के बीच द्विपक्षीय वार्ता और तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन शामिल है। ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा। पेश है एक रिपोर्ट।
1: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य 19 अरब डॉलर है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। श्री शाह आज जगदलपुर पहुंचकर अमर वाटिका में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वे जगदलपुर स्थित बादल अकादमी में शहीदों के परिजनों, सुरक्षा बलों के जवानों, नक्सल हिंसा से प्रभावित लोगों और विभिन्न स्थानीय समाज के प्रतिनिधियों से भी संवाद करेंगे। शाम को वे बस्तर के संघ लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। श्री अमरनाथ यात्रा 2026 से

0: पहले जम्मू कश्मीर में सेना ने रामबन जिले में ग्राम रक्षा समूहों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इसका उद्देश्य स्थानीय सुरक्षा बढ़ाना, तैयारियों में सुधार करना और तीर्थ यात्रा मार्ग पर रहने वाले निवासियों के साथ समन्वय स्थापित करना था। प्रदेश में भीषण गर्मी का असर लगातार बना हुआ है। प्रदेश के कई जिलों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है। झाबुआ जिले में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने अगले चार दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक और बढ़ोतरी की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, सागर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन और इंदौर संभाग के कई जिलों में लू चलने का अलर्ट जारी किया है। विभाग ने लोगों से धूप में निकलते समय सावधानी बरतने और पर्याप्त पानी पीने की भी अपील की है। प्रदेश में पेपरलेस कार्य संस्कृति को निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है। नागरिकों को एमपीई सेवा पोर्टल और मोबाइल ऐप पर सरकार के 56 विभागों की 1700 सेवाएं एक ही पोर्टल पर उपलब्ध हैं। राज्य में साइबर तहसीलों की स्थापना हो चुकी है। इस नवाचार को प्रधानमंत्री पुरस्कार भी मिल चुका है। भोपाल में देश के पहले साइबर पंजीयन कार्यालय की शुरूआत की गई है। प्रदेश में E0 FIR का भी शुभारंभ किया गया है। मंत्रिपरिषद की कार्यवाही पूर्णतः पेपरलेस हो चुकी है, जिससे न केवल समय की बचत हुई है बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता भी बढ़ी है। प्रदेश में सुशासन के साथ ग्रीन गवर्नेंस को भी बढ़ावा मिल रहा है। मध्य प्रदेश लीग 2026 का आयोजन 3 जून से इंदौर में शुरू होगा। इस टूर्नामेंट में पुरुष वर्ग की 10 और महिला वर्ग की 5 टीमें हिस्सा लेंगी। पुरुष वर्ग के टूर्नामेंट का उद्घाटन मुकाबला 3 जून को होलकर स्टेडियम में शाम 7:30 बजे ग्वालियर चीताज और उज्जैन फॉल्कल्स के बीच खेला जाएगा। महिला वर्ग की प्रतियोगिता 4 जून से शुरू होगी, जहां पहले मुकाबले में चंबल घड़ियाल्स का सामना ग्वालियर शेरनी से होगा। एमपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला 26 जून को शाम 7:30 बजे इंदौर के होलकर स्टेडियम में आयोजित होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पर्यावरणविद, प्रखर चिंतक, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनिल माधव दवे जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। शिवपुरी में विद्युत समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विशेष जनसंपर्क अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। नर्मदापुरम जिले के विकासखंड केसला में ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। जबलपुर जिले में कुंडम विकासखंड जनगणना 2027 के प्रथम चरण का कार्य पूरा करने वाला पहला जनगणना विकासखंड बन गया है। आगर मालवा में किसानों को ई टोकन प्रणाली के माध्यम से सरल, सुगम, पारदर्शी तरीके से उर्वरक उपलब्ध कराया जा रहा है। सतना जिले में पुरुषोत्तम मास के पहले सोमवार पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिव मंदिरों में जलाभिषेक किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से आपसी संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ओस्लो में पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। श्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
2: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जन

0: संपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये यात्रा महत्वपूर्ण रही। संयुक्त नवाचार साझेदारी के दूसरे चरण और भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी तथा AI गलियारे की शुरूआत से लेकर अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने तक ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रहीं। उन्होंने स्वीडन की जनता, सरकार और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन का उनके स्नेह और मित्रता के लिए आभार व्यक्त किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाने का ये कदम भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना द्वारा निर्देशित है।
2: इस यात्रा के दौरान 6 प्रमुख उपलब्धियां सामने आईं। पहली उपलब्धि रही भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना 2026-2030 को अपनाना, जो व्यापार, नवाचार, जलवायु कार्रवाई, रक्षा और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सहयोग के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत करती है। दूसरी बड़ी उपलब्धि रही तकनीकी सहयोग को नई ऊंचाई तक पहुंचाना। इसके तहत ज्वाइंट इनोवेशन पार्टनरशिप 2.0 की शुरुआत की गई और स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी AI कॉरिडोर यानी CTAC का विस्तार किया गया। तीसरी उपलब्धि रही एक वर्चुअल भारत स्वीडन संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने पर सहमति। ये केंद्र AI, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग और जीवन विज्ञान जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों पर कार्य करेगा। चौथी बड़ी उपलब्धि अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय करना रही। पांचवी उपलब्धि रही भारत स्वीडन SME और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का विकास। छठी महत्वपूर्ण उपलब्धि साझा सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को नई पहचान देना रही। इसके तहत टैगोर स्वीडन लेक्चर सीरीज की शुरुआत की गई, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वर्ष 1926 की ऐतिहासिक स्वीडन यात्रा की शताब्दी को समर्पित है। इन पहलों के अलावा दोनों देशों ने लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिट यानी LEADIT के तीसरे चरण की घोषणा करी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्ष से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
3: ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തതയും
1: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने UDF सरकार के 20 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई कैबिनेट में शामिल 16 सदस्य पहली बार मंत्री बन रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी के 11 प्रतिनिधि हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 मंत्री हैं। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता PK कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज नई बनी सरकार ने अपनी पहली आधिकारिक कैबिनेट बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने VD सतीशन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में केरलम की नई सरकार को हर संभव सहयोग का आश्वासन देती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार, विभिन्न सरकारी बोर्ड, निगमों और अन्य राज्य सहायता प्राप्त निकायों तथा स्कूलों के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमंडल ने आज राज्य सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग तथा अल्पसंख्यक और मदरसा विभाग के तहत 1 जून से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को रोकने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी। इन विभागों के तहत छात्रवृत्ति योजनाएं जारी रहेंगी। राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए

0: छोटी और लंबी दूरी की मुफ्त परिवहन सुविधा को भी स्वीकृत किया है। राज्य की महिलाओं के लिए पहली जून से अन्नपूर्णा योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 3,000 रुपये हस्तांतरित किए जाएंगे। एक ऐतिहासिक फैसले में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है। ग्रुप ए पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 41 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। ग्रुप बी पदों के लिए यह सीमा बढ़ाकर 44 वर्ष कर दी गई है। ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 45 वर्ष है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने दो प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है, जिसमें आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के अंतर्गत स्टेशन निर्माण और एलिवेटेड सेक्शन के लिए आवश्यक भूमि का हस्तांतरण शामिल है। केंद्र, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम के बीच चारबाग से वसंत कुंज तक के पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर के लिए लगभग 5,801 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए श्री गोयल ने कहा कि आगे बढ़ने का उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदाय और लोगों में हौसला इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती।
1: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है, पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत व्यापार महोत्सव का उद्देश्य स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि भारतीय सामान और सेवाएं पूरे देश और दुनिया भर में और भी तेजी से फैलें। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को एक उज्ज्वल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सार्वजनिक परिवहन और ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज मेरा भारत मेरा योगदान में मेट्रो मंडे अभियान के तहत मेट्रो से यात्रा की। उन्होंने सभी दिल्लीवासियों से सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की।
2: हम सरकार की ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए और हर व्यक्ति जब थोड़ा थोड़ा भी सहयोग इसमें करेगा तो दिल्ली शहर के लिए ये बेहतरीन होगा। हमारे शहर में पॉल्यूशन से लेकर के हर समस्या का इसका समाधान मिलेगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले ये सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। 400 नए अत्याधुनिक आपातकालीन वाहन, 33 विशेष निगरानी वाहन तथा 60 नए राजमार्ग गश्ती वाहन प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किए गए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।
3: आपातकालीन सेवा डायल 112 अभी तक छत्तीसगढ़ के सिर्फ 16 जिलों में उपलब्ध थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस सेवा का विस्तार सभी 33 जिलों में कर दिया है। सुरक्षा मानकों और सहायता क्षमता को और मजबूत करने के लिए डायल 112 सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्थान पहचान तकनीक को जोड़ा गया है, जिससे संकट में फंसे व्यक्ति की

0: वास्तविक भौगोलिक स्थिति का सटीक पता लगाया जा सके। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस व्यवस्था में पैनिक बटन और विशेष निगरानी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले एजेंसी ने इस मामले में आज सुबह दीपक सिंगला के दिल्ली और गोवा में छापेमारी की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर से हुए सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। यह हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सड़क दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि इस सप्ताह उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शनिवार तक उत्तर प्रदेश में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आपने ट्यून किया है देश का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति ये मीठा सा गीत हलाकू फिल्म से लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों में सुनवा रहे हैं। शैलेंद्र के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन ने।

नजरों का दामन बिछाती ये प्यार की पुकार भला कौन अनसुना करेगा। सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। तो आइए अब सुनते हैं मन की दहलीज से गुजरकर दिल के आंगन तक पहुंचता ये गीत क्या कह रहा है। तीन बहुरानिया फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों में सुनवा रहे हैं। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से सवारा है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब जो गाना सुनवाने जा रहे हैं वो वचन फिल्म से है। मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने गाया है, प्रेम धवन ने लिखा है और रविशंकर ने इसे संगीत से सजाया है। तो चलिए हाथों में हाथ लेकर और दिल को साथ लेकर सुनते हैं ये मीठा सा नगमा।

मोहब्बत की ये खूबसूरत सी इल्तिजा उड़न खटोला फिल्म से आपने सुनी लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत लिखा था शकील बदायूनी ने और धुन बनाई थी नौशाद ने। और अब सुनवा रहे हैं तुमसा नहीं देखा फिल्म का गाना मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। ओपी नैयर का संगीत है, मजरूह सुल्तानपुरी का गीत है।

रूठ के हमसे हाँ, देखो कसम से कहते तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ

सह न सकोगे, रह न सकोगे, कहते हैं तुमसे हाँ। तुम भी जलोगे, हाथ मलोगे, रूठ के हमसे हाँ। देखो कसम से, कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ। तुम भी जलोगे, हाथ मलोगे, रूठ के हमसे।

ईश्वर की वीणा पर बसता रहे यूं ही मीठा मीठा प्राणों का राग और जीवन में छाई रहे बहार। इसी संदेश के साथ अब आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करते हैं।

0: सखी सहेली में सभी सुनने वालों को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। और हमारे साथ हैं
1: मंजरी वर्मा। पर आपकी इस स्टाइल ने मुझे एकदम चौंका दिया कि अब क्या बोलने वाली है।
0: यही तो, इसीलिए तुम देख रहे थे ना मंजरी, लेकिन बिल्कुल सजग सतर्क बैठी थी।
1: बिल्कुल।
0: नमस्कार मंजरी का भी।
1: हाँ, आपको भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और साथ में हमारी जो सखिया में सखा भाई सुन रहे हैं, उन सभी को भी मेरा प्यार भरा, हम दोनों की तरफ से प्यार भरा नमस्कार कह देते हैं। और आज आपके साथ काफी अरसा हो गया, जिसे कहते हैं सखी सहेली में हम लोग,
0: मुद्दत हो गई
1: जमाने आपसे मिलना हो ही नहीं पा रहा था। और मुझे याद ही नहीं आ पा रहा था कि कब मैंने आपके साथ ड्यूटी करी थी। तो आज आपको देखकर इस मंच पर बड़ा अच्छा लगा कि फिर से हमारा आपका साथ होगा और फिर से बहुत सारी बातें होंगी।
0: तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये तो बताओ ना कि ये जो मुलाकात है ये खास बनने वाली है, तो इस खास बात में क्या क्या खास बातें हैं?
1: भाई खास बात है कि उत्तर प्रदेश के व्यंजन हम लेकर के आए हैं।
0: क्या बात है?
1: जिसमें बनारस की टमाटरी चाट और छेना दही बड़ा।
0: बस बस बस, मतलब मुंह में पानी भरने का इंतजाम तुमने पहले ही कर दिया।
1: पहले ही कर दिया। और मुझे याद है कि एक मेरी चीज पेंडिंग हो गई, आपको पिलानी थी लस्सी आपने बोला था। मुझे याद है, तो मैं वही सोच रही थी जब व्यंजन लेके आ रही थी, मैं सोच रही थी कि आज फिर राजुल जी कोई चीज मुझे एक दे देंगी तो मेरे पास दो चीजें पेंडिंग हो जाएंगी पिलाने खिलाने की। तो चलिए, ये तो हो गई बातें हमारे व्यंजन की। इसके बाद एक विषय हमने लिया है, मोबाइल के कारण जीवन साथी से तनाव। तो ये बड़ा अच्छा सा विषय, प्यारा सा विषय है।
0: ये तो बहुत ज्वलंत समस्या है क्योंकि ये तनाव तो घर घर गूंजने लगा है। कई बार सुनते हैं कि भाई हाँ मोबाइल में ही सब लगे हुए हैं। हाँ
1: जी।
0: और तो, आज एक खास दिन भी है
1: जी।
0: खास एक क्यों, दो खास दिन है। हाँ, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस है और
1: अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और कथा सुधा लेकर हम आए हैं, तो कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो, इसका भाग दो, यानी अंतिम भाग हम आज सुनेंगे।
0: बड़ी मजेदार कहानी है।
1: पिछली बार भी हमने सुनी थी और आज भी हम सुनेंगे। हाँ। तो बड़ा अच्छा लगेगा सुन करके। लेकिन उससे पहले राजुल जी, क्यों ना एक गीत सुन लिया जाए।
0: हाँ बिल्कुल, सुनने सुनाने की इतनी बातें हो रही तो बिल्कुल गाना तो बनता है।

0: तो मंजरी कितना प्यारा सा नीरज का लिखा हुआ ये गीत सुना हमने, सचिन देव बर्मन का संगीत, तेरे मेरे सपने फिल्म का, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें। और भाई तुमने शुरुआत में ही आपने कसम ले ली और कसम दे दी।
1: लेकिन वो किस चीज की थी?
0: साथ रहने की, जुदा ना होने की, और कथा सुधा में भी बराबर अपनी भागीदारी जताने की।
1: बिल्कुल। तो कथा सुधा जो हम आज सुनवाएंगे तो उसके लिए एक संदेश आया है। ये लिखते हैं कि कोई दुख ना हो तो बकरी पाल लो। प्रेमचंद ने इस कहानी में मध्यम वर्गीय व्यक्ति की विवशता, उसकी कुंठा और पारिवारिक कलह को हास्य के माध्यम से बहुत खूबसूरती से प्रस्तुत किया है। नौकर और बीबी के सामने मालिक की बेबसी पाठकों को गुदगुदाती भी है और सोचने पर भी मजबूर करती है। तो भाई इतनी अच्छी सी कहानी के लिए इन्होंने लिखा है, तो क्यों ना हम लोग कथा सुधा पहले सुना देते हैं।
0: चलो सुनते हैं पहले। कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
2: कथा सुधा में आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी, कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो। पिछले भाग में आपने सुना,
3: उन दिनों दूध की तकलीफ थी। आखिर एक दिन एक दोस्त से मैंने कहा, भाई आओ साझे में एक गाय ले ले, तुम्हें भी दूध का आराम होगा, मुझे भी दूध आने लगा, रोज रोज के झंझट से मुक्ति मिली। तीसरे महीने चड्ढा का तबादला हो गया। मैं अकेले गाय न रख सकता था, गाय आधे दामों बेच दी गई। आखिर यह सलाह हुई कि एक बकरी रख ली जाए, लेकिन एक ही हफ्ते में दूध की मात्रा कम होने लगी। पंडित जी से हाल कहा तो उन्होंने कहा,
4: देहात की बकरी है, यहां बंधे बंधे दूध कम हो जाए तो ताज्जुब नहीं, इसे जरा टहला दिया कीजिए।
3: लेकिन शहर में बकरी को टहलाए कौन और कहां, इसलिए ये तय हुआ कि बाहर कहीं मकान लिया जाए। झटपट मकान बदला, एक काछी से तय कर लिया कि रोजाना बकरी के लिए कुछ हरियाली जाया करे। मगर इतनी कोशिश करने पर भी दूध की मात्रा में कुछ खास बढ़त नहीं हुई। मेरे खिदमतगार को बकरी लेकर बाग में जाना बुरा मालूम होता था। दूसरे दिन मैं दफ्तर से जरा जल्द चला आया और चटपट बकरी को लेकर बाग में जा पहुंचा। ये ख्याल आया, अगर सूखी पत्तियां खाने से दूध की मात्रा बढ़ गई तो यकीनन हरी पत्तियां खिलाई जाएं तो इससे कहीं बेहतर।

0: नतीजा निकले और शाम को बकरी को साथ लेकर पत्तियां तोड़ने लगा। अचानक काछी एक तरफ से आ निकला।
1: आपके हाथ में ये लग्गा अच्छा नहीं लगता, लाइए मैं काट देता हूं।
0: और देखते देखते हरी पत्तियों का ढेर लगा दिया। उसने थोड़ी सी पत्तियां बगल में उठा ली और बोला,
1: चलिए मैं रख देता हूं।
0: मैंने बरामदे में पत्तियां रखवा ली। उसी पेड़ के नीचे उसकी चौगुनी पत्तियां पड़ी हुई थी। काछी ने उनका एक गट्ठा बनाया और सर पर लाद कर चला गया।
2: आइए सुनते हैं इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग।
0: दूसरे दिन बकरी को बाग में ले जाना मेरे लिए कठिन हो गया। काछी फिर देखेगा और न जाने क्या क्या फिक्रे चुस्त करेगा। उसकी नजरों में गिर जाना मुंह से कालिख लगाने से कम शर्मनाक न था। हमारे सम्मान और प्रतिष्ठा की जो कसौटी लोगों ने बना रखी है, हमको उसका आदर करना पड़ेगा। नक्कू बनकर रहे तो क्या रहे, लेकिन बकरी इतनी आसानी से अपनी निर्द्वंद्व आजाद चहलकदमी से हाथ न खींचना चाहती थी, जिसे उसने अपनी साधारण दिनचर्या समझना शुरू कर दिया था। शाम होते ही उसने जोर शोर से प्रतिवाद का स्वर उठाया कि घर में बैठना मुश्किल हो गया। गिटकिरीदार मेमे का निरंतर स्वर आ आकर कान के पर्दे को क्षत विक्षत करने लगा। कहां भाग जाऊं, बीवी ने उसे गालियां देना शुरू कर दिया। मैंने गुस्से में आकर कई डंडे रसीद किए, मगर उसे सत्याग्रह स्थगित न करना था न किया। बड़े संकट में जान थी, आखिर मजबूर हो गया। अपने किए का क्या इलाज। 8 बजे रात, जाड़ों के दिन, घर से बाहर मुंह निकालना मुश्किल, और मैं बकरी को बाग में टहला रहा था और अपनी किस्मत को कोस रहा था। अंधेरे में पांव रखते मेरी रूह कांपती है। एक बार मेरे सामने से एक सांप निकल गया था, अगर उसके ऊपर पैर पड़ जाता तो जरूर काट लेता। तब से मैं अंधेरे में कभी ना निकलता था, मगर आज इस बकरी के कारण मुझे इस खतरे का भी सामना करना पड़ा। जरा भी हवा चलती और पत्ते खड़कते तो मेरी आंखें ठिठुर जाती और पिंडलियां कांपने लगती। शायद उस जन्म में मैं बकरी रहा होऊंगा और ये बकरी मेरी मालकिन रही होगी, उसी का प्रायश्चित इस जिंदगी में भोग रहा था। बुरा हो उस पंडित का जिसने ये बला मेरे सिर मढ़ी। गृहस्थी भी जंजाल है, बच्चा ना होता तो क्यों इस मूजी जानवर की इतनी खुशामत करनी पड़ती। और ये बच्चा बड़ा हो जाएगा तो बात न सुनेगा, कहेगा आपने मेरे लिए क्या किया है, कौन सी जायदाद छोड़ी है। ये सजा भुगत कर 9 बजे रात को लौटा। अगर रात को बकरी मर जाती तो मुझे जरा भी दुख ना होता। दूसरे दिन सुबह से ही मुझे ये फिक्र सवार हुई कि किसी तरह रात की बेगार से छुट्टी मिले। आज दफ्तर में छुट्टी थी। मैंने एक लंबी रस्सी मंगवाई और शाम को बकरी के गले में रस्सी डाल एक पेड़ की जड़ से बांध कर सो गया। अब चरे जितना चाहे, अब चिराग जलते जलते खोल लाऊंगा। छुट्टी थी ही, शाम को सिनेमा देखने की ठहरी। एक अच्छा सा खेल आया हुआ था, नौकर को भी साथ लिया, वरना बच्चे को कौन संभालता। जब 9 बजे रात को घर लौटे और मैं लालटेन लेकर बकरी लेने गया तो क्या देखता हूं कि उसने रस्सी को 2-3 पेड़ों से लपेट कर ऐसा उलझा डाला है कि सुलझाना मुश्किल है। इतनी रस्सी भी न बची थी कि वो एक कदम भी चल सकती। लाहौल विला कुवत, जी में आया कि कमबख्त को यही छोड़ दूं, मरती है तो मर जाए। अब इतनी रात को लालटेन की रोशनी में रस्सी सुलझाने बैठे, लेकिन दिल ना माना। पहले

उसकी गर्दन से रस्सी खोली, फिर उसकी पेंच दर पेंच ऐठन उसे छुड़ाया। एक घंटा लग गया। मारे सर्दी के हाथ ठिठुर जाते थे और जी जल रहा था वो अलग, ये तरकीब और भी तकलीफ देह साबित हुई। अब क्या करूं, अकल काम ना करती थी। दूध का ख्याल ना होता तो किसी को मुफ्त में दे देता। शाम होते ही चुड़ैल अपनी चीख पुकार शुरू कर देगी और घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। और आवाज भी कितनी कर्कश और मनहूस होती है। शास्त्रों में लिखा भी है, जितनी दूर उसकी आवाज जाती है उतनी दूर देवता नहीं आते। स्वर्ग की बसने वाली हस्तियां जो अप्सराओं के गाने सुनने की आदि है, उसकी कर्कश आवाज से नफरत करे तो क्या ताज्जुब। मुझ पर उसकी कर्ण कटु पुकारों का ऐसा आतंक सवार था कि दूसरे दिन दफ्तर से आते ही मैं घर से निकल भागा। लेकिन एक मील निकल जाने पर भी ऐसा लग रहा था कि उसकी आवाज मेरा पीछा किए चली आती है। अपने इस चिड़चिड़ेपन पर शर्म भी आ रही थी, जिसे एक बकरी रखने की भी सामर्थ्य ना हो वो इतना नाजुक दिमाग क्यों बने। और फिर तुम सारी रात तो घर से बाहर रहोगे नहीं, 8 बजे पहुंचोगे तो क्या वो गीत तुम्हारा स्वागत न करेगा। सहसा एक नीची शाखों वाला पेड़ देखकर मुझे बरबस उस पर चढ़ने की इच्छा हुई। सपाट तनों पर चढ़ना मुश्किल होता है, यहां तो 6-7 फुट की ऊंचाई पर शाखें फूट गई थी। हरी हरी पत्तियों से पेड़ लदा खड़ा था और पेड़ भी था गूलर का, जिसकी पत्तियों से बकरियों को खास प्रेम है। मैं इधर 30 साल से किसी रुख पर नहीं चढ़ा, वो आदत जाती रही, इसलिए आसान चढ़ाई के बावजूद मेरे पांव कांप रहे थे। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी और पत्तियां तोड़ तोड़ कर नीचे गिराने लगा। यहां अकेले में कौन मुझे देखता कि मैं पत्तियां तोड़ रहा हूं। अभी अंधेरा हुआ जाता है, पत्तियों का एक गट्ठा बगल में दबाऊंगा और घर जा पहुंचूंगा। मगर इतने पर भी बकरी ने कुछ चीं चपड़ की तो उसकी तो शामत ही आ जाएगी। अभी मैं ऊपर ही था कि बकरियों और भेड़ों का एक गोल न जाने किधर से आ निकला और पत्तियों पर पिल पड़ा। मैं ऊपर से चीख रहा था मगर कौन सुनता, चरवाहे का कहीं पता नहीं, कहीं दुबक रहा होगा, देख लिया जाऊंगा तो गालियां पड़ेगी। झल्लाकर नीचे उतरने लगा। एक एक पल में पत्तियां गायब होती जाती थी। उतरकर एक एक की टांग तोड़ूंगा। यकायक पांव फिसला और मैं 10 फीट की ऊंचाई से नीचे आ गिरा। कमर में ऐसी चोट आई कि 5 मिनट तक आंखों तले अंधेरा छा गया। खैरियत हुई कि और ऊपर से नहीं गिरा, नहीं तो यही शहीद हो जाता। बारे में मेरे गिरने के धमाके से बकरियां भागी और थोड़ी सी पत्तियां बच रही। जब जरा होश ठिकाने हुए तो मैंने उन पत्तियों को जमा करके एक गट्ठा बनाया और मजदूरों की तरह उसे कंधे पर रखकर शर्म की तरह छिपाए घर चला। रास्ते में कोई दुर्घटना नहीं हुई। जब मकान कोई 4 फल्लांग रह गया और मैंने कदम तेज किए कि कहीं कोई देख ना ले, तो वो काछी सामने से आता दिखाई दिया। कुछ ना पूछो उस वक्त मेरी क्या हालत हुई। रास्ते के दोनों तरफ खेतों की ऊंची मेड़े थी जिनके ऊपर नागफनी निकलेगा और भगवान जाने क्या सितम ढाए। कहीं मुड़ने का रास्ता नहीं। सिर झुकाकर इस तरह निकल जाना चाहता था कि कोई मजदूर है। तले की सांस तले थी, ऊपर की ऊपर, जैसे वो काछी कोई खूंखार शेर हो। बार बार ईश्वर को याद कर रहा था कि हे भगवान, तू ही आफत के मारे हुओं का मददगार है, इस मर्दूत की जबान बंद कर दे,

0: एक क्षण के लिए उसकी आंखों की रोशनी गायब कर दे। हाँ, वो यंत्रणा का क्षण जब मैं उसके बराबर एक गज के फासले से निकला, एक एक कदम तलवार की धार पर पड़ रहा था, शैतानी आवाज कानों में आई।
1: कौन कौन है? कौन है रे? रे कहां से बत्तियां तोड़े लाता है? कौन है?
0: मुझे मालूम हुआ नीचे से जमीन निकल गई और मैं उसके गहरे पेट में जा पहुंचा हूं। रोए बरछियां बने हुए थे, दिमाग में उबाल सा आ रहा था, शरीर को लकवा सा मार गया, जवाब देने का होश ना रहा। तेजी से दो तीन कदम आगे बढ़ गया, मगर वो ऐच्छिक क्रिया न थी, प्राण रक्षा की सहज क्रिया थी कि एक जालिम हाथ गट्ठे पर पड़ा और गट्ठा नीचे गिर पड़ा। फिर मुझे याद नहीं क्या हुआ, मुझे जब होश आया तो मैं अपने दरवाजे पर पसीने से तर खड़ा था, जैसे गोया मिर्गी के दौरे के बाद उठा हूं। इस बीच मेरी आत्मा पर उपचेतना का आधिपत्य था और बकरी की वो घृणित आवाज, वो कर्कश आवाज, वो हिम्मत तोड़ने वाली आवाज, वो दुनिया की सारी मुसीबतों का खुलसा, वो दुनिया की सारी लानतों की रूह कानों में चुभी जा रही थी। बीवी ने पूछा,
2: आज कहाँ चले गए थे? इस चुड़ैल को जरा बाग भी ना ले गए? जीना मुहाल किए देती है ये, घर से निकलकर कहीं चली जाऊं ऐसा लगता है।
0: मैंने इत्मीनान दिलाया, भगवान आज चिल्ला लेने दो, कल सबसे पहला काम ये करूंगा कि इसे घर से निकालकर बाहर करूंगा, चाहे कसाई को क्यों ना देना पड़े। अरे और लोग ना जाने कैसे बकरियां पालते हैं।
2: बकरी पालने के लिए कुत्ते का दिमाग चाहिए।
0: सुबह को बिस्तर से उठकर इसी फिक्र में बैठा था कि इस काली बला से क्यों कर मुक्ति मिले, कि सहसा एक गडरिया बकरियों का एक गल्ला चराते हुए आ निकला। मैंने उसे पुकारा और उससे अपनी बकरी चराने की बात कही। गडरिया राजी हो गया, यही उसका काम था। मैंने पूछा, क्या लोगे?
3: हुजूर, 8 आने बकरी मिलते हैं।
0: मैं 1 रुपया दूंगा, लेकिन बकरी कभी मेरे सामने ना आवे। गडरिया हैरत में पड़ गया।
3: मर कही है क्या बाबूजी?
0: अरे नहीं नहीं, बहुत सीधी है, बहुत सीधी है, बकरी क्या मारेगी, लेकिन मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता।
3: अभी तो दूध देती है।
0: हाँ, शेर सवा शेर दूध देती है।
3: दूध आपके घर पहुंच जाया करेगा बाबूजी।
0: तुम्हारी मेहरबानी।
3: कल से दूध पहुंचा दिया करूंगा बाबूजी।
0: जिस वक्त बकरी घर से निकली, मुझे ऐसा मालूम हुआ मेरे घर का पाप निकला जा रहा है। बकरी भी खुश थी, गोया कैद से छूटी है। गडरिये ने उसी वक्त दूध निकाला और घर में रखकर बकरी को लिए चला गया। ऐसा ग्राहक उसे जिंदगी में शायद पहली ही बार मिला होगा। 1 हफ्ते तक दूध थोड़ा बहुत आता रहा, फिर उसकी मात्रा कम होने लगी, यहां तक कि 1 महीना खत्म होते होते दूध बिल्कुल बंद हो गया। मालूम हुआ बकरी गाभिन हो गई है। मैंने जरा भी ऐतराज ना किया, काची के पास गाय थी, उससे दूध लेने लगा। मेरा नौकर खुद जाकर दूध लाता था। कई महीने गुजर गए, गडरिया महीने में 1 बार आकर अपना रुपया ले जाता। मैंने कभी उससे फिर बकरी का जिक्र ना किया। उसके ख्याल से ही मेरी आत्मा कांप जाती थी। गडरिये को अगर चेहरे का भाव पढ़ने की कला आती तो वो बड़ी आसानी से अपनी सेवा का पुरस्कार दुगना कर सकता था। एक दिन दरवाजे पर बैठा हुआ था कि गडरिया अपनी बकरियों का गल्ला लिए आ निकला। मैं उसका रुपया लेने अंदर गया कि क्या देखता हूं कि मेरी बकरी 2 बच्चों के साथ मकान में आ पहुंची। वो पहले सीधी उसी जगह गई जहां बंधा करती थी, फिर वहां से आंगन में आई और शायद परिचय दिलाने के लिए मेरी बीवी की तरफ ताकने लगी। उसने दौड़कर 1 बच्चे को गोद में ले लिया और कोठरी में जाकर महीनों का जमा चोकर निकाल लाई और ऐसी मोहब्बत

0: से बकरी को खिलाने लगी, जैसे बहुत दिनों की बिछुड़ी हुई सहेली आ गई हो। न वो पुरानी कटुता थी, न वो मनमुटाव। कभी बच्चे को चुमकारती, कभी बकरी को सहलाती थी, और बकरी डाक गाड़ी की रफ्तार से चोकर उड़ा रही थी। तब मुझसे बोली,
1: अरे वाह, अरे कितने खूबसूरत बच्चे हैं।
0: हाँ, बहुत खूबसूरत।
1: जी चाहता है इनमें से एक ले लूं, पाल लूं।
0: तबीयत नहीं भरी अभी तक।
1: तुम तो बड़े निर्मोही हो।
0: चोकर खत्म हो गया, बकरी इत्मीनान से विदा हो गई। दोनों बच्चे भी उसके पीछे पीछे फुदकते चले गए। देवी जी आंख में आंसू भरे ये तमाशा देखती रही। गडरिया ने चिलम भरी और घर से आग मांगने आया। चलते वक्त बोला,
2: कल से दूध पहुंचा दिया करूंगा बाबूजी।
0: देवी जी ने कहा,
1: और दोनों बच्चे क्या पियेंगे?
0: और मुझे रात को वो मर्मांतक घटना याद आ गई। मैंने कहा, दूध लाओ या न लाओ तुम्हारी खुशी, लेकिन बकरी को इधर ना लाना। उस दिन से न वो गडरिया नजर आया, न वो बकरी, और न मैंने पता लगाने की कोशिश की। लेकिन देवी जी उसके बच्चों को याद करके कभी कभी आंसू बहाकर रोती है।
3: अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो का दूसरा और अंतिम भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है, सूत्रधार जी श्याम, बीवी ममता सिंह, पंडित जी दीपक केसावलेकर, काची जयंत पात्रिकर, काची की बीवी चंचल वर्मा, नौकर दीपक केसावलेकर, गड़रिया राजेश झा, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
4: मंजरी, देखिए एक हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बरसों पहले हमारे पास एक बकरी थी जिसे चरवाहे के घर तक छोड़ने के लिए मैं और मेरा कजन जाते थे, लेकिन आज इस बात को 50 साल बीत गया है, ना वतन में रहते हैं ना जगह है। सूरत शहर में तो फ्लैट की 9वीं मंजिल है। अब कोई दुख तो नहीं, केवल ये दुख है कि वो बचपन समय और दादाजी पिताजी काकाजी सब चले गए। कजन के साथ ही पुरानी यादें बांटूंगा।
5: क्या बात है, और वाकई में बहुत अच्छा लगा इनका किस्सा सुनकर के। और इसी के साथ समय हो चला है अंतराल का, तो लेते हैं अंतराल।

0: तो राजुल जी, अंतराल के बाद सभी का एक बार स्वागत करते हुए
1: फिर से स्वागत है।
0: जी, और हम बात करने वाले हैं विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, जो हर वर्ष 18 मई को मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य HIV एड्स के प्रति जागरूकता फैलाना है और ऐसी प्रभावी वैक्सीन के विकास के लिए वैज्ञानिकों, डॉक्टर और संस्थाओं के प्रयास को सम्मान देना है।
1: और इसकी रोकथाम के लिए, जो एड्स है इसकी रोकथाम के लिए एक सुरक्षित और प्रभावी टीका खोजने की दिशा में चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधानों को भी बढ़ावा मिले, ये भी इस दिन का उद्देश्य है।
0: जी, और ये दिवस पहली बार वर्ष 1998 में मनाया गया था। इसकी प्रेरणा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के एक भाषण से मिली थी, जिसमें उन्होंने एड्स वैक्सीन विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया था।
1: दरअसल ये एक वायरस है HIV, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है, और यदि समय पर इसका इलाज ना हो तो ये एड्स का रूप ले सकता है। और लोगों में एड्स के बारे में जानकारी बढ़े, सुरक्षित जीवन शैली के बारे में वो जाने, उसे अपनाएं, और वैक्सीन अनुसंधान हो ज़्यादा से ज़्यादा, संक्रमित लोगों

0: के प्रति भेदभाव ना बरता जाए, क्योंकि कई बार एड्स से पीड़ित लोगों को घर में बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती है।
1: जी बिल्कुल। और जो इसके बचाव के लिए है कि आप संक्रमित सुई या ब्लेड का उपयोग ना करना है और समय समय पर HIV की जांच कराना है, अपने रिश्तों को भी अच्छे से बना के चलना है, जागरूकता और सही जानकारी इसके बारे में फैलाना जरूरी है। और संदेश ये देता है कि जागरूकता, शोध और सहयोग ही HIV एड्स मुक्त भविष्य की कुंजी है।
0: और विश्व एड्स टीकाकरण दिवस 2026 का जो टॉपिक है, विषय है, वो है पुनर्विचार करें, पुनर्निर्माण करें, आगे बढ़ें। ये विषय HIV वैक्सीन अनुसंधान की दिशा में जो सारे विश्व में प्रयास चल रहे हैं उनको मजबूत करता है, जन जागरूकता को बढ़ाता है, रोकथाम रणनीतियों में जो नई नई बातें आती हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले इस बात की कोशिश करता है, और स्वास्थ्य सेवा को फिर से बहाल करके HIV के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का पर भी बल देता है।
1: जी, और इसी के साथ हम लोग गीत सुन लें।
0: हाँ, वो तो बहुत ज़रूरी है।

0: नया दौर फिल्म का ये मस्ती भरा गाना हमने सुना, और अब अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की बात करें।
1: बिल्कुल, मानव सभ्यता का इतिहास, संस्कृति, कला और परंपराएं किसी राष्ट्र की अमूल्य

0: धरोहर होती हैं और इन धरोहरों को सुरक्षित रखने और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का कार्य संग्रहालय करते हैं। संग्रहालय केवल पुरानी वस्तुओं का भंडार नहीं होते, बल्कि वे ज्ञान, शिक्षा और प्रेरणा के महत्वपूर्ण केंद्र भी हैं। इन्हीं के महत्व को समझने के लिए हर वर्ष 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है।
1: और इस दिन की शुरुआत वर्ष 1977 में हुई थी, जब इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम ने इस बात का निर्णय लिया था। और इसका उद्देश्य तो यही है कि लोगों को संग्रहालयों की भूमिका और उसके महत्व के प्रति जागरूक करना। दुनिया में अनेक देशों में ये दिवस बहुत उत्साह से मनाया जाता है और बहुत सारे संग्रहालयों में प्रदर्शनी भी लगाई जाती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, कार्यशालाएं होती हैं और साथ ही साथ शैक्षिक गतिविधियां भी होती हैं।
0: बिल्कुल राजू जी, और संग्रहालय जो हैं वो हमारे इतिहास और संस्कृति के संरक्षक होते हैं। इनमें प्राचीन मूर्तियां, ऐतिहासिक दस्तावेज, कलाकृतियां, हथियार, वस्त्र और वैज्ञानिक खोजों से संबंधित वस्तुएं सुरक्षित रखी जाती हैं। ये हमें हमारे अतीत से जोड़ने और ये समझने में सहायता करते हैं कि मानव सभ्यता ने किस प्रकार विकास किया है। संग्रहालय जब भी हम लोग जाते हैं तो सभी को लेके जाते हैं, पिकनिक पर भी आपने देखा होगा, स्कूल वाले भी बच्चों को लेके जाते हैं। तो संग्रहालय जाने से बच्चों को ज्ञान बढ़ता है और पुरानी चीज़ों को देखते हैं कि क्या चीज़ें थी जो हम नहीं जानते, जिनके बारे में वो बहुत सारी जानकारियाँ।
1: हाँ, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कई संग्रहालयों में उस समय के वस्त्र, पुराने पुराने वस्त्र की, जैसे एक संग्रहालय में देखा गया कि उस समय कैसा बनारसी की या किमखाप कैसा चलता था, मलमल कैसा होता था, तो ये सब देखने को मिलता है। बड़ा अच्छा लगता है,
0: बहुत अच्छा लगता है। वजनदार चीज़ें जो दिखती हैं, ढाल, तलवार, ये सब कितनी वजन कैसे वो लेके चलते होंगे, हथियार, घोड़े पर दौड़ना, लड़ाई करना, उस समय के जमाने के जो होते हैं वो सब देख के तो एकदम अद्भुत लगता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और आजकल की बात करें तो डिजिटल युग में संग्रहालय आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके लोगों तक अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं और अब ऑनलाइन प्रदर्शनियां और वर्चुअल टूर के माध्यम से लोग घर बैठे भी संग्रहालयों का अनुभव करते हैं। इसमें नई पीढ़ी में इतिहास और संस्कृति के प्रति रुचि बढ़ रही है।
1: तो ये दिन इसलिए मनाया जाता है कि हम अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षित करें, उनको संरक्षित करने के उपाय करें और जागरूक भी रहें और हमें पता रहे कि ये संग्रहालय जो हैं वो हमारे गौरव और पहचान के प्रतीक हैं। हमें इनका सम्मान करना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों को इनके महत्व से परिचित कराना चाहिए। वास्तव में संग्रहालय अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ने वाली अमूल्य कड़ी है। देखो, देखिए, जैसे जब हम बात करते हैं ना कि ये इनको संरक्षित करना चाहिए, तो कई बार ये कहा जाता है कि इस पर कोई भी अगर शोकेस लगा है तो उसमें अंदर जो चीज़ें बंद हैं वो तो चलिए सुरक्षित हैं, फिर भी हम उस शीशे पर बार बार हाथ लगाते हैं,
0: सब नहीं करना चाहिए।
1: और कई बार जो चीज़ें खुले में रखी हैं उनको भी हम उठाने की कोशिश करने लगते हैं, हालांकि वो थोड़ी सी दूर पर रहती हैं और बीच में एक
0: रिंग लगा रहती है,
1: डोरी लगी, जिससे कि बाधक बाधा रहे, ना पहुंचा जाए, लेकिन फिर भी लोग ऐसा करते हैं। तो ये सब पुराने
0: अच्छा
1: बहुत समय
0: है।
1: से संजो कर रखा गया है, इनको इसी तरह से हम सुरक्षित रख सकते हैं कि हम अपने हाथ वहाँ तक ना पहुँचाएं।
0: सही बात है। और इस तरह से हम संग्रहालय में जाके देख सकते हैं और सभी को दिखा सकते हैं और वहाँ पर जो बुक्स मिलती हैं राजुल जी, उनके बारे में उनको भी आप खरीद करके ला सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, जानकारियाँ अपना उपलब्ध आपको मिल जाएगी उस बुक्स।
1: कई
0: तो
1: संग्रहालयों में शोज भी होते हैं
0: जी,
1: कि लाइट शोज होते हैं या कोई ड्रामा होता है या कोई नाटिका होती है, वो भी देखने का अगर मौका मिले तो ज़रूर देखिए, क्योंकि उससे और भी ज़्यादा आपको पता लगेगा।
0: करीब पहुंच जाते हैं, उस समय के करीब पहुंच जाते
1: बिल्कुल
0: हैं, है ना। तो चलिए
1: हम करीब पहुंच रहे हैं
0: गीत के,
1: गीत के

0: तो राजुल जी, अब हम व्यंजन बता देते हैं। पहले स्ट्रीट स्टाइल बनारसी टमाटर चाट जो हमने वो बताएंगे।
1: मतलब आपने ये तय कर लिया है कि जो झगड़े वाली बात है ना मोबाइल को लेके, उसको आपने टाल दिया है सबसे आखिरी के लिए।
0: हाँ,
1: चलिए चलिए, पेट भर जाएगा तो झगड़े कम होते हैं, है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए पहले व्यंजन बता देते हैं। बनारसी टमाटर चाट, इसकी सामग्री है कि 3 लाल पके टमाटर बारीक काट लें, 2 उबले आलू मैश कर लें, 2 बड़े चम्मच देसी घी या मक्खन, आधा 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच हींग, 1 छोटा चम्मच अदरक कद्दूकस किया हुआ और 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी और 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, इतना ही आप चाट मसाला ले लीजिए, और आधा छोटा चम्मच काला नमक और सादा नमक अपने स्वाद के अनुसार लेना है, और 1 बड़े चम्मच इमली की मीठी चटनी, 1 छोटा चम्मच चीनी या गुड़, और सजाने के लिए आपको सेव, बारीक कटा हरा धनिया, पापड़ी, मिर्ची, थोड़ा सा मक्खन लेना है। और इसकी बनाने की विधि क्या है कि तवा या कढ़ाई गर्म करें, उसमें देसी घी डालें और जीरा हींग डालकर तड़काएं, इसमें अदरक हरी मिर्च डालकर भूनें, कटे टमाटर डालें और चम्मच से दबाते हुए पकाएं, टमाटर जब गल जाएं तो इसमें मैश किए हुए आलू डाल दें, और इसमें सारे जो मसाले हमने बताए थे, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, काला नमक, चाट मसाला, इमली की चटनी और थोड़ा सा गुड़, चीनी डालें, और क्योंकि खट्टा मीठा इसका स्वाद आएगा तो उसको लगातार आप चलाते रहें, और ये गाढ़ा और चमकदार जब हो जाएगा तभी आप समझ लीजिए ये आपका तैयार है। और इसको गर्मा गर्म चाट या चाट को कुल्हड़ या कटोरी में निकाल लीजिए, ऊपर से मक्खन, सेव, पापड़ी और हरा धनिया डालकर तुरंत परोसे, और बनारसी स्वाद का आप इसको मजा ले सकते हैं। और आप देशी घी या मक्खन दोनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: तो हमारे एक श्रोता ने कहा है कि बनारस गया था लेकिन चाट नहीं खाई, अब की जाऊंगा तो जरूर खाऊंगा। तो मेरे ख्याल से अब तो उन्होंने पक्का इरादा कर लिया होगा कि जरूर खाएंगे। और एक श्रोता कह रहे हैं कि बनारसी व्यंजन की बात हो रही है तो ये तो लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है, वहां जाकर ये चाट नहीं खाई तो क्या खाई, छेना दही बड़ा ये नहीं खाया है,
0: तो बस आप,
1: तो ये मिठाई है नमकीन,
0: ये आप पढ़ेंगे सामग्री
1: अभी पता लग जाएगा। तो भाई, छेना दही बड़ा बनाने के लिए 250 ग्राम ताज़ा छेना या पनीर ले लीजिए, 2 बड़े चम्मच अरारोट या कॉर्नफ्लोर, 1 बड़ा चम्मच मैदा, 1 चुटकी इलायची पाउडर और तेल तलने के लिए ले लीजिए। अब दही में मिलाने हैं क्या क्या, 2 कप ताज़ा दही हो, उसमें 2-3 बड़े चम्मच चीनी, थोड़ा सा काला नमक मतलब मीठा नमकीन दोनों, भुना जीरा पाउडर, और सजावट के लिए इमली की मीठी चटनी, हरी चटनी, लाल मिर्च पाउडर और भुना जीरा लेना है, और सेब या अनार के दाने ले सकते हैं। कैसे बनाएंगे कि छेने को हाथों से अच्छी तरह मसल लें ताकि वो बिल्कुल मुलायम हो जाए। अब इसमें अरारोट, मैदा और इलायची पाउडर मिलाएं और छोटे छोटे गोल बड़े बना लें। फिर कढ़ाई में तेल गरम करें, मध्यम आंच पर बड़े सुनहरे होने तक तलें, निकाल कर टिश्यू पेपर पर रख दें। अब दही को तैयार करना है तो अच्छी तरह फेंट के उसमें चीनी, थोड़ा काला नमक और भुना जीरा मिला दें। अब बड़े को हल्के गुनगुने पानी में 2 मिनट डालकर निकाल लें, ज़्यादा देर तक नहीं रखें नहीं तो वो फट जाएंगे। और अब उन्हें दही में डालें, ऊपर से इमली चटनी, हरी चटनी, लाल मिर्च और जीरा पाउडर डालें। छेना जितना मुलायम होगा उतना ही आपका बड़ा स्पंजी बनेगा, और इसको इसमें हल्का सा मीठा दही ऊपर से डाल सकते हैं, चाहे तो ऊपर से किशमिश और मेवे भी डाल सकते हैं। और ख़ास बात तो यह है कि गर्मियों में बड़ा मज़ा देगा ये, और त्योहारों में भी आप इसे बना सकते हैं।
0: बिल्कुल, आप जब बता रही थी तो बिल्कुल स्वाद मेरे मन में आया जा रहा था, लेकिन उसके बाद तो अब स्वाद गीतों का आ रहा है।

0: दिल की ये बेचैनी दुल्हन एक रात की फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सुन रहे थे। राजा मेहंदी अली खान ने इस गीत को लिखा था और मदन मोहन ने धुन बनाई थी। और देखिए मंजरी, हम लोग जो कोई दुख ना हो बकरी पाल लो कहानी सुन रहे थे, तो हमारे एक और श्रोता ने अपना अनुभव बांटा है, हमारे साथ साझा किया है कि बचपन के दिनों में हमारे गाँव के गरड़िया अपने बकरियों का झुंड लेकर खेतों में और जंगल में जाते थे, तो हम छुप कर किसी बकरी को पकड़ते थे और उसका दूध पलाश के पत्तों को मोड़ कर उसमें निकालते थे और खूब पीते थे।
1: क्या बात बचपन की ऐसी शरारतें तो हम लोगों ने भी की हैं, लेकिन अभी हम आज बात करेंगे जो हमारे मोबाइल घर में पति पत्नी के बीच में
0: जो मोबाइल शरारते
1: कर देता है। तो बस ये सुबह उठो तो लगता है भाई वो तो सबसे पहले उठकर पतिदेव मैसेज किए जा रहे हैं, गुड मॉर्निंग मैसेज हो रही है और कुछ सुन नहीं रहे हैं, कुछ चाय वाय नहीं पीने के लिए आ रहे हैं, तो वो एक आपसी तनाव होता है,
0: झुंझलाहट
1: होती है कि अरे यार खाने के समय भी साइड में मोबाइल चल रहा है, मैसेज देखे जा रहे हैं, तो वो बड़ी समस्या होती है कि भाई खाने के समय खाना खाइए, मोबाइल चलाना नहीं।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारे एक श्रोता लिख भी रही हैं कि मोबाइल और इंटरनेट का अत्यधिक उपयोग पति पत्नी के बीच तनाव और दूरियां बढ़ाने का एक प्रमुख कारण बन रहा है। इसे विशेषज्ञ टेक्नोफेरेंस नाम से कह रहे हैं। अब तो बातचीत के बीच में पति पत्नी और वो नाम से इसे संबोधित किया जा रहा है, यानी दाद में मुसर्जन।
1: और एक साथी लिखती है कि मोबाइल के कारण जीवन साथी से तनाव, इससे कोई नहीं बचा है, मेरे घर भी यही सब है, वो पास बैठे रील देखकर मुस्कुराते रहते हैं और हम चुप्पे से अपना काम करते रहते हैं। वाकई में आप चुपचाप काम कर रही थी, बड़ी अच्छी बात है। और एक साथी लिखते हैं कि मोबाइल ने दूर वालों को नज़दीक और नज़दीक वालों को दूर कर दिया है, साथ रहने वाले परिवार भी घंटों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। दूसरा अवगुण हैंड राइटिंग और स्पेलिंग याददाश्त का सत्यानाश कर दिया है।
0: एक श्रोता कह रही है कि आज के समय में मोबाइल हमारी जरूरत बन चुका है, लेकिन कई बार यही मोबाइल रिश्तों में दूरियां भी बढ़ा देता है। एक समय था जब परिवार और जीवन

0: साथी के साथ बैठकर बातें होती थी, हंसी बांटी जाती थी। अब अक्सर एक ही कमरे में साथ होकर भी लोग अपने अपने मोबाइल में खोए रहते हैं। धीरे धीरे संवाद कम होने लगता और वहीं से तनाव लेने लगता है। रिश्ते समय और अपनापन मांगते हैं, सिर्फ ऑनलाइन मौजूदगी नहीं। कभी कभी मोबाइल को थोड़ी देर के लिए दूर रखकर अपने जीवन साथी की बातें सुन लेना, उनके साथ कुछ पल मुस्कुरा लेना, फिर से रिश्तों को खूबसूरत बना देता है। तकनीक जीवन को आसान बनाए, रिश्तों को दूर नहीं, यही समझदारी है। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने।
1: बहुत अच्छी बात है। और एक हमारे साथी लिखते हैं कि जहाँ तक मोबाइल के कारण जीवन साथी के साथ तनाव की बात है, उसमें पति पत्नी दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं। मोबाइल से अधिक व्यस्त रहने के कारण एक दूसरे के बीच संवादहीनता की भावना पैदा होने लगती है, दूरियां बन जाती हैं। इसे हम नज़रअंदाज कहना कह सकते हैं, जो आपस के रिश्तों में तनाव और दूरियां बढ़ाने का प्रमुख कारण बनता जा रहा है। आजकल घर के हर सदस्य के पास मोबाइल होता है और समय की मांग के अनुसार ये जरूरी भी है, लेकिन इसके कारण घर के पास बैठे हुए भी मीलों की दूरी बन जाती है। सब अपने अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। इस बिन डोर वाले मोबाइल से वो डोर वाला लैंडलाइन फोन अच्छा था, जो घर के सभी को जोड़ कर रखता था,
0: एक डोर में बांधे रहता था।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ भी तो हमें कदम से कदम मिलाना भी उतना जरूरी है। वाकई में ये बहुत पॉइंट अच्छा दिया है कि वो तो वहाँ डोरी के साथ बंधा है, अगर फोन आएगा तो हम उठ के जाएंगे तभी रिसीव करेंगे।
0: हाँ, लेकिन
1: टाइम नहीं लगता।
0: ये समस्या तो है, लेकिन बस यही है कि अति हर चीज की बुरी होती है। और देखिए ना, शिकायतें भी हो रही है और गीत भी चल रहा है, तो एक बैलेंस बना हुआ है ना, तो क्या करें। गीत सुन लेते हैं।

0: भाई साजन बिना सुहागन का ये गाना पूछ रहा है कि कैसे जीत लेते हैं, और हम वही बात कर रहे हैं कि कैसे जीता जाए। तो मोबाइल में की भूमिका को जरा हाँ थोड़ा कम किया जाए तो जीत लिया जाए दिल।
1: बिल्कुल
0: एक श्रोता कह रहे हैं कि पहले तो मोबाइल नौकरी वालों के पास ही रहा करता था, लेकिन अब तो पुरुष तो पुरुष, बहुत सारी महिलाओं के हाथों तक ये मोबाइल पहुंच चुका है, और चलाते समय बिना किसी सहायता के भी आसानी से अपनी रुचियों के हिसाब से नेट प्लेटफॉर्म्स पर कार्यक्रम देखते रहना उनके शौक भी हो गए हैं। नतीजा साफ है कि एक ही बेड पर दोनों पति पत्नी लोग अक्सर ही आवाज़ धीमी करने की शिकायत करते हैं, और अगर अलग अलग बेड पर सोएं तो इसमें फिर आश्चर्य की क्या बात है। हाँ ये बात तो होती है ना कि अब सोते समय भी कोई ये देख रहा है, तो जबकि सोते समय थोड़ा मोबाइल से दूरी बरतना अच्छा रहता है।
1: हाँ बेड से आप दूर ही रखिए, मोबाइल मेज पर रखिए, तब आप सोइए, उसको पास रखना भी नहीं चाहिए। और हमारे एक साथी, हमारी पत्नी तो रही नहीं, दोनों बहू और बेटों की तू तू मैं कभी ना कभी महीने पर सुनता हूँ, क्या कर सकता हूँ, बस नाती नातिन से कह देते हैं मम्मी की मोबाइल पापा को चुपके से दे दो, और पापा के मोबाइल मम्मी को, फिर सब

0: शांत हो जाता है। वाकई में पति पत्नी के साथ जब दोनों बैठे हों तो सबसे ज़रूरी है कि आप मोबाइल को दूरी रख दें, और जो समय मिला है आपको पास बैठने का, बातें करने का, तो आप उससे अच्छे से बात कर लें।
1: एक श्रोता ये भी लिख रहे हैं कि मोबाइल काफ़ी चीज़ों को निगल गया है। आज समाज परिवार के बीच की दूरी का कारण मोबाइल है, स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, रिश्ते में तनाव का कारण भी मोबाइल है। आज परिवार भी छोटा हो रहा, समाज के अर्थ को भूल गए हैं। आज कोई व्यक्ति कष्ट में है तो मदद नहीं कर वीडियो बनाते हैं। आज हम अपने असली रिश्ते को भूल कर डिजिटल रिश्ते खोज रहे हैं। तो वाकई बहुत जो ज्वलंत समस्या है वो आज हमने उठाई है, और हमारे श्रोताओं ने उस समस्या को कितनी बुरी तरह से हावी हो चुकी है इस बारे में भी बताया है, लेकिन वक्त की कमी है।
0: बिल्कुल, और चलते चलते यही कहेंगे कि जिन्होंने भी ये प्रोग्राम सुना है वो इस समय जब अपने पति पत्नी साथ में हो तो मोबाइल हटा दें। और हम लोग लेते हैं फिलहाल इस कार्यक्रम से विदा। तो सभी को मंत्री वर्मा और
1: राजुल का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी, लेकर हाजिर हूं सेहतनामा कार्यक्रम में। एक और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मीनल शाह, जो कि सुप्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ हैं, डाइटिशियन हैं, और इनका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में सेहतनामा कार्यक्रम में।
1: मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं सुनने वालों को भी नमस्कार करती हूँ।
0: और आज का जो हमारा विषय है, प्रोटीन और विटामिन्स का महत्व, तो डॉक्टर मीनल बताएंगी आपको इस विषय के बारे में, और आपकी ओर से मैं तमाम सवाल करना चाहूँगा। तो डॉक्टर मीनल, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, ये प्रोटीन और विटामिन्स हैं क्या, और शरीर के लिए इसकी महत्ता या इम्पोर्टेंस क्या है?
1: जी बिल्कुल राजेंद्र जी, प्रोटीन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है अपने शरीर के लिए। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे खाने में मौजूद होती है, पर ये चीज़ जो है, जो प्रोटीन होता है, वो आपके शरीर के लिए इतना ज़रूरी है कि अगर वो हम ठीक से ना ले तो हम कमज़ोर पड़ सकते हैं, हम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि हमारा प्रोटीन इंटेक अच्छे से नहीं होता है। ये चीज़ अगर खाने से निकल जाती है तो हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हम बीमार पड़ने लगते हैं। हम अपना रोज़ का जो एक्टिविटीज़ है, जो रूटीन है, हम वो नहीं फॉलो कर पाते हैं। एंड अगर जोर दे इस चीज़ पे, तो ये बहुत सिंपली अचीव किया जा सकता है सिर्फ खाने पे थोड़ा ध्यान देने पे। और रही बात विटामिन्स की, विटामिन्स को हम एक्चुअली बोलते हैं वाइटल न्यूट्रिएंट्स। ये चीज़ ऐसी है जो बहुत छोटे प्रमाण में खाने में ज़रूरी होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है इनको। लेकिन अगर ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाने में कम हो या ना हो, तो हमारे बाकी के खाने का असर ही कम हो जाता है। इनकी मात्रा भले छोटी हो, पर इनका जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है, वो इतना ज़्यादा है कि इनकी एब्सेंस में हमारा खाना या हमारा शरीर अपना काम नहीं कर पाता है।
0: बड़ी अच्छी जानकारी, बहुत ही सरल शब्दों में आपने सुनने वालों को बताई, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बाद तो डॉक्टर साहब क्यों ना हम प्रोटीन और विटामिन को अलग अलग डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि प्रोटीन के स्रोत या सोर्सेज जो हैं वो क्या क्या हैं।
1: जी प्रोटीन्स जो है वो खाने में बहुत सारी अलग अलग प्रकार के भी होते हैं, सोर्सेज में उसी हिसाब से बताओगी। प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन होता है, यानी जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है, जो पूरा है, इनकम्प्लीट नहीं है, वो प्रोटीन्स अलग है। और दूसरे एक टाइप के प्रोटीन जो होते हैं, एक प्रकार का प्रोटीन है, वो थोड़ा इनकम्प्लीट होता है।
0: वो कैसे?
1: वो ऐसे कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हमारा जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड्स एक बहुत छोटे ये विटामिन से उससे बनता है, तो उसमें कुछ अमाइनो एसिड्स मिसिंग होते हैं। तो पहले कंप्लीट प्रोटीन पे फोकस करते, मैं इनकम्प्लीट प्रोटीन पे वापस आऊँगी। कंप्लीट प्रोटीन्स ये है जो शरीर जब हम खाते हैं तब शरीर उसका पूरा फायदा उठा सकता है, उसमें कोई चीज छूटी नहीं है, तो ये हमें सबसे ज्यादा फायदा करता है। कंप्लीट प्रोटीन्स खाने में पहला सोर्स है दूध और दूध के पदार्थ
0: जी।
1: तो दूध हो गया, दही है, छाछ है, पनीर है, ये सारा फर्स्ट क्लास प्रोटीन यानी कंप्लीट प्रोटीन होता है,
0: जिसे हम डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं।
1: यस, जिसे हम डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं। और ये सारी चीज़ें ऐसी है जो हम बहुत आसानी से और रोज खा सकते हैं और इसका शरीर पूरा फायदा उठा सकता है, तो इसमें कुछ छूटेगा नहीं। जो इनकम्प्लीट प्रोटीन्स मैं बता रही थी, ये वो चीज़ें हैं जिसमें कुछ मिसिंग है, कोई ऐसी चीज है जो इसमें नहीं है, और इसके लिए हमें ये कॉम्बिनेशन में खानी पड़ती है, दो चीजें साथ में खानी पड़ती है। दाल, मूंग, मटकी, चना, कड़धानिया जो बेसिकली हमारे हैं, वो है हमारा सेकेंड बेस्ट प्रोटीन यानी इनकम्प्लीट प्रोटीन,
0: जिसमें आम भाषा में या गांव में कहीं इसको कठोर कहा जाता
1: बिल्कुल,
0: है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, कठोर या कड़धानिया जैसे हम बताते हैं, ये जो प्रोटीन है ये बहुत जरूरी प्रोटीन है, बट इसमें कुछ चीजें इनकम्प्लीट है, कुछ चीज़ें हैं जो पूरा नहीं है वो प्रोटीन, इसके लिए हमें उसके फायदे ज़्यादा नहीं मिल पाते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ हम कॉम्बिनेशन में, जैसे मैं बताए, दो चीज़ें साथ में ले ले, तो ये कम्प्लीट हो जाता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारी खिचड़ी।
0: अच्छा,
1: जब हम दाल और चावल कंबाइन करते हैं, जब हम दाल चावल साथ में बनाते हैं या जब हम नॉर्मल दाल चावल साथ में खाते हैं, तब वो कम्प्लीट प्रोटीन बन जाता है, क्योंकि अनाज और कड़धान्य दोनों साथ में आए हैं।
0: वाह।
1: तो जो हम बेसिकली अब तक खाते आए हैं पुराने जमाने से, वो एक्चुअली बहुत अच्छी चीज़ है, और हमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो फॉलो करती रहनी चाहिए। जो इनकम्प्लीट प्रोटीन है, जो मैंने बताया प्रोटीन सोर्सेस, इसमें आपका सोयाबीन भी आ जाता है।
0: अच्छा,
1: तो पहला अगर मैं देखूँ तो दूध और दूध के पदार्थ है यानी मेरे डेयरी प्रोडक्ट्स है, दूसरा मेरा सोयाबीन आ जाता है जो करीब करीब कंप्लीट है, और तीसरा है जो मेरे कड़धान्य है, जो अगर मैं कॉम्बिनेशन में खाऊँ तो वो उतने ही अच्छे है जितना मेरा दूध अच्छा है
0: अनाज के साथ।
1: बिल्कुल
0: जी जी।
1: और इन सब के अलावा ये सारे मेरे शाकाहारी ऑप्शंस हो गए थे, जो मांसाहार खाते हैं उनके लिए भी प्रोटीन सोर्सेज है, जो हमारा अंडा, चिकन, मच्छी, ये सारा आ जाता है, ये भी अच्छे प्रोटीन्स है, ये भी कंप्लीट प्रोटीन्स है, ये दूध के बराबर आ जाते हैं, भले दूध और इसकी जो
0: सिमिलरिटी है,
1: हाँ, जो प्रॉपर्टीज है ये थोड़ी डिफर करती है न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन अगर देखा जाए तो, लेकिन ये कंप्लीट प्रोटीन है, तो इसे भी शरीर पूरी तरह से यूज कर सकता है, इसका भी शरीर पूरा फायदा ले सकता है,
0: शरीर इसका अवशोषण कर सकता है,
1: शरीर इसका अवशोषण कर सकता है।
0: जी, आपने प्रोटीन के बारे में जो क्लासिफाइड या वर्गीकृत ढंग से समझाया बहुत ही अच्छा लगा। हम आगे बढ़ेंगे इसी विषय पर, फिलहाल हम एक संगीत की बात करेंगे और चाहेंगे आपकी पसंद का कोई गाना बजाया जाए। कौन सा गीत आपको पसंद है?
1: हम नहीं बदलेंगे, गोलमाल अगेन से।
0: हम सुनवा रहे हैं दोस्तों डॉक्टर मीनल की पसंद का ये गाना।

0: डॉक्टर मीनल, जैसे कि बात चल रही थी कि प्रोटीन के जो सोर्स हैं वो क्या-क्या हैं, आपने वर्गीकृत करके बताया था गीत बजने से पहले। हम ये जानना चाहेंगे डेयरी प्रोडक्ट्स की, जहाँ तक बात होती है, और बहुत सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं और एक एज के बाद, 40 के बाद या 35 के बाद या आफ्टर 40, वो ये समझते हैं कि भाई ब्लॉकेज का ज़माना है और ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। तो आखिरकार जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें किस तरह से हम हासिल कर सकते हैं, क्या जो हृदय रोगी होते हैं या इस तरह के मरीज होते हैं उनको भी ये सोर्स काम करते हैं?
1: डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो नुकसान नहीं करते हैं, वो नुकसान तब करते हैं जब हम उसे फैट वाला ले या चर्बी वाला दूध ले। तो ज़रूरी नहीं है डेयरी नुकसान करेगा, डेयरी तब नुकसान करेगा जब हम वो फुल क्रीम मिल्क या भैंस का पूरा मलाई वाला दूध, वैसे दूध वाली चीज़ें ले तो वो नुकसान डेफिनेटली करेगा। लेकिन हमें लेना है या तो गाय का दूध या तो टोन्ड मिल्क। एक बहुत सिंपल चीज़ हम कर सकते हैं, जब हम दूध खरीदें मार्केट से तब सिर्फ पैकेट, आजकल पैकेट का ज़माना है, पैकेट में ही दूध रहता है, तो पैकेट पे सिर्फ फैट परसेंटेज पढ़ ले, वो 3.2 या 3.5 से नीचे होना चाहिए।
0: अच्छा,
1: अगर वैसे है तो वो फैट परसेंटेज जो है दूध का वो कंट्रोल में है। तो हम जब घर पे उसे गर्म करेंगे, जब वो गर्म करके ऊपर मलाई आती है, वो हल्की सी मलाई भी निकाल लेते हैं तो वो लो फैट दूध हो जाता है। तो उसके लिए हमें बाजार से स्किम मिल्क या लो फैट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, हम वो चीज़ घर पे ही बना सकते हैं। और वो जो दूध है उसमें कैल्शियम है, उसमें अच्छा वाला प्रोटीन है, तो वो नुकसान कभी नहीं करेगा। अगर वो फुल क्रीम मिल्क है या मलाई वाला दूध है तो वो नुकसान कर सकता है।
0: अच्छा, कुछ लोग जो हैं, आपने जैसे कड़धान्य और अनाज का कॉम्बिनेशन बताया था, एक मिश्रण बताया था, जैसे खिचड़ी का जो उदाहरण है वो बड़ा बेहतरीन रहा है, लेकिन कुछ लोग स्प्राउट खाते हैं, अंकुरित भोजन खाते हैं सुबह के टाइम, या तो वो कितना काम करता है?
1: वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जब हम स्प्राउट करते हैं तब उस जो अनाज है वो ज़्यादा बेहतर बन जाता है। उसमें कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो वो स्प्राउट करने में और अवेलेबल हो जाते हैं, यानी शरीर उसका पूरी तरह से एब्जॉर्प्शन कर पाता है। तो वो स्प्राउट्स बहुत अच्छे हैं। सिर्फ एक चीज़ गलत हो जाती है कि वो स्प्राउट्स हम कच्चे लेने की कोशिश करते हैं।
0: अच्छा,
1: तो कच्चे है तो शरीर, हमारा शरीर ये नहीं कर पाता है कि कच्ची चीज़ें वो एब्जॉर्ब कर पाए, वो हम पूरी तरह से उसका बेनिफिट नहीं उठा पाते, फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो जब हम उसको थोड़ा सा भी बॉईल कर लेंगे, उबाल लेंगे या स्टीम कर लेंगे, भाप देते हैं हम जैसे, अगर थोड़ा सा भी वैसा कर लेते हैं तो वो शरीर के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, वो एब्जॉर्प्शन के लिए मदद करता है और वो हम पूरी तरह से उसका फ़ायदा उठा सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी बात बताई। अच्छा, ये बताइए कि फ़ायदे तो होते हैं, प्रोटीन ज़रूरी होता है, नहीं तो जैसे आपने शुरू में ही बताया कि बीमारियां घर में घुस जाती हैं शरीर में, तो शरीर का जो एक घर है इसमें बीमारियां ना घुसें, उसके लिए सुना ये भी

0: जाता है, कई बार ये मिथ है या सच है कि प्रोटीन नुकसान भी कर देता है, वो किस अवस्था में करता है और कैसे करता है?
1: प्रोटीन नुकसान कर सकता है, ये बात सच है। लेकिन ये बात सच है जब हम ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं। अगर हम आज का खाने का तरीका देखें, जिस तरह से हम खाना खाते हैं, जिस तरह से हमारा रूटीन या लाइफस्टाइल हो गया है, हम जनरली प्रोटीन मिस कर देते हैं, या फिर हम ऐसे टाइप का प्रोटीन खाने की कोशिश करते हैं जो नुकसान करेगा। तो प्रोटीन फिलहाल नुकसान नहीं कर रहा है, वो फिलहाल खाने में बहुत कम है और उसे बढ़ाने पे जोर देना है। हाँ, कुछ शारीरिक कंडीशंस ऐसी है जहाँ पे प्रोटीन नुकसान करता है,
0: वो कौन सी हैं?
1: जैसे किडनी की डिसीजेस होते हैं। उन केसेस में, उन पेशेंट्स के लिए, उन रोगियों के लिए प्रोटीन बहुत ही कंट्रोल या नियमित होना चाहिए। उनके लिए हम एग्जैक्टली उनके हिसाब से वो प्रोटीन कैलकुलेट करते हैं और फिर उनको बताते हैं कि कितना खाना है। बट जब तक ये तकलीफ नहीं है हमारे लिए, जो नॉर्मल पेशेंट्स नॉर्मल है, जिनका नॉर्मल रूटीन चल रहा है, उन सब के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है और वो नुकसान नहीं कर सकता है।
0: बतौर एक आहार विशेषज्ञ आप क्या प्रोवाइड करेंगी एक मरीज को जिनकी एक किडनी में यदि पथरी है, तो कितना प्रोटीन उन्हें लेना चाहिए?
1: ये वापस से एक मिथ है, ये नहीं है सच। क्योंकि पथरी जब होती है तब प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब नहीं बनता है। जब हम किडनी डिसीजेज बोलते हैं तब वैसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे उनकी किडनियाँ काम नहीं कर रही है, जब वो फेलियर में जा रही है, तब ये प्रॉब्लम आता है। पथरी के लिए एक ही ट्रीटमेंट है, जो नई रिसर्चेस बताती है, जो नए पेपर्स आए हैं वो बताते हैं कि सिर्फ पानी पीना है उनको। जब तक वो पानी अच्छे से पी रहे हैं, उनको खाने में कोई चीज़ परहेज नहीं करनी है,
0: प्रोटीन ले सकते हैं?
1: बिल्कुल ले सकते हैं, और ज़रूरी है वो ले, ताकि वो भी बीमार है, भले वो पथरी की वजह से है, लेकिन उन्हें भी रिकवर करना है, तो उनको इंश्योर करना है कि जितना ज़रूरी है वो उतना प्रोटीन खाए। ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना है, लेकिन कम भी नहीं खाना है। कम खाने की वजह से ज़्यादा नुकसान होगा।
0: जी जी
1: उनको सिर्फ पानी पीना है अच्छे से। जब तक वो पानी अच्छे से पी रहे, इनफैक्ट सीड्स वाला भी कुछ बंद करने की ज़रूरत नहीं है। जो हम बोलते हैं
0: एक
1: कि
0: मिथ होता है,
1: बीज
0: बैंगन
1: वाले,
0: बंद कर दीजिए,
1: हाँ बीज
0: टमाटर
1: वाली
0: बंद कर
1: चीज़ें,
0: दीजिए।
1: बीज वाली चीज़ें बंद कर दो, पर वो कंडीशन के हिसाब से चेंज हो जाता है। तो इन पेशेंट्स के लिए हम बोलते हैं कि आप किसी स्पेशलिस्ट को दिखा दो, डायटिशन से मिल लो, वो आपकी कंडीशन पहले चेक करेंगे, फिर बताएंगे कि क्या रिस्ट्रिक्ट करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंडिविजुअलिस्टिक होती है, यानी एक बंदे से दूसरे बंदे वो चेंज हो जाती है।
0: जी, ये व्यक्तिगत क्षमताओं पर भी निर्भर करता है।
1: हाँ, और स्टोन के प्रकार पे भी डिपेंड करता है।
0: जी, बहुत ही अच्छी बात बताई। तो यहाँ गाने की कोई ऐसी गुंजाइश बनती है आपकी पसंद का कोई गाना हो जाए?
1: ये वादा रहा, इस मूवी से ये वादा रहा
0: टाइटल
1: टाइटल
0: सॉन्ग
1: सॉन्ग।
0: सुनना है आपको।
1: जी बिल्कुल,
0: हाँ, ऋषि कपूर ने इसमें काम किया था।
1: राइट।
0: हम सुनवा रहे हैं।

0: डॉक्टर साहब, गीत तो आपने बहुत अच्छा सुना दिया, ये वादा रहा, लेकिन श्रोताओं से एक वादा तो हम लेंगे कि भाई प्रोटीन की कमी मत होने दीजिए अपने शरीर में। डॉक्टर मीनल, ये बताइए कि प्रोटीन कब लिया जाना चाहिए?
1: प्रोटीन हमें पूरे दिन चाहिए, उसे लेने का आइडियली कोई समय नहीं होता है, वो हमें पूरे दिन चाहिए। हम ये बोलते हैं कि प्रोटीन आप पूरे दिन में एक साथ नहीं ले सकते हो,
0: अच्छा।
1: वो डिफिकल्ट हो जाता है, वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम इतना सारा एक साथ खा नहीं सकते, और खाएंगे भी तो इतना सारा शरीर एक साथ वो लोड हो जाता है एक टाइम पे, कि
0: पचा
1: इतना
0: नहीं
1: सारा
0: पाएगा।
1: पचा नहीं पाएगा, और इतना सारा पचा के एब्जॉर्ब भी हो गया तो वो बहुत सारा प्रोटीन एक टाइम पे आ जाता है, और फिर पूरे दिन हमारे पास कुछ नहीं होता है। तो हमेशा प्रोटीन डिवाइडेड डोसेज, मतलब पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके लेना है, एक साथ नहीं लेना है। अगर हम उसे पूरे दिन में हर एक खाने में थोड़ा थोड़ा करके बांट दे तो वो शरीर के लिए भी ज़्यादा अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है, कि हम उतना वो खा पाएंगे आसानी से। अगर हम एक छोटा सा उदाहरण ले, अगर मैं किसी को बोलूं कि एक ही टाइम पे आप आधा लीटर दूध और दो कटोरी दाल और साथ में दो अंडे खा लो, तो वो कितना मुश्किल हो जाएगा।
0: ओहो, हैवी हो जाएगा।
1: बिल्कुल वो नहीं खा पाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है चीज। तो उसकी जगह पे अगर हम पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके ले, जैसे सुबह और शाम हमने एक एक गिलास दूध ले लिया, दोपहर को और रात को खाने के साथ दाल ले ली, बीच में कभी या सुबह नाश्ते में अंडे ले लिए, तो वो पूरे दिन में तोड़ के प्रोटीन खाते हैं, तो वो शक पॉसिबल भी है, और वो तब शरीर ज़्यादा आसानी से यूज़ कर पाएगा, शरीर को पचाने के लिए समय मिल जाता है, और उसे वो स्टोरेज में नहीं डालेगा, वो यूज़ करेगा, जिससे आप चुस्ती फुर्ती महसूस करेंगे। वरना होगा ये कि खा सब रहे हैं सही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारा एक साथ खा रहे हैं और शरीर वो सारी चीज़ें स्टोरेज में डाल देता है, क्योंकि हमें उतनी सारी चीज़ों की एक साथ ज़रूरत नहीं होती, पूरे दिन में थोड़े थोड़े करके होती है।
0: जी, तो इसका मतलब ये है प्रोटीन कब लिया जाना चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा करके विभाजित करके लिया जाना चाहिए।
1: और एक सिर्फ छोटी सी चीज़ ये की जा सकती है कि जब भी हम खाना खाएं, वो सुबह का नाश्ता है, दोपहर का खाना है, शाम का खाना है, या रात का खाना है, हर एक मेजर मील है जो खाने वाला टाइम है, वहाँ पे हम थोड़ा प्रोटीन हमेशा रखें। तो अगर हम उतना सा भी करते हैं तो जितनी हमारी प्रोटीन की ज़रूरत है वो भी मीट हो जाएगी, यानी हम उतना खा लेंगे प्रोटीन, और जब हम तोड़ के खाएंगे तब वो पचने में भी आसान हो जाता है।
0: अच्छा, कुछ लोगों ने अपनी एक डाइट को फिक्स किया होता है अकॉर्डिंग टू हेल्थ, और हेल्थ कॉन्शियस होते हैं कि भाई सुबह तो हम टाइट खा लें और लंच जो है बहुत हल्का या आधा खा लें और शाम को जो मिला खा लें। तो शाम के टाइम प्रोटीन उस दौरान किस तरह से लिया जाना चाहिए?
1: शाम को अगर हम खाना कम खा रहे हैं, ठीक है, हल्का खा रहे हैं, तो भी प्रोटीन होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं कुछ कम करना चाहूँ रात के खाने से, तो वो मेरा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हो जाता है। मतलब अगर हम चावल खा रहे हैं तो चावल ना खाइए, पर अगर मैं स्प्राउट्स शाम को खाती हूँ तो वो अच्छी चीज़ है खाने के लिए, या फिर एक रोटी और थोड़ी सी दाल खा ली। तो प्रोटीन हमेशा रहना चाहिए। आपको कम करना है तो उसे सिंपल कार्ब्स जो बोलते हैं हम, यानी चावल हो गया, या अगर मैं चार रोटी खा रही हूँ तो मैं दो रोटी खाऊंगी, अगर मैं भाकरी खा रही हूँ तो मैं एक या आधी खा लूँगी, वो हम कम करेंगे चलेगा। कुछ मीठा खा रहे हो तो वो अवॉइड कर लो शाम को, चलेगा, लेकिन प्रोटीन कभी नहीं कम करना है।
0: डॉक्टर साहब, प्रोटीन बीमारी में लेना चाहिए या नहीं, या किस तरह की बीमारी में, इसका डिटेल बताइए आप।
1: ज़्यादातर देखा जाए तो जब हम बीमार होते हैं हमें प्रोटीन लेना चाहिए। अगर हम प्रोटीन नहीं लेंगे तो हमें ठीक होने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, दवाई अपना असर नहीं कर पाएगी, और हम जो तंदुरुस्त बनना है वो प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। तो प्रोटीन तो बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया कि कुछ ही कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे प्रोटीन हमें कम करना पड़ता है, और वो टाइम पे जब स्पेशलिस्ट होते हैं वो इंटरवीन करते हैं, वो बताते हैं कि भाई अब प्रोटीन कम कर देना है। पर 90% केसेस देखा जाए तो प्रोटीन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, और ये डेफिनेटली इंश्योर करना है कि अगर हम प्रोटीन अच्छे से खाएं और जितनी ज़रूरत है उतनी खाएं, तो आपका रिकवरी, आपका जो ठीक होने का समय है वो जल्द से जल्द होगा, टाइम कम लगेगा आपको ठीक होने में।
0: लेकिन उन बीमारियों के बारे में भी तो बताइए कि ये पर्टिकुलर बीमारी है तो फिलहाल प्रोटीन कम कर दें और धीरे धीरे उसको बढ़ाएं।
1: जी, बीमारियां अगर देखी जाए तो दो मेजर कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पे प्रोटीन कम करने की ज़रूरत पड़ती है। एक है जब लिवर इन्वॉल्व है। अब इसमें हमेशा प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करना ऐसा नहीं है, सिर्फ एक समय आएगा जब शरीर, क्योंकि वो जो टॉक्सिन्स है वो बाहर नहीं थ्रो कर पाता है, तो अमोनिया लेवल जो है शरीर में बढ़ जाता है। अमोनिया एक ऐसा टॉक्सिक प्रोडक्ट है जो बॉडी फेंक देता है बाहर, और उसमें लिवर की मदद लगती है।

0: तो जब लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है तब वो शरीर में जमा होने लगता है। जब ये अमोनिया लेवल्स बढ़ जाते हैं तब वो एक ही कंडीशन है जहाँ पे हमें प्रोटीन कम करना पड़ता है। ये जितना वो प्रोटीन ज़्यादा खाएंगे उतना अमोनिया का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि प्रोटीन बाहर फेंकने का जो फॉर्म है वो एक तरह से अमोनिया के थ्रू होता है, अमोनिया और यूरिया। तो ये जब बढ़ जाता है शरीर में तब प्रोटीन कम करना पड़ता है, तब इनफैक्ट हम बहुत कम प्रोटीन देते हैं। और दूसरा है, जैसे मैंने बताया, किडनी कंडीशंस, मतलब अक्यूट किडनी डिसीज या क्रॉनिक किडनी डिसीजेज जो होती है। अब इसमें जो क्रॉनिक किडनी डिसीज होती है उसमें एक स्टेज ऐसा होता है जब क्रिएटिन करके एक लेवल होता है शरीर में, वो बढ़ता है,
1: सीरम क्रिएटिनिन,
0: करेक्ट। तो जब ये बढ़ता है तब एक टाइम ऐसा होता है जब वो बढ़ रहा है पर पेशेंट डायलिसिस पे नहीं है, ये एक टाइम पीरियड है जहाँ पे प्रोटीन बहुत रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, पर अगेन बहुत कम नहीं और बहुत ज़्यादा भी नहीं, वो बंदे के शरीर के हिसाब से होता है, उनके वेट के हिसाब से होता है, तो वो कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये कंडीशंस ऐसी है जहाँ पे प्रोटीन कम रखना पड़ता है या मॉडरेट रखना पड़ता है, और उस पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि वो ना बढ़े ना कम हो।
1: अच्छा, प्रोटीन के फॉर्म चेंज कर सकते हैं, जैसे सॉलिडिटी से लेकर उसको लिक्विफाइड ढंग से ले लिया जाए?
0: बिल्कुल बिल्कुल, प्रोटीन का बेस्ट बेनिफिट ये है कि हम किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। अगर आपकी ऐसी कोई कंडीशन है, अगर हम ऐसे बीमार है कि हम खाना ज़्यादा नहीं खा पाते, तो उसको लिक्विड्स के फॉर्म में भी लिया जा सकता है,
1: जैसे दाल पिला दी जाए सूप के माध्यम से।
0: बिल्कुल, दाल पिला दी जाए सूप के माध्यम से, आप सूप में पनीर क्रश करके डाल सकते हो, आप दूध मिल्क शेक्स लेते हैं वो आपका प्रोटीन हो जाता है, आप छाछ या लस्सी लेते हैं वो आपका प्रोटीन हो जाता है, आप उसमें थोड़े और ड्राई फ्रूट्स मिला दीजिए तो वो और डेंस हो जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं जिससे प्रोटीन और डेंस बनाया जा सकता है।
1: जी जी जी भैया, बहुत सारे तरीके आपने बताए, लेकिन क्या होता है कि जब कार्यक्रम में बातचीत चलती है तो तरीकों में थोड़ा सा तालमेल होना चाहिए, थोड़ी बातचीत उसके बाद फिर संगीत। तो यहाँ मेरा इशारा समझ गई हैं डॉक्टर मीनल, और आप कौन सा गाना सुनवा रही हैं?
0: अब हम सुनते हैं जूली मूवी का दिल क्या करे गाना,
1: जब किसी को किसी से प्यार हो जाए। बहुत ही अच्छी फिल्म थी, और गाना आपको सुनवाते हैं।

0: डॉक्टर साहब, गीत आपने बहुत ही रोमांटिक सुनवाया और अपने दौर की बहुत ही रोमानी फिल्म रही थी जूली। आज के कार्यक्रम का जो विषय है, सब्जेक्ट है दोस्तों, वो है प्रोटीन और विटामिन का महत्व। और इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर मीनल शाह के साथ, जो कि सुप्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ। तो हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर मीनल कि विटामिन की बात अब की जाए, प्रोटीन की बात बहुत हो गई है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं?
1: विटामिन अगर हम देखे जाए तो दो मेजर प्रकार है, दो बड़े क्लासिफिकेशंस है। एक विटामिन वो जो वाटर सोल्युबल विटामिन्स होता है,
0: मतलब जो पानी में घुल जाते हैं,
1: जिसको एब्जॉर्ब करने के लिए, जिसको शरीर के लिए ज़रूरी है कि वो वाटर के माध्यम से आए, तो वो वाटर सोल्युबल विटामिन्स हो जाते हैं। जो दूसरे प्रकार के विटामिन्स है वो है फैट सोल्युबल विटामिन्स। तो ये विटामिन्स के लिए ज़रूरी है कि हम थोड़े मात्रा में फैट्स रखें खाने में। तो जो फैट सोल्युबल विटामिन्स है, ठीक है, वो ऐसे विटामिन्स है जो शरीर में स्टोर हो सकते हैं, बॉडी उसे जमा करके रखा जा सकता है क्योंकि वो फैट्स के फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो इसमें बेसिकली आ जाता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, ये मेरे फैट सोल्युबल विटामिन्स हो जाते हैं। जो वाटर सोल्युबल विटामिन्स है वो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स है, ये शरीर में स्टोर नहीं किए जा सकते क्योंकि ये वाटर सोल्युबल है, ये पानी की मात्रा से अगर हम कभी ज़्यादा लेते हैं तो बॉडी उसे फेंक देगा बाहर।
0: अच्छा।
1: तो ये हमें रेगुलरली लेना ज़रूरी बन जाता है क्योंकि फैट सोल्युबल शरीर में बैकअप हो सकता है लेकिन वाटर सोल्युबल का कोई बैकअप नहीं है, ये हमें रोज़ के रोज़ लेना है।
0: ये तो अच्छी बात बताई, अपने प्रकार भी बताए। कुल मिला के ये बात हुई कि जिस तरह से प्रोटीन की आवश्यकता शरीर को होती है उतनी ही विटामिन की भी होती है। लेकिन कई बार कुछ लोग बड़े नेचुरल ढंग से प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से भी बात करते हैं कि भाई हम तो धूप में खड़े हो जाएंगे सुबह सुबह तो विटामिन डी मिल जाएगा, तो ये कितना सच है कि उतना एब्जॉर्प्शन हो पाता है या खाना भी ज़रूरी है?
1: एब्जॉर्प्शन हो सकता है विटामिन डी का, एक्चुअली अगर देखा जाए तो वो सही है, हमें सनलाइट चाहिए विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन के लिए क्योंकि वो एक ऐसा न्यूट्रिएंट है, ऐसा विटामिन है जो दो तरीके से काम करता है। वो खाने से तो मिलता है लेकिन जब सनलाइट होती है तब उसका जो फॉर्मेशन है वो बदल जाता है। तो सनलाइट बहुत ज़रूरी है विटामिन डी के लिए और इसके लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ा एक्सपोजर रखें सनलाइट में, हम थोड़ा मॉर्निंग वॉक करें या थोड़ा टहल के आए, जब अच्छी धूप हो तब टहल के आए। जो हम काम करते हैं तब हम काम करने की स्थिति में होते हैं तो हम बहुत इंटेंसिव वर्क में रहते हैं पैटर्न में, एक बहुत हल्का सा मॉर्निंग वॉक, एक बहुत हल्का सा स्ट्रोल जो शांति से करे, ये ज़रूरी होता है विटामिन डी के लिए। तो विटामिन डी के लिए सनलाइट ज़रूरी है।
0: और भी जो सोर्सेस हैं विटामिन प्राप्त करने के स्रोत हैं वो क्या क्या हैं?
1: अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग विटामिन्स और अलग अलग सोर्सेस है, और ऐसे ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ से एक ही विटामिन आएगा। हमारे काफ़ी सारे खाने की चीज़ें ऐसी है,
0: जैसे
1: फल हो गए जिसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक से ज़्यादा विटामिन्स होते हैं, ठीक है। आपका दूध हो गया, उसमें भी प्रोटीन्स के अलावा कैल्शियम है, भले वो मिनरल्स है, विटामिन्स नहीं है, बट वो उतने ही ज़रूरी है जितना आपका प्रोटीन हो जाता है। खाने के बारे में ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एक चीज़ कभी काम नहीं करेगी। अगर मैं सिर्फ प्रोटीन खा रही हूँ तो सिर्फ प्रोटीन कभी काम नहीं करेगा, अगर मैं सिर्फ विटामिन्स खा रही हूँ तो वो काम नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ होनी चाहिए, जब तक वो कॉम्बिनेशन नहीं है तब तक आपका प्रोटीन खाने का मतलब नहीं है। इसका भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा जाए तो अगर आपका बी कॉम्प्लेक्स विटामिन मिसिंग है खाने में से, अगर हम नहीं ले रहे वो अच्छे से रोज से, तो आपका प्रोटीन किसी काम का नहीं है क्योंकि शरीर उसको पूरी तरह से फॉर्म नहीं कर पाता है। वो जो रीज़न है प्रोटीन खाने का वो रीज़न नहीं हो पाता है कंप्लीट क्योंकि हमारे पास वो विटामिन ही नहीं है। तो ये सारे छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो अपनी खुद के फॉर्म में इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और सोर्सेज देखा जाए तो सोर्सेज भी ऐसे ही बने हैं, नेचुरली प्रकृति ने अपना काम बहुत अच्छे से करा है। तो एक अगर फल देखा जाए, एक फल में एक से ज़्यादा विटामिन्स होते हैं, जैसे अगर हम पीले या लाल कलर के फल देखें तो उसमें विटामिन ए भी होता है, विटामिन सी भी होता है, वो कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट होता है।
0: जैसे ऑरेंज है,
1: जैसे पपाया है, इसमें मेरा विटामिन ए भी आ जाता है, विटामिन सी भी आ जाता है। मेरा नट्स है तो उसमें विटामिन ई भी आ जाता है। और अगर मैं सब्जियाँ लूँ तो जितनी कलरफुल सब्जियाँ ले, तो अगर मेरी वो पर्पल कैबेज

0: भी हो सकती है, वो मेरी हरी कैबेज भी हो सकती है, टमाटर भी हो सकते हैं, कोई भी फॉर्म ले लो। अलग अलग कलर्स, जितने अलग अलग कलर्स लेंगे उतने अलग अलग विटामिन्स मिलेंगे हमें। जितनी ज़्यादा रंग हो गया आपके खाने में, जितने ज़्यादा रंग हो गया आपके प्लेट पे, उतने ज़्यादा विटामिन्स हमें मिल रहे हैं। वो एक बहुत आसान तरीका है ये आइडेंटिफाई करने का, ये ना पता करने का कि हम कितने अलग अलग विटामिन्स ले रहे हैं, क्योंकि विटामिन्स की जानकारी सबको नहीं होती है, वो उनको ही होगी जो उनके बारे में पढ़ते हैं। तो एक आम आदमी के लिए, एक पेशेंट के लिए वो जरूरी, बहुत सिंपल हिंट हो जाता है कि कलर्स रखिए, कि हम जितने अलग अलग रंगों के फ्रूट्स, जितने अलग अलग रंगों के वेजिटेबल्स खाने में रखेंगे, उतने अलग अलग विटामिन्स आप ग्रहण कर रहे
1: हैं। बराबर है। तो भाई देखिए, ये तमाम रंगों की बातें हो रही हैं, तो हमारे इस सेहतनामा कार्यक्रम का भी रंग है कि बातचीत होती है, फिर म्यूजिक होता है, और उसी को बैलेंस करने के लिए आपकी पसंद का जो अगला गीत है वो कौन सा है?
0: अगला गीत होगा है अपना दिल तो आवारा, 16 साल मूवी से
1: हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

डॉक्टर साहब, गीत वाकई में आपने बहुत अच्छा सुनवा दिया और हमारे सुनने वालों को भी पसंद आया होगा, उम्मीद है। हमारी बातचीत चल रही थी इस गीत के पहले विटामिन के सोर्सेस के बारे में, कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो उसको कंटिन्यू करते हुए हम एक प्रश्न आपको बताते हैं कि भाई ये भी एक जिज्ञासा है, विटामिन विशेष या पर्टिकुलर विटामिन की कमी जब हो जाती है तो

0: शरीर में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, इस बारे में भी सोर्सेस के बाद आप बताइए।
1: जो विटामिन्स है जैसे मैंने क्लासिफाई किया वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल, तो अगर सोर्सेज देखा जाए तो एक बहुत सिंपल चीज़ है कि अगर विटामिन ए है तो वो मेरी आँखों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जब मेरी आँखें ड्राई हो रही है या कमज़ोर पड़ रही है, अगर विटामिन ए बहुत मात्रा में कम पड़ जाए तो उससे ब्लाइंडनेस या फिर नाइट ब्लाइंडनेस यानी
0: या
1: जिस
0: धुंधलापन।
1: धुंधलापन वो प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, ये एक साइन है, ये एक सिम्टम है कि विटामिन्स कम है। और जो सोर्सेज अगर देखा जाए विटामिन ए के, जैसे वो फैट सोलबल सोर्सेस है, तो वो शरीर में स्टोर करके रखे जा सकते हैं। तो इसमें मेरे रेड येलो कलर फ्रूट्स आ जाते हैं, सब्जी आ जाती है। जितनी मेरी ब्राइट कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, जैसे पपाया हो गया, मैंगो हो गया, पाइनएप्पल हो गया, फिर ऑरेंजेस हो गए, इन सब में अच्छे खासे विटामिन्स होते हैं विटामिन ए के फॉर्म में।
0: जी
1: दूसरा विटामिन जो बहुत ज़रूरी हो जाता है वो है विटामिन ई। अब ये भी एक फैट सोलबल विटामिन है जो शरीर स्टोर कर सकता है,
0: इसका
1: और
0: क्या काम होता है?
1: ये ज़रूरी है आपकी स्किन के लिए। जब स्किन ड्राई होने लगती है या फिर बहुत, और ये ड्राइनेस सिर्फ ऐसा नहीं कि सीज़न है ठंडी का और स्किन ड्राई हो गई है, ये ड्राइनेस इतना ज़्यादा बढ़ सकता है कि वो ड्राई स्किन की वजह से शरीर में इन्फेक्शंस आ सकते हैं, क्योंकि इसकी त्वचा इतनी टूट जाती है कि वो इन्फेक्शन इन्वाइट करने के लिए एक बेस्ट चीज़ बन जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ये सिर्फ अच्छे दिखने वाली ड्राई स्किन की बात नहीं हो रही है, ये तब होता है जब बहुत कम विटामिन्स होते हैं शरीर में और उसकी वजह से हम बीमार पड़ने लगते हैं। तो विटामिन ई सिर्फ त्वचा के लिए, इसके लिए ज़रूरी नहीं होता है कि वो हम अच्छे दिखे, बट वो इसके लिए ताकि हम सेहतमंद रहे।
0: जी
1: तो विटामिन ई बेसिकली आपके नट्स में होता है ज़्यादातर, तो बादाम हो गया, पीनट्स हो गया, सींग जो हम खाते हैं, ये नट्स जो है वो अच्छे खासे विटामिन के सोर्सेस है। इसके अलावा आप उसे फिश में भी पा सकते हो, तो जो मांसाहार खाते हैं उनके लिए मच्छी अच्छा सोर्स है विटामिन ई का, और नट्स है जो विटामिन ई के लिए वेजिटेरियन सोर्स है यानी शाकाहारी सोर्सेस है,
0: जी
1: ये मेजर सोर्सेस है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे हैं बट ये तो ज़्यादा ज़रूरी है। और विटामिन सी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो आपका इन्फेक्शन फाइटिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, वो आपका रोग प्रतिकारक शक्ति इम्प्रूव करता है।
0: मतलब शरीर में किसी भी प्रकार का जो संक्रमण आने वाला होता है उससे हमारी सुरक्षा करता है।
1: जी, और जब हम बीमार होते हैं तब वो वापस वही काम करता है, तब वो जो बीमारी है जो कीटाणु है उसे तोड़ने में, उसे फेंकने में मदद करता है।
0: जी
1: तो विटामिन सी आपके खटास वाली चीज़ों में रहती है जो सिट्रस फ्रूट्स बोलते हैं, तो इसमें मेरा ऑरेंज और मैंगो वापस आ जाता है क्योंकि वो सिट्रस भी है, पपाया टू एन एक्सटेंट, कीवी आ जाता है, तो जितने भी खटास वाले फ्रूट्स
0: नींबू
1: हैं,
0: है।
1: नींबू, मौसम्बी, पेरू जो सीजन में पूरे 12 महीने मिलता है, गुआवा जिसे हम बोलते हैं, ये सारा फ्रूट्स है जो विटामिन सी के लिए बहुत अच्छा है। सब्जियों में भी एक परसेंटेज ऑफ विटामिन सी होता है। अगर हम बेस्ट एग्जांपल ले तो ड्रमस्टिक्स जो सींग होती है उसमें भी विटामिन सी का अच्छा खासा परसेंटेज होता है। इसके अलावा एक सिंपलेस्ट चीज़ देखी जाए तो मिर्ची,
0: ओहो
1: मिर्ची में अच्छा खासा विटामिन सी
0: हरी
1: होता है,
0: मिर्च।
1: हरी मिर्च में। तो ये चीज़ें हैं हमारे पास, सिर्फ हम उसका इस तरह से इस्तेमाल नहीं करें कि वो विटामिन सी के लिए हेल्प करे।
0: जी। और देखिए आहार जो आपने बताया है कि पर्टिकुलर फलों को खाने से, सब्जी के खाने से ये पूर्तियां होती है, लेकिन विटामिन की जो मात्रा है कई बार ज्यादा भी हो जाती है, ये भी आपके मरीजों में आपने देखा होगा।
1: जी, ये होता है कुछ मरीजों में, बट ये तब होता है जब विटामिन्स का उन्होंने कोई एक्स्ट्रा या ना दवाई ली हो उसे ठीक करने के लिए।
0: अच्छा
1: क्योंकि अगर हम बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स देखे जाए तो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स वाटर सोल्यूबल होते हैं, जैसे मैंने बताया वो शरीर स्टोर नहीं कर सकता है, तो टॉक्सिसिटी का तो सवाल ही नहीं उठता है। और रही बात फैट सोल्यूबल विटामिन्स की, तो वो तब बढ़ जाता है जब हम कोई करेक्टिव डोसेज ले रहे हैं या हम कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं। जैसे कुछ हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं जो हेल्थ कॉन्शियस होने के रीज़न से या कारण से ज़रूरत से ज़्यादा फ्रूट्स या विटामिन्स खाने की कोशिश करते हैं, वो मल्टीविटामिन्स भी ले सकते हैं या फिर फ्रूट्स भी भरपूर मात्रा में खा रहे हैं, या फिर वैसी कोई चीज़ नट्स हो गया जिसे भी वो समझते हैं कि वो सेहत के लिए अच्छी है, पर जब आप ज़रूरत से ज़्यादा खाओगे तब वो नुकसान करेगा। तो वो टॉक्सिसिटी पाई गई है बहुत कम केसेस में, लेकिन डेफिनेटली एक प्रॉब्लम है। इसके लिए हम बोलते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ कभी नहीं खानी चाहिए, हर चीज़ रोटेशन पर रखो, हर फ्रूट्स हर सब्ज़ी रोटेशन पे रखो, जितना आप उसे अलग अलग चीजें खाएंगे अलग अलग समय पे उनके अलग अलग बेनिफिट्स मिलेंगे।
0: तो बातचीत का

0: जो तालमेल है वो यहाँ थोड़ा सा विराम देंगे और संगीत को यहाँ पर उभारेंगे आपकी पसंद के गाने के जरिए।
1: इश्क बुलावा हंसी तो फंसी पिक्चर से।

0: विटामिन की बात चल रही थी, एक आपने कहा था कि विटामिन की जो अधिकतम मात्रा हो जाती है तो वो नुकसान भी करती है, और वैसे कहा जाता है ना कि अति किसी भी चीज़ की हो वो नुकसान ही करती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात आती है, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट, आप संतुलित आहार लीजिए, स्वस्थ रहेंगे।
1: जी, संतुलित आहार जो होता है, बैलेंस डाइट जिसे हम बोलते हैं, बेसिकली अगर हम आम आदमी के लिए देखा जाए तो एक पांच चीजों से बनता है। सिर्फ ये पांच चीज अगर आपके खाने में है तो आपका आहार संतुलित है, ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म में कही जा सकती है। वो पांच चीजें क्या है? पहला है आपका अनाज, तो आप चावल ले लीजिए या गेहूँ ले लीजिए या ज्वारी बाजरी ले लीजिए, आप जो खाते हो वो खाइए, पर अनाज होना चाहिए खाने में जब आप खाना खाते हो, ठीक है। कड़धान्य, जैसे मैंने बताया वो भी इम्पोर्टेंट प्रोटीन हो जाता है, तो कठोर हो गया, दाल हो गई, स्प्राउट्स हो गए, ये आपका सेकेंड इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तीसरा है आपकी सब्जियाँ,
0: कोई भी सब्जी हो,
1: कोई भी सब्जी हो, और वो सब्जी के फॉर्म में भी हो सकती है और सलाद के फॉर्म में भी हो सकती है।
0: क्या बात है,
1: तो सब्जियां होनी चाहिए, आप जैसे मर्जी आए वो खा लो, बट ये जरूरी है, इसमें विटामिन भी है और आपका फाइबर भी है जो आपके खाने के लिए बहुत जरूरी है। तीसरा हो गया आपका प्रोटीन सोर्स जो पल्सेस नहीं है, यानी आपका दही, छाछ, जो मांसाहार खाते हैं।

0: के लिए चिकन, ये सारी चीज़ें मेरा चौथा कंपोनेंट है. और आ जाता है मेरा फैट, यानी ऑयल या चर्बी जो होती है. नाउ फैट्स जो है वो बेसिकली इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमारे विटामिन्स बिना फैट के किसी काम के नहीं है. और फैट्स बुरे नहीं हैं, ये हमें ताकत भी देते हैं. तो जब हम सही टाइप के फैट्स चूज करें तब वो नुकसान नहीं करेंगे, तब वो फ़ायदा करेगा. तो ये जब कंपोनेंट्स है, मैं ये सारा सिंक में लेती हूँ. और इसके साथ एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो है पानी, जिसे हम ज़्यादातर ओवरलुक कर लेते हैं, जिसे हम ज़्यादातर दुर्लक्ष करते हैं, जिसे हम ज़्यादातर ध्यान नहीं देते हैं. तो पानी एक बहुत ज़रूरी चीज़ बन जाती है, जो मेरे डाइट का एक बहुत अहम हिस्सा है. तो जब तक ये चीज़ें, पांचों चीज़ें बैलेंस में रह रही है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर, तब तक हम गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, हम परफेक्टली डाइट फॉलो कर रहे हैं. फिर आप उसमें रोटी सब्जी ले लो, या फिर आप उसमें भाकरी ले लो, या आजकल मॉडर्न ज़माना है, पास्ताज एंड पिज़्ज़ाज का ज़माना है, तो वो पास्ताज एंड पिज़्ज़ाज भी बहुत संतुलित बनाए जा सकते हैं. सिर्फ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम आग बंद करके ये फॉलो ना करें जो इंटरनेट पे पढ़ते हैं, पर हम खुद की समझ लगाए इस चीज़ के पीछे
1: कितनी हमें आवश्यकता है.
0: बिल्कुल.
1: अच्छा, एक यहाँ पर बैलेंस डाइट की बात चल रही, तो एक कॉमन सी बात है कि हम लंच में जब लेते हैं तो सलाद पहले खाना चाहिए और पानी बहुत देर से पीना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या?
0: एक तरीके से हाँ, सलाद पहले इसलिए खाना है वो करेक्ट है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सलाद हम जब पहले खाते हैं तब हम फाइबर इंश्योर करते हैं, जो हमारे खाने के लिए बहुत ज़रूरी है. और फिर हमें जितनी भूख होगी हम उतनी ही खाएंगे, तो ये हमें ज़्यादा खाने से भी रोकता है. और ये ज़्यादा ज़रूरी उन पेशेंट्स के लिए हो जाता है, उन रोगियों के लिए हो जाता है जिनको शुगर की तकलीफ है, डायबिटीज़, उनके लिए ये चीज़ बहुत काम करती है. उनके लिए भी ये चीज़ बहुत काम की है जिनको वज़न कम करना है
1: जी,
0: तो उनके लिए ये फाइबर बहुत ज़रूरी हो जाता है, और खाने से पहले इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, इसकी ज़रूरी वो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है. और पानी खाने के बाद इसके लिए लेना बोलते हैं कि पानी पी के आप पेट भर लोगे तो कुछ नहीं खाओगे. और प्लस वो एक टू एक्सटेंड, एक तरीके से वो आपका विटामिन्स या मिनरल्स या खाना जो आपने खाया है उसको डाइल्यूट कर देता है. तो जो एसिड्स है स्टमक के, वो उनको डिफिकल्ट बना देता है कि वो चीज़ें पचा दे, क्योंकि वो डाइल्यूट हो गई है, डिजॉल्व हो गई है. तो जनरली हम बोलते हैं खाने के साथ ज़्यादा पानी ना पिए, मना नहीं है, लेकिन हो सके तो खाने के बाद अच्छे से पानी पी लीजिए या खाने से पहले ले लीजिए. तो वो पहले वापस वही काम करेगा जो मेरा सलाद करता है, मेरा पेट भर देगा, तो मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगी, लेकिन खाने के दौरान थोड़ा कम रखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा.
1: डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी बात बताई आपने कि किस तरह से संतुलित आहार को डिफाइन किया आपने, सरल भाषा में परिभाषित किया, और बहुत सारे भ्रम भी तोड़े कि ऐसा नहीं है. अच्छा, अब हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि कोई व्यक्ति अगर अपनी डाइट ले रहा है पर्टिकुलर बीमारी के दौरान, तो और जैसे डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, हृदय रोगी हैं, किडनी के रोगी हैं, पर्टिकुलर जो इस तरह के रोगी हैं, वो अपना आहार लेते हैं तो उसमें प्रोटीन और विटामिन की पूर्ति किस तरह से की जाए, वो चिकित्सक की सलाह से की जाए या स्वयं ही अपने आहार से ली जाए?
0: हम स्वयं ये कर सकते हैं जब तक हम बीमार नहीं हैं. अगर आप बीमार हो तो आपको चिकित्सक की ज़रूरत है, पर अगर आप ठीक हो,
1: जैसे बीपी की गोलियाँ चल रही है,
0: तो मिलना ज़रूरी है, एक बार मिलना ज़रूरी है. आपको रेगुलर विजिट्स या कंसल्टेशंस की ज़रूरत नहीं रहेगी, लेकिन एक बार मिलके समझना ज़रूरी है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है और क्या नुकसान कर सकता है. काफ़ी बार हम चीज़ें खाते हैं ये सोच के कि ये हमें फ़ायदा कर रहा है, या ये चीज़ें हम अवॉइड कर दे रहे हैं. जैसे आपने मेरे को पहले पूछा था कि दूध हम मना कर देते हैं क्योंकि दूध में चर्बी है, ये कंसिडर करके, बट अगर वो गाय का दूध है तो उसमें इतनी चर्बी नहीं है. और
1: या फिर वो बिना मलाई का दूध,
0: एग्जैक्टली, अगर वो बिना मलाई का दूध है तो उसमें इतनी चर्बी नहीं है. तो हर चीज़ के लेने का तरीका होता है, वो एक बार समझना बहुत ज़रूरी है. एक बार आप वो समझ ले, फिर आप खुद से चीज़ें कर सकते हो, लेकिन क्या सही है क्या गलत ये पहले जानना, और वो भी किसी चिकित्सक से या किसी डायटिशियन से जानना ज़रूरी है, क्योंकि वो उन्हें पता है, वो क्वालिफाइड पीपल है. वो इंटरनेट से पढ़ी हुई जानकारी या फिर सुनी सुनाई बातें नहीं बोलते हैं, उन्हें उस चीज़ का नॉलेज है, उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन रहती है.
1: और ये भी नहीं करना चाहिए कि उस व्यक्ति को ये सूट करता है तो मुझे भी करेगा.
0: बिल्कुल,
1: व्यक्ति व्यक्ति पर डिपेंड करता है.
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति अलग होता है, उनका शरीर अलग होता है,
1: उसकी प्रकृति अलग होती है, उसकी
0: प्रकृति अलग होती है, और एज के हिसाब से भी चीज़ें चेंज हो जाती है. आपकी एज और दूसरे बंदे की एज में भी अगर समानता भी है तो मेडिकल कंडीशंस अलग हो जाती है, उनके काम करने का तरीका, उनके रहने सहने का तरीका, हर एक इंसान अलग है, उनकी ज़रूरतें

0: अलग है, वो एक चीज़ पे नहीं मापी जा सकती। और अगर सिंपल चीज़ें देखी जाए कि हम क्या करें ये चीज़ें इंश्योर करने के लिए, तो दो तीन सिंपल रूल्स अगर हम फॉलो कर ले तो वो बहुत मदद करेगा। तो सिंपल रूल्स में ये रख सकते हैं कि जैसे विटामिन्स अगर हमें चाहिए कि हम रोज़ खाएं, तो एक नियम ये बना लीजिए कि रोज़ खाने में सलाद खाएं और अलग अलग कलर्स के सब्जियों वाला सलाद खाएं, तो हमारे अलग अलग विटामिन्स आ जाएंगे। रोज़ दो फल खाएं, सीजन्स के हिसाब से फल चेंज करें, क्योंकि हर फल का अपना इम्पोर्टेंस होता
1: जैसे
0: है।
1: गर्मी का मौसम है तो कौन से फल प्रेफर करने चाहिए?
0: आम गर्मी के मौसम में सबसे अच्छा आम रहेगा, और आम अच्छा है जब हम कंट्रोल में खाएं। कुछ ही ऐसे रोगी होते हैं जिनके लिए वो नुकसान करता है, तो जैसे मैंने बताया रोगियों के लिए तो चिकित्सक या डाइटिशियन की सलाह लगेगी ही,
1: जी
0: बट हमारे लिए वो बहुत अच्छा है, उसमें अच्छे खासे विटामिन्स है। तो वाटरमेलन भी अच्छा है गर्मी में, अभी वाटरमेलन की भी सीज़न है तो वो भी खा सकते हो। तो जैसे जैसे आपकी सीज़न चेंज होगी वैसे वैसे आपके फल चेंज होने चाहिए, और जितना हो सके उतना सीज़न को फॉलो करिए। ऐसे नहीं कि कोई चीज़ प्रिजर्व्ड है और मेरे को आम अगर गर्मी की सीज़न छोड़ के अगर ठंडी की सीज़न में भी मिलने लगे तो मैं आम चूज़ करूँगी, तो वैसा नहीं करना है। उसे जितना हो सके फ्रेश लाइए, हमें प्रोसेस्ड या प्रिजर्व फूड नहीं चाहिए। और तीसरा ये किया जा सकता है कि प्रोटीन इंश्योर करने के लिए हर एक मील में, जब भी हम खाना खाएं, बी इट ब्रेकफास्ट या दोपहर का खाना या शाम का खाना या रात का खाना, तो उसमें प्रोटीन का एक सोर्स, एक खाने की ऐसी चीज़ तो कम से कम रखनी है। एक से ज़्यादा हो सकती है पर एक से कम नहीं करना है। जब हम थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में खाएंगे तब हमारी ज़रूरत पूरी होगी, तब तक हमारी ज़रूरत नहीं पूरी होने वाली है।
1: वक्त हो चला है कि कार्यक्रम को समापन की ओर मोड़ दिया जाए, कि चलते चलते समापन के पहले अपनी ओर से आप हमारे सुनने वालों को एक क्या मैसेज देना चाहेंगी?
0: छोटे से ड्यूरेशन में ये सुना कि प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट है, विटामिन्स इंपॉर्टेंट है, सोर्सेज इंपॉर्टेंट है, और एक छोटा सा हल्का सा पॉइंट कवर किया जहाँ पे बैलेंस डाइट की ज़रूरत, और बैलेंस डाइट का पहले तो समझा कि क्या होता है। अब इन सब चीज़ों में एक चीज़ रह जाती है, वो है खाने का समय। अगर हम ये चीज़ें खाने वाले हैं तो कब खाने वाले, ये भी ज़रूरी है। आप खाना अपने हिसाब से चेंज कर सकते, आप काम कर रहे हो, आप घर पे हो, हो हाउसवाइफ हो या फिर आप ऑफिस में काम करते हो, तो आप वो चूज़ कर सकते हो कब खाना खाना है। सिर्फ एक ग्राउंड रूल ये रखना है, यानी एक नियम रखना है रोज़ का, कि 4 घंटे से ज़्यादा खाली पेट नहीं रहेंगे। तो 4 घंटे के बाद हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप कुछ खा रहे हो, क्योंकि उतना देर खाली पेट रहना नुकसान कर सकता है। और रही बात, कुछ ये बोलते हैं कि 2-2 घंटे पे लेना चाहिए, तो 2-2 घंटे पे खाने की हमें ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन 2-2 घंटे पे लिपिया जा सकता है, यानी लिक्विड्स हाइड्रेशन मेंटेन किया जा सकता है। स्पेशली अभी गर्मी की सीज़न है, हम पानी को बहुत इंपॉर्टेंस देंगे, तो वो प्लेन पानी भी हो सकता है या फिर कोई लिक्विड भी हो सकता है, जैसे नींबू पानी हो गया या छाछ हो गया, नारियल पानी हो गया या फ्रूट जूसेस हो गए। तो अलग अलग लिक्विड्स हर 2 घंटे पे नियमित तौर से लें, और खाना 4-4 घंटे पे अपने समय से, भले वो बहुत ज़्यादा ना हो, बट एक हल्का सा छोटा सा स्नैक भी हो गया, पर 4 घंटे के बाद हमेशा खाना है, तो वो आपका सेहत बनाए रखेगा। और जो हमें चीज़ें, विटामिन्स, प्रोटीन, मिनरल्स, जितनी भी चीज़ें चाहिए, वो हम थोड़ी थोड़ी करके पूरे दिन में लेते रहेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि पूरे दिन कुछ नहीं खाया और दिन के एंड में पूरे दिन की रिक्वायरमेंट एक ही साथ ख़त्म कर ली, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है।
1: तो डॉक्टर साहब, बहुत सारी जानकारी आपने दी, प्रोटीन और विटामिन्स का महत्व तो बताया। आज के इस कार्यक्रम में हम सुनने वालों की ओर से, विविध भारती की ओर से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
0: मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए और ये अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो दोस्तों, ये थी मुलाकात सुप्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ डॉक्टर मीनल शाह से। आज का विषय था प्रोग्राम का, प्रोटीन और विटामिन्स का महत्व। आज के इस कार्यक्रम में हमारे तकनीकी सहयोगी रहे महेश वर्मा, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। और आज के इस प्रोग्राम से अब दीजिए इजाजत अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को। नमस्कार।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। मोहब्बत की ज़बान नहीं होती, वो सिर्फ एहसास से बयां हो तो बहुत खूबसूरत बन जाती है। जिंदगी को संवारती है मोहब्बत। एक तरफा मोहब्बतों की इतनी कहानियां हैं दुनिया में जितने आसमान में तारे। ऐसी मोहब्बतों का रास्ता ऊबड़ खाबड़ होता है और मंजिल किसी छाया की तरह दूर सरकती चली जाती है।

0: नहीं सकता।
1: रास्तों के ऊबड़ खाबड़ होने का मतलब ये नहीं है कि आप उन रास्तों से हट जाएं। एक तरफा मोहब्बत में पड़ने वाले ही जानते हैं कितनी खरोचों और कितने जख्मों से भरा होता है मोहब्बत का रास्ता। संग दिल दुनिया सवाल उठाती है, तंज करती है, रास्ते में मुश्किलें खड़ी करती है, पर लोग हटते नहीं अपने रास्तों से। वो तो बस तमाम उदासियों और तमाम मासूमों के बावजूद बढ़ते चले जाते हैं। उनकी मुस्कानों के पीछे होती हैं तरह तरह की रुसवाइयां।

जब निगाह में तुम ही थे, जब दुनिया में हमारे लिए सिर्फ तुम ही थे, जब हमने तुम्हारे सिवा और तुम्हारे पार कुछ सोचा ही नहीं, तो अब भी नहीं सोचेंगे। आज भले निगाहों में धुंध छाई हो और सूझता न हो कुछ, पर हमारी दुनिया तो तुमसे ही रोशन रही है, आगे भी रहेगी रोशन। कैसे मिटाया जा सकता है दिल पर लिखा तुम्हारा सुनहरा नाम।

गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद जब हम आएंगे आपके लिए लाएंगे ये नगमा। हम अभी आए।

यूं भी होता है कि अनायास जुबां पर तुम्हारा नाम आ जाता है, यूं भी होता है कि कोई भूली बिसरी याद तैर आती है मन के आसमान पर। अचानक ही आई तुम्हारी ये याद किसी जुगनू की चमक जैसी होती है। हमने कहा ना कि दिल पर लिखा तुम्हारा नाम मिटाया नहीं जा सकता, दिल तो बस तुम्हें पुकारता है हर पल हर घड़ी।

साथ के पल बीत जाते हैं जल्दी। कहते हैं कि खुशियां तेजी से चली जाती हैं, एक तरफा इश्क की राहों पर बहार आती ही नहीं, आए भी तो थोड़ी देर को आती है और फिर चली जाती है। ऐसा ही था वो दौर जब अचानक खिलने लगे थे फूल, जब अचानक गुनगुनाने लगा था वो, और जब अचानक सब कुछ खुशनुमा सा हो गया था। यूं जैसे बहार आई और बस ठहर गई, पर हर बहार को एक दिन बीत जाना होता है।

आसमान पर चमक रहे हैं तारे। तारों की झिलमिल रोशनी अच्छी लगती है, लेकिन ये तारे मिलकर अचानक बनाते हैं एक चेहरा। आसमान पर चमकता वो चेहरा दिल में बेचैनियां पैदा करता है और फिर कुछ नहीं सोचता। ऐसे खामोश, ऐसे उदास दौर में दिल कुछ कहना चाहता है तुमसे, पर कहता नहीं है। कुछ बातें कहीं नहीं जाती, वो बिना कहे बस पहुंचा दी जाती हैं तुम तक।

0: फिल्म की नाम
1: मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता, मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं
0: सकता। फिल्म बचपन।

0: आज का चाय गीत इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को, नमस्कार।
1: मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार।

FM 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, हम आकाशवाणी खंडवा से बोल रहे हैं। आपको सुनवाते हैं पारंपरिक निमाड़ी लोकगीत। पहली कुछ रचनाएं स्नेहलता भटोरे और साथियों के स्वर में, और उसके बाद दो लोक रचनाएं ताराचंद यादव और साथियों की गाई हुई। शुरुआत इस लोक रचना से।

आकाशवाणी खंडवा से श्रोताओं, आप सुन रहे हैं पारंपरिक निमाड़ी लोकगीत। अभी तक आप सुन रहे थे स्नेहलता भटोरे और साथियों से कुछ लोक रचनाएं, और अब ताराचंद यादव और उनके साथियों को सुनते हैं।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे तारातन यादव और साथियों के गाए पारंपरिक निमाड़ी लोकगीत। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से। आइए अब सुने युववाणी।

0: हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त पलक। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आप सभी तो जानते ही हैं कि आज है सोमवार, जिसमें हम आपसे करते हैं ढेर सारी बातें और सुनाते हैं आपको प्यारे प्यारे गीत। लेकिन उससे पहले चलिए जान लेते हैं हमारे आज के सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को। हमारा पहला प्रश्न है, भारत स्टील 2026 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? वहीं दूसरा प्रश्न, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? साथियों, इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर हम आपको बताएंगे हमेशा की तरह कार्यक्रम के अंत में। तब तक बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए कार्यक्रम युववाणी। साथियों, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, जिसे एचआईवी वैक्सीन जागरूकता दिवस भी कहा जाता है, हर साल 18 मई को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य एचआईवी या एड्स के खिलाफ एक प्रभावी वैक्सीन खोजने की आवश्यकता पर जोर देना है और इस दिशा में काम कर रहे वैज्ञानिकों और स्वयंसेवकों को सम्मानित करना है। भारत सरकार का जैव प्रौद्योगिकी विभाग और आईएवीआई ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के माध्यम से एक प्रभावी और किफायती वैक्सीन विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण शोध कर रहे हैं।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: साथियों, आप सभी देख रहे होंगे कि इन दिनों गर्मी कितनी ज्यादा बढ़ गई है और गर्मी के कारण हमें कई प्रकार की परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसे में हमारी दादी नानी के बताए गए नुस्खे, या यूं कहें कि देसी नुस्खे, इस चिलचिलाती गर्मी में राहत पाने के लिए कारगर सिद्ध होते हैं। साथियों, गर्मी का मौसम आते ही तेज धूप, गर्म हवाएं और बढ़ता तापमान हर किसी को परेशान करने लगता है। इस मौसम में शरीर जल्दी थक जाता है, प्यास भी ज्यादा लगती है और कई बार तो लू लगने जैसी समस्या भी सामने आती है। आज हमारे पास एसी है, कूलर, फ्रिज जैसी कई आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन अगर हम अपने पुराने समय को देखें तो पाएंगे कि उस दौर में लोग बिना इन साधनों के भी गर्मी का सामना बड़ी आसानी से कर लेते थे। इसका कारण था उनके देसी नुस्खे, जो सरल, सस्ते और बहुत ही प्रभावशाली होते थे। और उन्होंने अपने अनुभवों से ऐसे उपाय खोजे थे जो शरीर को ठंडक देने के साथ साथ स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाते थे। सबसे पहले बात करते हैं मटके और सुराही की। पहले हर घर में मिट्टी का मटका जरूर होता था। इसमें रखा पानी प्राकृतिक रूप से ठंडा रहता था और शरीर को राहत देता था। मिट्टी के छोटे छोटे छिद्र पानी को ठंडा बनाए रखते थे। यही कारण था कि मटके का पानी बहुत ज्यादा ठंडा तो नहीं होता था और ना ही गले को नुकसान पहुंचाता था। आज भी डॉक्टर फ्रिज के बर्फीले पानी की जगह मटके का पानी पीने की सलाह देते हैं। सुराही भी गर्मी का एक खास साथी रहा है। पुराने समय में मेहमानों का स्वागत

दही के पानी से ही किया जाता था। ये केवल एक बर्तन नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और सादगी का भी प्रतीक था। आप में से बहुत से लोगों को याद होगा कि पुराने समय में अक्सर सफर के दौरान लोग सुराही का इस्तेमाल करते थे। उसमें पानी भरकर बारदान से उसको लपेट देते थे और ट्रेन की खिड़की पर बांध दिया करते थे, और वो पानी काफ़ी लंबे समय तक ठंडा रहता था जिससे गर्मी में उससे राहत मिलती थी। तो साथियों, चलते हैं उसी पुराने दौर में और सुनाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

साथियों, गर्मी से राहत दिलाने में हमारे देसी पेय पदार्थों का भी बहुत बड़ा योगदान है। आज बाजार में तरह तरह के पेय पदार्थ मिलते हैं, लेकिन उनमें अक्सर ज्यादा चीनी और कृत्रिम पदार्थ होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होते हैं। इसके

विपरीत हमारे पारंपरिक पेय पदार्थ पूरी तरह प्राकृतिक और लाभकारी होते हैं। सबसे आम और असरदार पेय है नींबू पानी। ये शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है और पानी की कमी को भी दूर करता है। अगर इसमें थोड़ी सी चीनी और नमक मिला दिया जाए तो ये शरीर के लिए तो फायदेमंद है ही और ठंडक भी काफ़ी देता है। दूसरे महत्वपूर्ण पेय पदार्थ में है छाछ। छाछ न केवल शरीर को ठंडक देता है बल्कि पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाता है। इसमें भुना जीरा और काला नमक मिलाकर पीने से इसका स्वाद और गुण दोनों बढ़ जाते हैं। और हम गर्मियों के राजा आम का पेय आम पन्ना को कैसे भूल गए। आम पन्ना गर्मियों का एक प्रसिद्ध देसी पेय है। कच्चे आम से बनने वाला ये पेय लू से बचाने के लिए बहुत कारगर सिद्ध होता है। ग्रामीण इलाकों में आज भी कई लोग गर्मी के मौसम में आम पन्ना पीना काफी पसंद करते हैं। इसी प्रकार बेल का शरबत पेट को ठंडक पहुंचाता है और शरीर को ताजगी देता है। सत्तू का शरबत गर्मियों में लाभकारी माना गया है। ये शरीर को ताकत देता है और लंबे समय तक ऊर्जा बनाए रखता है। साथियों, अगर हम रोजाना इन पेय पदार्थों का सेवन करते हैं तो ना सिर्फ हमें ठंडक मिलती है बल्कि प्राकृतिक रूप से भी ये हमारी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। और आज जिस प्रकार का दौर चल रहा है, ऐसे में हमें कृत्रिम चीजों को छोड़कर वापस प्राकृतिक चीजों की तरफ बढ़ना बहुत जरूरी हो गया है। ये देसी नुस्खे हमें कई गंभीर बीमारियों से बचाने में भी मददगार साबित होते हैं। तो चलिए साथियों, बढ़ाते हैं एक कदम अपनी सेहत की ओर इन प्राकृतिक पेयों का सेवन करके, और सुनते हैं हमारा अगला गीत।

साथियों, गर्मी में सही खान पान और जीवन शैली अपनाना भी बेहद जरूरी है। इस मौसम में हल्का, ताजा और ठंडी तासीर वाला भोजन करना चाहिए। खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, दही जैसे खाद्य पदार्थ जो कि शरीर को ठंडक देते हैं, हमें अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। ये खाद्य पदार्थ न केवल ठंडक देते हैं बल्कि शरीर में पानी से होने वाली कमी को भी पूरा करते हैं। वहीं ज्यादा तला भुना मसालेदार भोजन करके हमारे शरीर में गर्मी को बढ़ावा मिलता है। हमारे बुजुर्ग भी गर्मियों में हमें सादा भोजन करने की सलाह देते थे। दाल, चावल, दही और मौसमी फल गर्मियों में सबसे अच्छे माने जाते हैं। इसके साथ ही इस भीषण गर्मी में तेज धूप से बचाव भी बहुत जरूरी है। तो साथियों, उसके लिए क्या करें? उसके लिए सबसे पहली कोशिश तो ये करें कि दोपहर की तेज धूप में बाहर न जाएं। और अगर किसी कारणवश आपको बाहर जाना पड़ भी रहा है तो सिर, कान, नाक को अच्छी तरह ढक कर बाहर निकलें। और हाँ, साथ में अपने प्याज रखना ना भूलें। अब आप सोच रहे होंगे मैं आपको प्याज रखने के लिए क्यों बोल रही हूँ। तो हमारे बुजुर्गों का मानना था कि प्याज की गंध जब आपके पास होती है तो लू लगने का खतरा कम हो जाता है। तो चलिए साथियों, अब बारी है कार्यक्रम के अगले गीत की।

साथियों, देसी नुस्खों की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये हमें प्रकृति के करीब लाते हैं। इनमें सादगी है, स्वास्थ्य है और अनुभव का खजाना छिपा है। आज जब हम आधुनिक साधनों पर पूरी तरह निर्भर होते जा रहे हैं, तब इन पुराने उपायों को याद करना और अपनाना बहुत जरूरी है। अगर हमने छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा, जैसे मटके का पानी पीना, छाछ नींबू पानी पीना, मौसमी फल खाना और सबसे ज्यादा जरूरी अपने आसपास हरियाली बढ़ाना, तो हम गर्मी का मौसम भी आसानी से बिता सकते हैं। हमें अपनी आने वाली जनरेशन को भी इस देसी उपायों के बारे में बताना चाहिए, ताकि वे समझ सकें कि हमारे पारंपरिक उपाय कितने ज्यादा उपयोगी हैं। ये नुस्खे केवल गर्मी से बचने के साधन नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति और परंपरा की भी पहचान है। आखिर में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि प्रकृति ने हमें हर समस्या का समाधान दिया है, बस जरूरत है उसे पहचानने और अपनाने की। तो आइए इस गर्मी हम भी देसी नुस्खे अपनाएं, स्वस्थ रहें और दूसरों को भी प्रेरित करें। ऐसा करने से हम गर्मी से लड़ भी पाएंगे और प्रकृति को सहयोग करके जो इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है उसे कम भी कर पाएंगे।

साथियों, ये तो था हमारा आज का क्रम, कुछ बातें कुछ गीत। तो चलिए अब प्रारंभ में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न था, भारत स्टील 2026 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? तो साथियों, भारत स्टील 2026 शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में होगा। दूसरा प्रश्न था, आई

आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2027 की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया देश करेंगे। इसी के साथ आपकी रेडियो दोस्त पलक को दे इजाजत कार्यक्रम को समाप्त करने की। नमस्कार।

श्रोताओ, आप सुन रहे थे युवा साथियों का प्रिय कार्यक्रम युववाणी FM 101.2 MHz पर। यह है आकाशवाणी खंडवा। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। सभी को विद्याधर मुले का नमस्कार।

धक धक। ये फिल्म का नाम है जिसका गीत अब हम सुनेंगे अमित त्रिवेदी की आवाज में। ये अविनाश चौहान का गीत है और संगीत अनुराग सैकिया का।

दर्शन रावल की आवाज में एक और गाना आपको सुन पाते हैं। ये समीर अंजान का गीत है, हिमेश रेशमिया का संगीत, फिल्म तेरा सुरूर।

0: अरे क्या हुआ, इतने उदास क्यों बैठे हो?
1: सोच रहा हूँ अपनी दुकान का विज्ञापन कब दूँ और कहाँ दूँ।
0: अरे इसमें उदास होने की क्या बात है?
1: क्यों?
0: आप अपनी दुकान का विज्ञापन कर सकते हैं आकाशवाणी के माध्यम से।
1: वो कैसे?
0: आकाशवाणी के खंडवा केंद्र पर जाकर सोमवार से शुक्रवार कार्यालयीन समय के बीच आप अपनी दुकान का विज्ञापन दे सकते हैं।
1: अच्छा, तो इसका फायदा क्या होगा?
0: इसका फायदा ये होगा कि आकाशवाणी खंडवा का प्रसारण न सिर्फ हमारे क्षेत्र में बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में भी सुना जाता है। तो आपकी दुकान तो हो गई ना मशहूर,
1: वर्ल्ड फेमस। बिल्कुल, तो मैं आज ही जाता हूँ आकाशवाणी खंडवा।
0: आप कब आ रहे हैं?
1: आकाशवाणी खंडवा पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: श्रोताओ, आकाशवाणी खंडवा से विद्याधर मुले के साथ आप सुन रहे हैं फिल्म संकेत। नक्श अजीज की आवाज फिल्म ऊंचाई। ये इरशाद कामिल का गीत है, संगीतबद्ध किया अमित त्रिवेदी ने।

और अब कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको सुनवाते हैं। आतिफ असलम की आवाज है, फिल्म करीब करीब सिंगल।

0: FM 101.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी खंडवा है। शाम के 7 बजने को हैं, आइए सुने हिंदी समाचार दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोरा ने ओस्लो में सीमित और शिष्टमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों नेताओं ने संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और व्यापार तथा निवेश, नीली अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष तथा आर्कटिक क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई। दोनों नेताओं ने भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से उत्पन्न होने वाले व्यापक अवसरों का भी उल्लेख किया। बातचीत के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
2: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं, तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
1: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली की राजधानी रोम पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री सुश्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने अमेरिका के साथ बातचीत करने के अपने निर्णय को उच्च ठहराया है और कहा है कि कूटनीति में गरिमा जरूरी है, लेकिन ईरान अपने राष्ट्रीय अधिकारों की रक्षा करना जारी रखेगा। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरेनियम के भंडारों, प्रतिबंधों में राहत और पश्चिम एशिया में महीनों से जारी संघर्ष के लिए क्षतिपूर्ति को लेकर बातचीत में गतिरोध रहते हुए ईरान को नई चेतावनी जारी की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वायदों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं के साथ हुए अत्याचारों की जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चैटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में CBI ने 5 जगहों पर तलाशी अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। इससे पहले एजेंसी ने आज दीपक सिंगला और अन्य हवाला ऑपरेटरों के खिलाफ दिल्ली और गोवा में तलाशी अभियान चलाया। आरोप है कि दीपक सिंगला दिल्ली और गोवा के बीच आम आदमी पार्टी के लिए धन हस्तांतरण के लिए हवाला संचालन का काम संभाल रहे थे। दीपक सिंगला ने 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में विश्वास नगर क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के लिए टिकट पर चुनाव लड़ा था। IPL क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। अंक तालिका में तीसरे स्थान पर मौजूद हैदराबाद

0: हैदराबाद जीत दर्ज कर प्लेऑफ के और करीब आना चाहेगी, जबकि चेन्नई की नजर शीर्ष चार में प्रवेश करने पर होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: श्रोताओ, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से FM 101.2 MHz पर।
2: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन।
3: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
4: क्या बात है जीजी, नई साड़ी, नए गहने, बड़ी सजी धजी लग रही हो।
5: अरे जीजी, असल में बात ये है, हमारे इनने ना जब से आकाशवाणी खंडवा पे हमारी दुकान का विज्ञापन दिया है ना, तब से हमारी दुकान बहुत चल रही है। मतलब
4: है? ऐसा क्या? अब मैं भी अपने इनको बोलूंगी कि हमारे बिजनेस का विज्ञापन भी आकाशवाणी खंडवा पर दे। पर देंगे कैसे?
5: अरे इसमें क्या है जीजी, बस आकाशवाणी खंडवा जाओ और विज्ञापन दो।
6: सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।

पहाड़ की सुरीली धड़कन एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी खंडवा, आप सुनते रहें, हम सुनाते रहेंगे।

0: के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
2: मीठी मीठी निमाड़ की सुरीली धड़कन,
3: जहाँ होती है मीठी मीठी बातें और सुनाए जाते हैं प्यारे प्यारे गाने।
4: इश्क़ दी चाशनी, ओ मीठी मीठी चाशनी।
2: तो आप भी इसकी मिठास में खो जाएं, सुनते रहें निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।
4: ओ मीठी।

जी हाँ श्रोताओं, आपने चुना है 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी खंडवा को। आपके प्यार का साथी निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।

0: इंद्र से। शाम के 7:10 होने को हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे।
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: हो गया इंतजाम।
6: किसका? गुड्डी की फीस का।
5: दिखा।
6: 20,000 का लोन तुरंत।
5: पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है?
6: लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
7: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली की दो दिन की यात्रा पर रोम पहुंचेंगे। रेड क्रॉस के सिद्धांत बच्चों में सेवा, सद्भाव, करुणा और संवेदनशीलता विकसित करते हैं, कहा राज्यपाल ने। प्रदेश में जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान आज से शुरू। और प्रदेश के कई जिलों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, मौसम विभाग ने तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर ने ओस्लो में सीमित और प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत नॉर्वे संबंधों को ग्रीन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के स्तर तक ले जाने पर सहमति जताई। ये स्वच्छ ऊर्जा, ब्लू इकोनॉमी और हरित बदलाव के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के पूरे दायरे की समीक्षा की और आर्कटिक क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली की दो दिन की यात्रा पर रोम पहुंचेंगे। यह यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए श्री गोयल ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदाय और लोगों में जज्बा इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती।
1: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत व्यापार महोत्सव का उद्देश्य स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि भारतीय सामान और सेवाएं पूरे देश और दुनिया भर में और तेजी से फैलें। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि रेड क्रॉस के सिद्धांत बच्चों में सेवा, सद्भाव, करुणा और संवेदनशीलता विकसित करते हैं। आज भोपाल में आयोजित जूनियर रेड क्रॉस और युवक रेड क्रॉस शाखा की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्र के लिए सक्षम पीढ़ी के निर्माण के लिए शैक्षणिक संस्थानों द्वारा विद्यार्थियों में रेड क्रॉस की गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि शैक्षणिक संस्थान बच्चों में ज्ञान और संस्कार को प्रदान करने वाली सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। संस्थानों को विद्यार्थियों को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए, उन्हें समसामयिक चुनौतियों और जीवन की प्रतिस्पर्धाओं के लिए जुझारू बनाएं, वहीं सफलताओं के दबाव और तनाव प्रबंधन से निपटने का हुनर सिखाएं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मरीज की चिकित्सा सिर्फ एक व्यवसाय नहीं, ये मानव सेवा का एक माध्यम है। आज मुख्यमंत्री

0: में आयोजित एक एमओयू बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमें ऐसे चिकित्सक तैयार करने हैं जो मानव सेवा और मरीज की सेवा के लिए तत्पर हो। इस एमओयू का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश को सेवा प्रधान स्वास्थ्य नेतृत्व का मॉडल बनाना है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वैश्विक परिस्थितियां देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से मितवई जीवनशैली अपनाने, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने और आत्मनिर्भरता के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में उन्होंने कहा कि देश की जनता उनके आह्वान का गंभीरता से पालन कर रही है।
2: वर्तमान वैश्विक परिस्थितियां देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से मितव्ययी जीवन शैली अपनाने, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने और आत्मनिर्भरता के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया। उनके आह्वान का देश की जनता बड़ी गंभीरता से पालन कर रही है। समाज के हर एक वर्ग ने गंभीरता से लिया है और उसके अनुरूप मितव्ययता अपनाने का, डीजल पेट्रोल की खपत घटाने के और बाकी उपायों को भी समाज का लगभग हर वर्ग कर रहा है।
0: प्रदेश में हाल ही में नियुक्त निगम मंडल बोर्ड प्राधिकरण और आयोगों के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के लिए आज विशेष प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल में प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया। जनजातीय वर्ग के लिए शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार और योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आज से 25 मई तक राष्ट्रव्यापी सूचना शिक्षा संचार अभियान जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान संचालित किया जा रहा है। जनजातीय कार्य विभाग मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने विभाग के सभी मैदानी अधिकारियों को सफलतापूर्वक शिविर लगाने और लक्षित समूह को लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मंत्रालय में मध्य प्रदेश राज्य आजीविका मिशन फोरम की शासी निकाय की बैठक ली, विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की। बैठक में विगत बैठक के निर्णयों के पालन प्रतिवेदन की समीक्षा करते हुए मंत्री श्री पटेल ने आजीविका मिशन के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मियों के एचआर मैनुअल पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए। प्रदेश में भीषण गर्मी लगातार बनी हुई है। राज्य के कई जिलों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच चुका है। गुना में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे आमजन को तेज गर्मी और लू का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने अगले चार दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक और बढ़ोतरी की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने ग्वालियर, सागर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, इंदौर संभाग के कई जिलों में लू चलने का अलर्ट भी जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल मंगूभाई पटेल के बैतूल जिले में 20 मई को प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों का संभागायुक्त ने आज निरीक्षण किया। झाबुआ में कल विकासखंड स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया जाएगा। आगर मालवा जिले के सुसनेर नगर परिषद अध्यक्ष ने नगर के वार्ड क्रमांक 7 में 20 लाख रूपये की लागत से बनने वाली सीसी रोड का आज भूमि पूजन किया। नर्मदापुरम जिले में आयुष विभाग द्वारा घर घर योग हर व्यक्ति निरोग अभियान के तहत जिले भर में नियमित योग शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। सीहोर जिले की बुधनी तहसील में भारत सरकार जनगणना निदेशालय के अधिकारियों ने यहां चल रही जनगणना तैयारियों का निरीक्षण किया। शिवपुरी में विद्युत समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विशेष जनसंपर्क अभियान आयोजित किया जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
0: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दीप
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा
2: RBI कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी,
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है, क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन।
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
3: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए का, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
4: आरबीआई कहता है
5: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: ईछे निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।
7: FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 7:21 होने को हैं। अब सुनिए कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

कार्यक्रम सुनने वाला सभी भाई बहनों को स्वागत छे आपका अपना कार्यक्रम। आज आपका साथ छे आपकी बहन निरुपमा मिश्रा। स्वीकार करो मारी राम राम। भाई बहनोनी इना समय गर्मी अपनी तेज रफ्तार सी बढ़ी रही छे। जीव जंतु पशु पक्षी और मनुष्य को हाल इनी गर्मी से बेहाल छे। सबसे ज़्यादा तो बेचारा बालक परेशान छे, क्योंकि अप्रैल माह की स्कूल का बाद यो महीनों उनकी छुट्टी को रज। पण इनी गर्मी ने उनका भी घर का अंदर रहने पर मजबूर कर दियो। मैं बनोनी हमारा घर का नव निहाल इनी गर्मी की छुट्टी को बड़ी बेसब्री से इंतजार करज। कई तरह की योजना बनावज कि हम काई काई करांगा। जे काम मुख्य रूप से छे नानी का घर जाकर उधम मचाणु और तरह तरह की खाने की चीज को आनंद लेणु। न अधिकतर बच्चा तो अभी अपनी छुट्टी को आनंद लेना का लेन अपना ननिहाल पहुंची भी गया होएगा। भाई बहनोनी इन्हीं छुट्टी में ननिहाल होए या हमारो अपनो घर, हम अपना बालक न की खाना पीने की फरमाइश का नज़रअंदाज नहीं कर पाता, क्योंकि हम भी ये सोचा कि साल भर हमारा बच्चा स्कूल की भागदौड़ और पढ़ाई में व्यस्त रज न वो ठीक सी खाना पीने को आनंद नहीं ले पाता। तो अब जब इन्हीं चिंता से कुछ समय का लेन मुक्त रह तो उनका उनका हिसाब से खाना पीना दियो जाए। भाई बहनोनी थोड़ा बहुत उनका हिसाब से खवाना में कोई बुराई भी नहीं है, पर चूंकि यो गर्मी का मौसम छे और तापमान भी ज़्यादा बढ़ेल छे तो इना समय बच्चा न का खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत छे। भाई बहनोनी गर्मी का मौसम में तापमान बढ़ने से बच्चा न डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी की समस्या देखने में आवज, जे का कारण उनका उल्टी दस्त लगी जाज। हालांकि इना मौसम में ठंड बच्चा न का ठंड देना का लेन बालक न का माता पिता आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक और मिल्क शेक देज न ये चीज़ बच्चा न का कुछ देर का लेन तो गर्मी से राहत दी देज, पर असल में ये चीज़ न शरीर का ठंडो नहीं करती, बल्कि कई बार इनका सी गला में खराश की समस्या डिहाइड्रेशन और कमजोरी हुई जाज। एक बजाय यदि नींबू को शरबत शिकंजी कईरे को पनो या खस को शरबत बच्चा न का बने का देवा तो ये शुद्ध होने का साथ साथ बालक न का तरोताजा रखज और इनका सेवन से बालक न का पानी की पूर्ति भी होती रज। भाई बहनों गर्मी का मौसम में बच्चा न को मन चटपटो और डिब्बा बन चीज न

को खाणो को कर दे। तो कभी कभी तो कम मात्रा में बच्चा न को मन रखना का लेन हम दे सकान, पर रोज रोज इनका खाने की आदत बच्चा न का बीमार करी सकत। एक बजाय यदि हम बच्चा न का मौसमी फ्रूट चाट और हरी पत्तेदार सब्जी न का बनावना में बदलाव करी कर, यानी कि उनका से पराठा थेपला बनाए कर या उपमा या सेवई में मिले कभी हम खवाड़ी सकान। भाई बहनोनी ये मौसमी और मौसमी फल और सब्जी जहाँ एक और बच्चा न का पोषण देज वहाँ जो दूसरी तरफ इनका खाना सी शारीरिक तृप्ति भी बच्चा न का मिले न बच्चा न ऊर्जा की कमी भी नहीं होती। भाई बहनोनी कोई भी मौसम बुरो नहीं होतो, बस उना मौसम का अनुसार यदि हम अपना खान पान में सावधानी रखा तो हर मौसम को आनंद लियो जा सकत। भाई बहनोनी गर्मी को मौसम छुट्टी अरु त्यौहार को मौसम रज। हालांकि गर्मी को मौसम सबका लेन थोड़ा मुश्किल भरो रज, पर पर्याप्त पानी पी कर अरु सादो भोजन करी कर हम अपना बच्चा अरु पूरा परिवार का साथ एको आनंद उठाई सकान। हाँ एक बात अरु हम सबक इना मौसम में करनु चाहिए, बूछे बेजुबान पशु पक्षी ने का लेन अपना घर का आंगन में पानी की व्यवस्था करनु। तो आशा छे कि आप इन सभी बात न को ध्यान रखी कर गर्मी का मौसम को आनंद भी लेगा। न भाई बहन होनी अपनी बातचीत तो हम आगे भी जारी रखांगा, पर पहले पूछ ले बांज आज को प्रश्न। आज को हमारो प्रश्न छे पशु नम आयु की गणना कसी की जाज। इना प्रश्नों को उत्तर जानना का लेन आपका करनु पड़ेगा बस थोड़ो सो इंतजार, उत्तर बतावांगा कार्यक्रम का आखिर में। भाई बहनोनी अब थोड़ी सी बातचीत अरु करी लेवा। भाई बहनोनी मानव जीवन का इतिहास में कई ऐसी बीमारी आई चुकी जिनने पूरी दुनिया का हिलाई कर रखी दियो ज, प्लेग चेचक हैजा अरु कोरोना वायरस। पर इन सब का बीच एक असो वायरस भी छे जो कि पिछला 4 दशक से मानव जीवन का लेन खतरो बनेल छे। इना वायरस को नाव छे HIV न एकासी होने वाला एक खतरनाक बीमारी को नाव एड्स छे। तो इना एड्स की बीमारी की हम जो बात करी राज तो आज छे एड्स अंतर्राष्ट्रीय एड्स वैक्सीनेशन दिवस। तो एक बार हम आग अरु बात करांगा, पहले सुनी लेवान यो एड्स से संबंधित लोकगीत जेख गायोज धर्मेंद्र सरमंडल अरु साथीनना।

0: फिर भी विश्व स्तर पर इनी महामारी को पूरी तरह मिटाने का लेन वैक्सीन ज एकमात्र स्थायी समाधान छे। इनी आवश्यकता को रेखांकित करने का लेन यो दिवस मनायो जाए। एक अलावा भाई बहनोनी एड्स रोग की रोकथाम का लेन जब तक एक पूर्ण वैक्सीन बाजार में उपलब्ध नहीं हुई जाती तब तक चिकित्सा विज्ञान ने जो इना रोग की रोकथाम का लेन साधन दिए छे उनका बारे में जागरूकता फैलावणु भी इना दिवस क मनावण को उद्देश्य छे। भाई बहनोनी आज भी दुनिया का कई क्षेत्र में एचआईवी से पीड़ित व्यक्ति न को बहिष्कार रोजगार का अवसर और मानसिक प्रताड़ना को सामनो करनु पड़ज। आज भी कई लोग ये समझज कि एड्स छून साथ बटन या साथ में भोजन करने से फैलज जेका कारण वो बीमार व्यक्ति से अच्छो बर्ताव नहीं करता। इनाज कारण से कई एड्स पीड़ित तो अपनी जांच और इलाज कराने से भी डरज जेका से ये वायरस उनका में तेजी से फैलज। तो जब तक हम एड्स पीड़ित न से ये सामाजिक भेदभाव खत्म नहीं करांगा तब तक चिकित्सा विज्ञान या चिकित्सा तकनीक को लाभ जमीनी स्तर तक नहीं पहुँच पाओगे। भाई बहन होनी एक सुरक्षित प्रभावी और सुलभ एचआईवी वैक्सीन केवल एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं होएगा बल्कि ये मानवता की सबसे बड़ी जीत में से एक होएगा। ये वैक्सीन दुनिया भर की स्वास्थ्य प्रणाली पर से एक बड़ो बोझ हटाई देगा और आने वाली पीढ़ी को एक डर मुक्त और स्वस्थ भविष्य दे पाओगे। तो भाई बहन होनी आज का दिन हम सभी मिलकर एड्स वैक्सीनेशन से जुड़े उन सभी वैज्ञानिक और स्वास्थ्य कर्मियों को आभार व्यक्त करा जो कि हर रोज एक उम्मीद का साथ एड्स वैक्सीनेशन पर अपनी खोज जारी रखी राज और उनको हर एक कदम मजबूती का साथ वो आगे बढ़ी राज। तो भाई बहनोनी ये तो थी अपनी आज का दिन की बात न अव चलांज कृषि संबंधित जानकारी की ओर न सुनांज मूंगफली की खेती विषय पर ये वार्ता। जानकारी दैराज कृषि विज्ञान केंद्र बुरहानपुर का कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर कार्तिके सिंह।
1: कार्तिके सिंह कृषि विज्ञान केंद्र बुरहानपुर से। किसान भाइयों आज आप लोगों के बीच मूंगफली की वैज्ञानिक खेती पर चर्चा होगी। खास तौर से मूंगफली का खेती जो है वो तिलहनी फसलों में आता है जैसे हम सरसों राई अलसी सोयाबीन सनफ्लावर लगा करके और तेल की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं देश के खाद्यान्न में। उसी तरह मूंगफली जो है वो तेल की एक अग्रणी फसल है जिसमें सबसे अधिक तेल की मात्रा पाई जाती है। तो मूंगफली की बात अगर की जाए तो मूंगफली भारत की प्रमुख तिलहनी फसल है और सही तकनीक अगर हम अपनाएं तो प्रति एकड़ अच्छी पैदावार देती है जिसमें आयल का प्रतिशत लगभग 35-40% आयल रहता है। मूंगफली की खेती खास तौर से दो मौसम में की जाती है। एक तो जनवरी से फरवरी में आप कर सकते हैं और नहीं तो फिर आप बारिश में मूंगफली की खेती को ले सकते हैं। किसान भाइयों मूंगफली की खेती में अगर हम जलवायु की बात करें तो मूंगफली के लिए 25 से 35 सेंटीग्रेड तापमान अच्छा रहता है। मध्यम बारिश वाला जो क्षेत्र है उसमें मूंगफली की अच्छी खेती होती है। खास तौर से 500 मिलीमीटर से लेकर 1000 मिलीमीटर वर्षा वाली जगह को इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है और फसल को पाला और ज्यादा पानी से नुकसान होता है तो जल निकास की उचित व्यवस्था मूंगफली की खेती में होना चाहिए। मूंगफली का खेती जो है वो किसी भी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं लेकिन अगर अच्छा पैदावार आपको लेना है तो रेतीली भुरभुरी दोमट या हल्की दोमट या थोड़ा बलुई दोमट मिट्टी रहे तो उसमें अच्छा पैदावार देती है। मिट्टी में खास तौर से 6-7.5% पीएच हो तो वो उपयुक्त मानी जाती है। साथ ही यह ध्यान दिया जाता है कि ऐसे खेत का चुनाव करें जिसमें जल निकास का समुचित व्यवस्था हो और आवश्यकता पड़ने पे हम

पानी भी दे सकें। खेत की तैयारी की अगर हम बात करें तो मूंगफली के लिए कम से कम पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करना चाहिए और 2 से 3 बार कल्टीवेटर करके जुताई करना चाहिए। आखिरी जुताई में रोटावेटर चला करके और पाटा लगा करके खेत को खूब अच्छे से बराबर कर दें और प्रति एक 2 से 3 टन गोबर की खाद आवश्यक रूप से डालें। मिट्टी की तैयारी खास तौर से और जो गोबर की खाद है, ये उपयुक्त जमीन, मिट्टी का कंडीशन, मिट्टी की उर्वरा क्षमता और उत्पादकता देने की जो ताकत है उस पे निर्भर करता है। तो इस पे विशेष ध्यान देंगे कि हम गोबर का खाद घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। किसान भाइयों, मूंगफली की बहुत सारी प्रजातियां देश में हैं, लेकिन अच्छा उत्पादन और पैदावार देने वाली अगर हम प्रजातियों की बात करें तो अच्छा पैदावार के लिए कुछ किस्में हम बता रहे हैं, जैसे JL24 है, उसके बाद से दूसरी प्रजाति है GG20, तीसरी प्रजाति की अगर हम बात करें तो TG37A है, और अगर हम चौथी प्रजाति की बात करें तो Kadri 6 है। ये सभी ग्राउंड नट मतलब मूंगफली की उन्नतशील प्रजातियां हैं जो समय से बुवाई करने के बाद अच्छा उत्पादन देने के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। किसान भाइयों, बुवाई का जो समय है वो हम खास तौर से मूंगफली को 2 सीजन में बुवाई करते हैं। एक तो खरीफ सीजन में हम बुवाई करते हैं, जिसकी बुवाई जून से जुलाई के मध्य हम कभी भी कर सकते हैं। तो यह बुवाई का एक तो ये है कि जून से लेकर जुलाई के मध्य कभी भी हम बुवाई कर सकते हैं, और दूसरी हम रबी या गर्मी में मूंगफली की बुवाई कर सकते, खास तौर से निमाड़ में कर सकते हैं अगर हमारे पास सिंचाई का साधन हो तो। तो पूरे वर्ष में 2 बार हम बुवाई मूंगफली का कर सकते हैं अपने क्षेत्र में और करके उत्पादन ले सकते हैं। बुवाई के लिए जो हमको बीज की आवश्यकता पड़ेगी वो 35 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता पड़ेगी। 35 से 40 एकड़ मूंगफली का बीज 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहता है। अब उसमें ये देखा जाता है कि अगर मोटा दाना वाला है मूंगफली तो थोड़ा बीज का मात्रा बढ़ जाता है, और छोटे और मध्यम दाने वाले अगर मूंगफली हैं तो उसमें बीज की मात्रा हम थोड़ा कम भी कर सकते हैं। बीज का चयन और बीज 35 से 40 केजी का व्यवस्था करने के बाद बात आती है कि रोग बीमारी और कीट पतंगों से बचने हेतु बीज का उपचार आवश्यक है। यह एक प्रमुख पहलू है कि हम खेती को रोग बीमारी एवं कीटों से बचाएं, इसके लिए बीज उपचार आवश्यक है। तो किसान भाई, वो बीज उपचार को आप खास तौर से फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड, जिसको आप कीटनाशक कहते हैं, दोनों से कर सकते हैं, या किसी एक से करने की आवश्यकता हो तो फंजीसाइड से कर सकते हैं। अब फंजीसाइड में किसान भाइयों के पास 2 विकल्प रहता है, एक तो जैविक फंजीसाइड के रूप में ट्राइकोडर्मा पाउडर है और रासायनिक फंजीसाइड के रूप में कार्बेंडाजिम है, थायरम है, कार्वाक्सासिन है, इत्यादि बहुत रासायनिक पाउडर फंजीसाइड में उपलब्ध है। तो दोनों में से किसी एक का हम चयन कर लेंगे। अगर हमको जैविक फंजीसाइड फफूदनाशी ट्राइकोडर्मा पाउडर का प्रयोग करना है तो 1 किलोग्राम बीज के लिए कम से कम 5 से 6 ग्राम पाउडर की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हम रासायनिक बीज उपचार करना चाहते हैं तो कार्वाक्सासिन और थायरम से हम कर सकते हैं, कार्बेंडाजिम से हम कर सकते हैं, और कार्बेंडाजिम 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से हम बीज का उपचार करें। बीज उपचार एक महत्वपूर्ण क्रिया है, खासतौर से खेती में बीज उपचार आवश्यक रूप से होना चाहिए, और बीज उपचार के लिए किसान भाई को ये ध्यान देना चाहिए कि 1 एकड़ के लिए जो आप 40 केजी बीज का चयन किए हैं, उस 40 केजी बीज को कहीं छायेदार स्थान पे बिल्कुल प्लास्टिक का सीट बिछा करके और 3 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से 90 से 100 ग्राम कार्बेंडाजिम पाउडर को उसके ऊपर डाल के और हल्का सा पानी का छींटा मार के और हाथ में पॉलीथीन या कुछ प्लास्टिक लपेट के और उससे मिला देना चाहिए। इतना मिलाना चाहिए जैसे आप बाल में तेल लगाते हैं, उस तरह से उसको मिला दें और मिला के कम से कम छाए वाला स्थान में 3 से 4 घंटा तक उसको ढक के रख दें और उसके बाद ही बुवाई करें, ताकि जो दवाई है कार्बेंडाजिम या कोई भी रासायनिक दवा या जैविक दवा फफूदनाशक, वो बीज के अंदर तक उसको शोषित हो जाए और बीज जनित जितनी बीमारियां और रोग व्याधियां हैं वो सारा नष्ट हो जाए। तो किसान भाइयों, बीज का

उपचार अच्छी तरीका से और अच्छा विधि से करना बहुत आवश्यक है। अब बीज उपचार करने के बाद बात आती है बुआई की, तो बुआई की जो विधि है वो खास तौर से मूंगफली कतार में ही लगाई जाती है और इसके लिए कतार से कतार की दूरी जो है 30 से 45 सेंटीमीटर रखी जाती है और पौध से पौध की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखी जाती है। अगर हम गहराई की बात करें तो मूंगफली 4 से 5 सेंटीमीटर गहरी लगाई जाती है, बीज से पौध 10 से 15 सेंटीमीटर, लाइन से लाइन 30 से 45 सेंटीमीटर का रखें। इन दूरी पे अगर आप बुवाई करेंगे तो आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा। अगर खाद और उर्वरक प्रबंध की हम बात करें तो किसान भाइयों, एक एकड़ के लिए जो डीएपी है, जिसको डाई अमोनियम फास्फेट कहते हैं, वह 50 किलोग्राम डालें, यूरिया 20 किलोग्राम डालें, पोटाश 20 किलोग्राम डालें और सबसे प्रमुख जो बात है वो ये है कि मूंगफली के खेती में तेल का प्रतिशत बढ़ाने के लिए 100 किलोग्राम जिप्सम फूल आने पर आवश्यक रूप से दे। जिप्सम देना बहुत जरूरी है। जितनी तेल वाली फसलें हैं उसमें

की बात करें तो मूंगफली 4 से 5 सेंटीमीटर गहरी लगाई जाती है, बीज से पौध 10 से 15 सेंटीमीटर, लाइन से लाइन 30 से 45 सेंटीमीटर का रखें। इन दूरी पे अगर आप बुवाई करेंगे तो आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा। अगर खाद और उर्वरक प्रबंध की हम बात करें तो किसान भाइयों, 1 एकड़ के लिए जो DAP है, जिसको डाई अमोनियम फास्फेट कहते हैं, वह 50 किलोग्राम डालें, यूरिया 20 किलोग्राम डालें, पोटास 20 किलोग्राम डालें, और सबसे प्रमुख जो बात है वो ये है कि मूंगफली के खेती में तेल का प्रतिशत बढ़ाने के लिए 100 किलोग्राम जिप्सम फूल आने पर आवश्यक रूप से दें। जिप्सम देना बहुत जरूरी है, जितनी तेल वाली फसलें हैं उसमें जिप्सम अनिवार्य रूप से डालना ही चाहिए। तो 1 एकड़ में 100 किलोग्राम जिप्सम आप जरूर डालें, और यह जिप्सम डालने का जो समय है वो फूल आने पर डालें। बाकी जो आपका DAP है और पोटास है, वो बुवाई के समय जोताई करके मिट्टी में मिला दें अंतिम जोताई के समय। तो इस तरह से आप प्रति एकड़ खाद और उर्वरक का प्रयोग प्रबंध आप कर सकते हैं। अगर आपके पास गोबर का खाद है तो वो भी आप डाल सकते हैं, नहीं है तो DAP, यूरिया, पोटास और जिप्सम, ये जितने मात्रा में मैं बताया उसका प्रयोग आप आवश्यक रूप से अच्छा उत्पादन लेने के लिए किसान भाई जरूर करें। अब चूंकि 2 मौसम में मूंगफली की खेती होती है, अगर किसान भाई खरीफ में कर रहा है तो पर्याप्त बारिश पर आधारित रहता है, और वर्षा आधारित फसल होती है तो उसको सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन वही अगर गर्मी में मूंगफली की खेती करता है किसान भाई, तो 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। आजकल खासतौर से हमारे क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से हम लोग बात कर रहे हैं, निमाड़ क्षेत्र में, तो निमाड़ क्षेत्र में कोई भी किसान ऐसा नहीं है जो ड्रिप और स्प्रिंकलर का प्रयोग नहीं करता है। तो किसान भाई, खेती में मूंगफली की लाइन से लाइन में आप ड्रिप का या इन लाइन का प्रयोग करें और उसी से आप सिंचाई करते रहें, नमी बना करके रखें। और ऐसे अगर आप कर रहे हैं और मध्यम मिट्टी है आपकी, तो 7 से 10 दिन के अंतराल पर आप सिंचाई करते रहें, यह महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फूल बनते समय और दाना भरते समय आपको सिंचाई और नमी खेत में बना करके आवश्यक रूप से रखना ही है, ताकि हमारे दाने मजबूत हों और पैदावार अधिक हो, और जो पैदावार हो उसमें उसका वेट गेन हो, ये बात जरूर ध्यान में रखना चाहिए। दाना भरते समय नमी की कमी नहीं होनी चाहिए, खासतौर से गर्मी वाले समय में। अगर किसान भाई मूंगफली के खेती में चारा से और खरपतवार से आप परेशान हैं, या इसकी समस्या आपके क्षेत्र में बहुत है, तो बुवाई के 20 से 25 दिन बाद आप निराई गुड़ाई आवश्यक रूप से करें। निराई गुड़ाई करना आवश्यक है। इसके लिए आपके पास लोकल जो डिवाइस है, लोकल जो औजार है, खुरपा है, कुल्पा है, बखर है, इत्यादि से आप करें, दराती से करें। अगर ज़्यादा आप ये नहीं प्रयोग कर सकते हैं, या इसकी आवश्यकता आपको लगता है कि इससे नहीं हो सकता है, तो आप पेंडा मेथालिन 1 लीटर या प्रति हेक्टेयर के दर से बुवाई के 1 दिन के अंदर आप जरूर छिड़काव कर दें, ताकि आपका खरपतवार से नियंत्रण मिल जाए। किसान भाइयों, अगर हम कीट की बात करें तो पत्ती खाने वाली इल्ली, तेला, दीमक इत्यादि हमारे मूंगफली में लगता है, जिससे हमको नुकसान पहुंच सकता है। इसके नियंत्रण के लिए इमीडा या क्लोरोपायरीफास या प्रोफेनोफास किसी एक का चयन करके 40 ml प्रति पंप के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। मूंगफली में बहुत ज़्यादा रोग नहीं आता है, प्रमुख रोग जो है वो जड़ सड़न और टिक्का रोग आता है, जो फंगल डिजीज है, फंगस के वजह से होता है। इसके लिए मैंकोजेब 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आपको छिड़काव करने की जरूरत है, या जो साफ पाउडर है कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का कॉम्बिनेशन, इसको भी आप ले सकते हैं। किसान भाइयों, आपकी फसल 100 से 120 दिन में पक के तैयार हो जाती है, और अच्छा तरीका से प्रबंध करें तो आपका खुदाई के बाद 3 से 4 दिन में सूख करके दाना बाजार में जाने लायक हो जाता है, और 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ आपको उत्पादन मिल जाता है। और अगर हम बाजार मूल्य की बात करें, तो कभी भी मूंगफली में जो है लाभ और लागत देखें, तो शुद्ध मुनाफा हमारा कम से कम 35 से 50 हज़ार तक प्रति एकड़ हमारा जा सकता है। और लागत की हम बात करें तो 1 एकड़ में 20 से 25 हज़ार रुपये की लागत आती है, और शुद्ध कुल आय, जो शुद्ध आय है सारा लागत काटने के बाद, वो आपका लगभग 30 से 40 हज़ार रुपया प्रति एकड़ आ जाएगा। तो 80 से 100 दिन की यह महत्वपूर्ण फसल तिलहनी हमारे

0: निमाड़ क्षेत्र के लिए और यहाँ के क्लाइमेट और सॉइल के लिए उपयुक्त है। हम समझते हैं कि आप सभी को इसका लाभ जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: भाई बहनों ने अभी हम सुने रहा था मूंगफली की वैज्ञानिक खेती विषय पर ये वार्ता। जानकारी दे रहा था कृषि विज्ञान केंद्र बुरहानपुर का कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर कार्तिकेय सिंह जी। न अब समय छे आज का कृषि समाचार को। तो आज का कृषि समाचार इना प्रकार से छे। मध्य प्रदेश में कृषक कल्याण वर्ष 2026 का अंतर्गत किसान भाई न को कृषि की नई तकनीक, उन्नत खेती, प्राकृतिक कृषि और शासन की जन कल्याणकारी योजना की जानकारी देना का लेन जिला का सभी विकास खंड में एक एक कृषि रथ अभियान 16-25 मई तक चलायो जाएगा। प्रत्येक विकास खंड में संचालित कृषि रथ हर दिन 3 गांव न में घूमगा और किसान भाई न को कृषि विभाग और संबद्ध विभाग की योजना न की पूरी जानकारी देगा। अभियान का माध्यम से किसान भाई न को फसल विविधीकरण, उन्नत बीज, मिट्टी स्वास्थ्य प्रबंधन, जैविक और प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण, आधुनिक कृषि यंत्र का उपयोग न की उपयोग न कृषि आधारित स्वरोजगार गतिविधि का संबंध में जागरूक किया जाएगा। कृषि रथ का माध्यम से किसान भाई न को कई विभाग द्वारा संचालित योजना जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, उद्यानिकी योजना, पशुपालन, मत्स्य पालन और कृषि यंत्रीकरण संबंधी जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी। एक अतिरिक्त कृषि वैज्ञानिक और विभागीय अधिकारी न का द्वारा किसान न की समस्या को समाधान करेगा उनका मौसम आधारित कृषि सलाह भी दी जाएगा। ये था हमारा कृषि समाचार। न अव जानकारी मौसम न मंडी भाव की। सबसे पहले खंडवा अनाज मंडी से प्राप्त उपज न का भाव की जानकारी न प्रकार से। सोयाबीन न्यूनतम भाव रहो 3000 रुपया प्रति क्विंटल, न अधिकतम भाव रहा 7900 रुपया प्रति क्विंटल। गेहूं को न्यूनतम भाव रहो 1912 रुपया प्रति क्विंटल, न अधिकतम भाव रहा 2490 रुपया प्रति क्विंटल। चना को न्यूनतम भाव रहो 5200 रुपया प्रति क्विंटल, न अधिकतम भाव रहा 5701 रुपया प्रति क्विंटल। मक्का को न्यूनतम भाव रहो 1701 रुपया प्रति क्विंटल, न अधिकतम भाव रहा 1940 रुपया प्रति क्विंटल। तुअर को न्यूनतम भाव रहो 5051 रुपया प्रति क्विंटल, न अधिकतम भाव रहा 7050 रुपया प्रति क्विंटल। ज्वार को न्यूनतम भाव रहो 2000 रुपया प्रति क्विंटल, न अधिकतम भाव रहा 2251 रुपया प्रति क्विंटल। मूंग को न्यूनतम भाव रहो 5250 रुपया प्रति क्विंटल, न अधिकतम भाव रहा 7400 रुपया प्रति क्विंटल। डालर चना को भाव रहो न्यूनतम भाव रहो 5775 रुपया प्रति क्विंटल, न अधिकतम भाव रहा 7430 रुपया प्रति क्विंटल। तो ये थी खंडवा अनाज मंडी से प्राप्त उपज न का भाव की जानकारी। न अब जानी लो मौसम को हाल। आज सूर्योदय सुबह 5:45 पर हुयो, न सूर्यास्त शाम 6:58 पर हुयो। न आज का दिन को अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रहो, न रात को तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना छे। भाई बहनोणी मौसम मंडी की जानकारी के बाद सुनी लेवा जियो निमाड़ी लोकगीत जेक गायो मोहन पुजारी अरु साथी नाना।

भाई बहनोहणी, अब कार्यक्रम को समय भी पूरा होने में छे। न हम आपसे विदा लेवा ओका से पहले बता देवाज, आज कार्यक्रम का दौरान पूछा गया प्रश्न को उत्तर। आज को हमारो प्रश्न थो, पशु न आयु की गणना कसी की जाज। नए को उत्तर छे कि पशु न की आयु उनका दांत न का घिसाव और उस सींग पर बने छल्ला का आधार पर की जाज। भाई बहनोणी, इना प्रश्न का उत्तर का साथ हज हमारो आज को खेती गृहस्थी कार्यक्रम यहाँ पूरा होज। आज्ञा देव आपकी बहन निरुपमा मिश्रा का राम राम।

यह आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। अब से कुछ ही देर में सुनिए राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम। आइए।

आज के हवा महल में प्रस्तुत है झलकी, ये भी खूब रही। लेखक उर्मिला मिश्रा, निर्देशक चंद्रप्रभा भटनागर।

0: अरे इतनी जल्दी हो आए दोस्त के घर?
1: मैं तो तुमसे कहकर गया था कि फटाफट लौट कर आता हूँ। तुम्हारी याददाश्त का इस उम्र में ये हाल है, तो हमारी अम्मा की उम्र तक पहुँचोगी तब क्या होगा?
0: होगा वही जो होना होगा। जब कुछ और नहीं बोलने को तो लगे मेरा मजाक बनाने। जरा बताओ तो, तुमने मुझे कब कहा था जल्दी आने को?
1: हे भगवान, इसका मतलब तुम्हें दूसरी बात भी नहीं याद होगी। क्यों
0: दूसरी बात? ये दूसरी बात कौन सी है? मैं कहती हूँ अगर दोबारा ही कह दोगे तो कौन सा आसमान फट पड़ेगा, आखिर इंसान हूँ, भूल गई होंगी।
1: अब आई ना रास्ते पर, यही तो मैं चाहता था कि अपनी गलती मानो, वरना तुम औरतें बोले चली जाओगी, घंटों बहस करोगी पर अपनी गलती नहीं मानोगी।
0: अरे बाबा, अब तो मान ली ना गलती, अब तो बोलो ना।
1: फटाफट तैयार हो जाओ, गुप्ता जी के घर जाना है।
0: याद आया, उनके बेटे की बर्थडे पार्टी में।
1: जी हाँ, वही जाना है। पार्टी तो बस कहने की बात है, यूँ समझ लो हम तुम उनके खास लोगों में हैं।
0: सो तो है।
1: हाँ, लेकिन ये सोच कर चलो कि पार्टी में नहीं डिनर में जाना है। अरे 6 बजे का समय और 5:15 बज चुके हैं।
0: अरे लेकिन लेकिन क्या खाली हाथ जाऊंगी? मैंने तो कुछ मंगवाया भी नहीं।
1: कुछ मंगवाया भी नहीं, बस हिला दी 2 टके की जबान। हे भगवान, पत्नी मिले तो पत्नी जैसी, नहीं तो
0: नहीं तो क्या? जरा फिर से तो कहो।
1: क्या कहूं, अजी लानत है अपनी अक्ल की। दुनिया भर की बीमारियों का इलाज करता हूँ किताब पढ़ पढ़ कर, और तुम्हारे भुलक्कड़पने के इलाज की याद नहीं रहती। ठीक है, हंस लो। जब ओखली में सर डाला तो मूसलों से क्या डरना। जाता हूँ पर कहाँ जाऊँ, क्या लाऊं, अरे कितने का लाऊं?
0: अरे वैसे तो बड़े अकल वाले बनते हो और इतनी जरा सी बात मुझसे पूछते हो। जैसी रकम हो जेब में और जिस डिग्री की दोस्ती हो वैसा ही प्रेजेंट ले आओ। लेकिन हाँ, अगर मेरी बात मानो तो ये प्रेजेंट रेजेंट का चक्कर रहने दो। बढ़िया से लिफाफे में रख कर पूरे 5 रुपए का नोट दे दो।
1: क्यों नहीं, बड़ा खूबसूरत लगेगा ना। अजी डॉक्टर का बेटा है, तुम्हारे नौकर का नहीं, आखिर अपनी भी तो कुछ इज्जत है।
0: अजी तो कौन मना करता है, जाइए जाइए, जितना जी चाहे लुटा आइए। यहाँ मैं महीने भर से एक जोड़ी चप्पल के लिए रिरिया रही हूँ, इस पर ये महीने का आखिर, कहाँ से लाऊं रोज रोज लोगों को देने के लिए बर्थडे प्रेजेंट। अच्छा धंधा बना लिया है लोगों ने, जितना खिलाते पिलाते नहीं उससे चौगना तो वसूल कर लेते हैं।
1: और जब अपने छटूले की हैप्पी बर्थडे मनाती हो तब?
0: तब क्या, मेरा तो एक ही है, साल में एक ही बार तो लेती हूँ सबसे। लेकिन यहाँ तो लोगों के 4-4, 6-6 हैं। अगले महीने फिर तैयार रहना गुप्ता जी के घर कुछ देने को। अजी तुम लोगों का क्या, ये तो हमारे दिल से पूछो कि कितनी महंगी पड़ती है दूसरों की खुशियाँ।
1: लेकिन पहुँचने के बाद तो खूब खीसे बघार कर कहती हो हैप्पी बर्थडे।
0: वो तो एक्टिंग करती हूँ, कोई मेरे दिल से पूछे। अजी तुम क्या जानो, ज्यादातर तो लोग ऐसी ही छोटी खुशी दिखाते हैं। भूल गए उस दिन मिसेस कटारा कैसे कह रही थी, जाने कहां से चल गया है हैप्पी बर्थडे का चलन, मुंह अंग्रेज चले गए पर अपनी मूंछ के बाल यहीं छोड़ गए इस अंग्रेजियत के रूप में।
1: लेकिन मानो या ना मानो, ये अंग्रेजियत का भूत तुम औरतों पर ही सबसे ज्यादा चढ़ा है। अंग्रेजी की ABCD नहीं लिख पाएंगी लेकिन हैप्पी बर्थडे जरूर गाएंगी। अरे ये भी कोई तरीका है कि जन्मदिन जैसे शुभ दिन पर जलती ज्योति बुझाई जाए।
0: अब बाजार भी जाओगे या यहीं खड़े खड़े भाषण देते रहोगे?
1: जाता हूँ लेकिन अब तो देर हो ही गई, थोड़ी देर और सही। हाँ तो मैं कह रहा था कि हमारी अम्मा।
0: अरे बस बस, हमारी अम्मा अजी उनके गुणगान बाद निकाल लेना। हाँ? पहले
1: साफ साफ क्यों नहीं कहती कि हमारी अम्मा की तारीफ तुम्हें सुहाती नहीं, उनकी बराबरी कर लेना तब कहना।
0: मुझे नहीं करनी उनकी बराबरी।
1: क्या धूमधाम से

0: मनाती थी वो हमारी सालगिरह। नए कपड़े, माथे पर तिलक, मंगल दीप, पूजा पाठ, बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया करते थे हम लोग। आजकल के बच्चों की तरह माँ बाप से तय नहीं करते थे कि अब की बर्थडे पर ये देना वो देना।
1: ओहो, मुझे तो लगता है आज तुम ऑफिस से भांग खा कर आए हो। अभी तो इतनी जल्दी थी और अब।
0: हाँ हाँ, अब क्या, हमारी अम्मा की बात। हाय हाय, ढोलक मजीरे के साथ जो गीत होते थे वो तुम क्या जानो। अम्मा का एक गाना तो अभी तक याद है, क्या कहते, हाँ, लाल झुलैया लाल कपल नारे झुलैया।
1: अभी झुलैया लाल को बाद में गाना, और तुम भी बाद में झूला झूलना। मैं कहती हूँ पहले बाजार तो जाओ।
0: जाता हूँ, अभी गया, बस ये गया और ये आया।
1: हाँ हाँ, ये गया और ये आया। अच्छी प्रेजेंट लेने जा रहे हो या हरी धनिया की गड्डी? अब देर तो हो ही गई है, ठोक बचा कर पैसे खर्च करना, पैसा फालतू का नहीं है।
0: ओहो, अरे अब जाने तो दो।
1: एक बात तो रही गई।
0: क्या?
1: तुम्हारा हाल तो मैं जानती ही हूँ, ऐसे ही बस पैकेट लेके चले आओगे, जरा रंगीन कागज में बंधवा कर लाना।
0: अच्छा भाई, ठीक है।
1: ठीक तो है, मगर सुनो, वो एक चिट पर कुछ छपा रहता है मुआ अंग्रेजी में, वो भी लगवाए लाना पैकेट पर, समझ गए ना?
0: ओ, ज्यादा समझाओगी तो मुझे चक्कर आ जाएगा, अब जाने भी दो।
1: अरे तो जाओ ना, कौन रोके है तुम्हें, बस जरा सी मेरी एक बात सुनते जाओ।
0: अभी क्या कुछ और बाकी रह गया है सुनाने को?
1: देखो जी, जल्दी जल्दी मत जाना, सड़क पर बड़ी भीड़ रहती है, देर तो हो ही गई है। बिल्कुल फिक्र मत करना, हम जितनी देर में पहुंचेंगे उतने ही इत्मीनान से बैठकर खाएंगे।
0: क्यों नहीं, तुम्हें तो कोई और काम है ही नहीं, और भी कोई फिक्र है सवाए खाने के? अच्छा तो मैं जाऊं?
1: जाओ ना। बैठिए, आज इधर कैसे भूल पड़ी?
2: अरे अपनों ही के घर तो इत्मीनान से आया जाता है ना, क्यों मिसेस कटारा?
3: और नहीं तो क्या? आप कहीं से अभी अभी आ रही हैं क्या?
1: आई नहीं हूँ, जा रही हूँ, असल में एक जगह हमारी दावत है आज वहीं।
3: अरे हम तो आए थे कि भी आज जमकर यहीं बैठेंगे।
2: फिर तो भला तुम हमारे लिए चाय भी कहाँ बनाओगी? आइए, ये मिसेस कटारा, किचन में चाय बनाना है।
3: क्यों मिसेस माथुर, कोई ऐतराज तो नहीं?
1: अरे ऐतराज की क्या बात है, घर आपका, किचन आपका।
3: और क्यों नहीं, आइए मिसेस तलवार,
2: चलिए चलिए
3: चाय बना लाते हैं।
1: सुनिए प्लीज, बुरा मत मानिएगा।
3: हाँ नहीं नहीं, मैं भी जरा सा तैयार हो जाती हूँ जल्दी जल्दी जाने के लिए। हाँ बिल्कुल तैयार हो लीजिए। अरे मिसेस माथुर, ये भगोने में क्या रखा है?
1: भगोने में? अरे वो तो डोसे का घोल है।
3: डोसा?
1: हाय राम, मैं तो भूल ही गई थी। हे भगवान, इस डिनर के चक्कर में ये घोल लगता है धरा ही रह जाएगा।
3: धरा क्यों रह जाएगा?
2: अरे हम लोग किस लिए हैं भाई,
3: दुख मुसीबत में अपने ही तो काम आते हैं ना।
1: नहीं, बात ये नहीं, वैसे तो इसे फ्रिज में रख दूंगी, कई दिनों तक उसमें बिल्कुल ताजा।
3: अरे छोड़ो भी कंजूस कहीं।
2: और तुम तो फिर बढ़िया दावत खाने जा रही हो ना।
3: ये डोसे का सामान हम ले जा रहे हैं। आइए मिसेस तलवार,
2: चलिए
3: चलते हैं।
1: अरे सुनिए तो,
3: अरे आप तैयार होके इत्मीनान से जाइए,
4: गैस पर चाय का पानी जला।
3: अरे बना के पीए ना।
4: अच्छा भाई
1: नमस्कार, कहके चल दी, कितना महंगा सामान था, उठा ले गई दोनों, इतनी मेहनत से पीसा था मैंने, जरूर कुछ खाने के चक्कर में आई होंगी, खुद को तो कुछ बनाना आता नहीं है। भगवान करे उनके सारे डोसे खराब हो जाए।
0: अरे ये क्या बड़बड़ कर रही हो अकेले में?
1: अरे तुम आ गए?
0: हाँ आ तो गया, पर पूरे पैसे गल गए तुम्हारे बटुए के।
1: हाय राम, मेरे बटुए के? इसका मतलब फूक आए 25 रुपए। हे भगवान, कितना समझा कर भेजा था तो भी।
0: अरे जाने भी दो, आजकल क्या होते हैं 25 रुपए?
1: क्यों नहीं होते, अब देख ले क्या लुटा देंगे वो अपने गुड्डू के जन्मदिन पर।
0: ओफो, तुम औरतों के दिल कभी साफ नहीं होते।
1: और तुम मर्दों के तो होते हैं, धोबी के धुले कलप लगे क्या?
0: और नहीं तो क्या, तुम औरतों की तरह नहीं कि सामने तो म्याऊं और पीठ पीछे गाली। अरे ये क्या, कोई आया था क्या? ये कुर्सियाँ?
1: आया नहीं, आई थी तुम्हारे चहेतों की खाऊ बीबियां, मिसेस कटारा और मिसेस तलवार, कितनी मेहनत से डोसे का घोल तैयार किया था। हाय हाय, छाले पड़े मेरे हाथों में और स्वाद ले रही होंगी वो दोनों, ले गई उठा के साला अपने घर।
0: अरे छोड़ो,

0: सुनो, आज हमें जो कुछ खाने को मिलेगा उसके आगे दो से क्या चीज है। चलो चलो ना।
1: अच्छा चलो। सुनो जी, यहाँ तो बिल्कुल सन्नाटा पड़ा है।
0: हो सकता है सिर्फ हमें ही बुलाया हो। आगे बढ़ो तो।
1: क्या बढ़ूं आगे, मुझे तो लगता है यहाँ पर कोई बर्थडे नहीं है। सुनो, मिसेस गुप्ता एक दिन अपनी बहन की कोठी के बड़े भारी लॉन की टींगे हांक रही थी।
0: अच्छा?
1: मुझे लगता है कि बर्थडे पार्टी उसी लॉन में होगी।
0: नहीं नहीं, अरे भाई, हाँ, गुप्ता जी मुझसे एक दिन किसी होटल की चर्चा कर रहे थे।
1: होटल?
0: हाँ, मुझे लगता है वहीं पर।
1: लेकिन मैं कहती हूँ उनकी बहन के घर चलने में आखिर हर्ज क्या है।
0: मैं कहता हूँ उस होटल में चलो तो। लो गुप्ता जी और मिसेस गुप्ता आ गए। मैं कहता था मेरी बात हमेशा पक्की होती है, सिर्फ हमें ही बुलाया था। नमस्कार
2: नमस्कार।
3: नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी।
1: अरे हैप्पी बर्थडे बेटे, ये लीजिए आपके लिए प्रेजेंट।
3: थैंक यू अंकल आंटी, लेकिन।
4: अरे तो क्या हुआ बेटे, लगता है तुम्हारे अंकल आंटी को तारीख के मामले में कुछ भूल
0: क्या?
1: क्या
0: तो क्या बर्थडे?
4: जी हाँ, वो तो कल है। अरे तो क्या हुआ? अरे आइए आइए, अंदर आइए।
0: जी अंदर नहीं, आप तो यही बाहर रहने दीजिए। अब जाने भी दीजिए, देर हो जाएगी। हमें दूर जाना है ना।
3: कल तो आना ही है, आएंगे ना?
4: अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं भाई, कल तो आना है।
0: हाँ, जरूर आएंगे बेटे। अच्छा अब चले।
1: हाँ, लो अब क्या होगा?
0: होगा क्या, कल फिर आना होगा। आना ही नहीं, कुछ प्रेजेंट भी लाना होगा।
1: प्रेजेंट तो आज दे तो चुके।
0: लेकिन लोग, तुम्हारी सहेलियां सब क्या कहेंगे, उनके दिखाने के लिए तो।
1: हे भगवान, कैसा मन हो उस दिन था आज का।
0: अरे भाई अब चलोगी भी? यहाँ तो हमारे भूख के पेट में चूहे उचक रहे हैं।
1: हाय हाय, मेरा दोसे का घोल होता तो दोसे बन जाते, खा रही होंगी वे दोनों चटखारे मार मार।
0: ओहो, क्या उसके अलावा और कुछ नहीं है घर में?
1: है क्यों नहीं। लेकिन सुनो, चलो मिसेस कटारा के घर चलते हैं, अभी तो दोसे बन ही रहे होंगे।
0: हाँ ये ठीक है, चलो चले।
5: किसको चाहते हैं आप?
1: मेम साहब हैं घर पर?
5: साहब घर पर कोई नहीं है।
0: क्या, कहाँ गए सब?
5: मेम साहब की सहेली के घर गए हैं। आज तलवार मेम साहब के साथ दोसे की दावत में।
0: दोसे की दावत में? लेकिन दोसे का घोल तो हमारे घर से लाई थी, उसका क्या हुआ?
5: अरे साहब, उसी घोल के तो दोसे खाने गए हैं वो लोग। मेम साहब को तो दोसे बनाना आता ही नहीं था, उनकी सहेली ने कहा मैं बना दूंगी, बस चले गए वहीं सब लोग।
1: लो जी, यहाँ भी सारा मामला साफ है।
0: अरे गए काम से। अरे क्या हुआ, इतनी जोर से चौंकी क्यों?
1: अरे घर में गैस पर चाय का पानी चढ़ा था और गैस बंद नहीं की थी। हाय हाय, इन दोनों कमबख्तों ने तो आज मेरा कबाड़ा ही कर दिया। दोसे का घोल गया, अब देखो भगोना भी सही सलामत नहीं होगा और गैस का सिलेंडर जरूर खाली हो गया होगा। अब घर किस हालत में मिलता है।

उर्मिला मिश्रा की लिखी झलकी आप सुन रहे थे। ये भी खूब रही, निर्देशक चंद्रप्रभा भटनागर। इसी के साथ आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम की पहली पेशकश सनी और शंकर महादेवन की आवाजों में जावेद अख्तर के बोल हैं और संगीत है शंकर शाल लॉय का। फिल्म पंगा।

अभी आपने शंकर ईशान लॉय के संगीत निर्देशन में पंगा फिल्म का गीत सुना। शंकर ईशान लॉय के संगीत निर्देशन में एक और गीत सुनिए, आवाजें जावेद अली और हमसिका अय्यर की। फिल्म का नाम है इट्स माय लाइफ।

चित्रलोक कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। लीजिए सुनिए सोनू निगम और श्रेया घोषाल को। संगीत तैयार किया है विक्की प्रसाद ने बोल गरिमा बहाल के। फिल्म का नाम टॉयलेट एक प्रेम कथा।

अब सुनिए पलाश मुच्छल के संगीत निर्देशन में पलक मुच्छल का गाया और साथ में इस गीत को गा रहे हैं पलाश भी और साथ में आतिफ असलम भी। बोल है पलक मुच्छल की फिल्म का नाम स्वीटी वेड्स एनआरआई।

मोहित चौहान के गाए इस गीत के साथ ही चित्रलोक कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गॉर स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड

पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। पश्चिम बंगाल सरकार ने भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोग गठित किए और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया।

0: की जांच के लिए दो जांच आयोग गठित किए और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनास गोरस्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था लेकर हरित शिपिंग तक के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत की क्षमता, गति और प्रतिभा का उपयोग करते हुए नॉर्वे की प्रौद्योगिकी और पूंजी के सहयोग से भारतीय कंपनियां वैश्विक समाधान विकसित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूँ तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
0: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके।
1: रिसर्च, एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर्स बने हैं। आज हमने सस्टेनेबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंजीनियरिंग, एआई, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर अपने पार्टनरशिप को फ्यूचर रेडी बनाएंगे।
0: द्विपक्षीय बैठक में उच्च तकनीक, स्वास्थ्य समाधान, डिजिटल स्वास्थ्य, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने नियम आधारित विश्व व्यवस्था में अपने साझा विश्वास और संवाद तथा कूटनीति के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है।
0: प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम द्वारा रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, पीयूष गोयल, मनोहर लाल और किरेन रिजिजू सहित कई अन्य मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। गृहमंत्री ने कहा कि 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के विस्तार का प्रतीक है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि यह सम्मान मोदी के सशक्त नेतृत्व और विश्व भर में भारत के बढ़ते सम्मान को दर्शाता है। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह सम्मान वसुधैव कुटुंबकम के चिरस्थायी सिद्धांतों के माध्यम से वैश्विक सद्भाव को मजबूत करने के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्वीडन के उनके यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये पहल महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और

0: बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 और 20 तारीख को इटली में होंगे। यह दौरा 5 देशों की यात्रा का अंतिम चरण है, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुँच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्ष में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि यही आत्मनिर्भर भारत की सच्ची पहचान होगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जोश है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और निर्यात भी बढ़ रहा है।
2: भारत का बना हुआ सामान, भारत से दी हुई सेवाएं और अधिक तेजी से आगे बढ़े। हम संतुष्ट ना हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कभी संतुष्ट ना हो और आगे बड़ा छलांग लेने की सोच और क्या कर सकते हैं उसके लिए पूरे समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा।
1: भारत में परमाणु क्षेत्र में निजी निवेश और उद्योग सहयोग के उभरते अवसरों के बारे में उच्च स्तरीय अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल ने आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल के इस दौरे में अमरीकी परमाणु उद्योग के वरिष्ठ प्रतिनिधि, व्यावसायिक हितधारक और नागरिक परमाणु ऊर्जा तथा उन्नत प्रौद्योगिकी में भारत अमरीका सहयोग से जुड़े अधिकारी शामिल थे। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच आज विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और उभरते क्षेत्रों में मजबूत और भविष्योन्मुखी साझेदारी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अंतर्गत भारत के दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश में तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
3: कमर्शियल LPG की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 PNG कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने PNG कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।

इस बीच सरकार ने YouTube के उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत में केवल 9 दिन का तेल भंडार बचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावे को भ्रामक बताते हुए कहा कि देश में लगभग 60 दिन के कच्चे तेल का भंडार है और शोधन क्षमता भी पर्याप्त है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं पर अत्याचारों पर गठित आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चैटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने 5 स्थानों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी और लू की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: यह परामर्श आम लोगों, कामगारों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा खेल आयोजनों में शामिल लोगों के लिए जारी किया गया है, ताकि वे गर्मी और लू से होने वाली बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। इसमें कहा गया है कि शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग और दिल की बीमारी या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रसित लोग लू के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं, इसलिए इनकी विशेष देखभाल और निगरानी जरूरी है। परामर्श में कार्यस्थलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और बाहरी गतिविधियों के लिए खास सावधानियां बताई गई हैं। में छायादार आराम स्थल की व्यवस्था, समय समय पर पानी पीने के लिए ब्रेक और लू के लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गोलस्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत कार्यक्रम आपके लिए।

अभी आपने किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म घर में सुना। गीतकार थे गुलजार, संगीतकार आरडी बर्मन। अब सुनिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी का लिखा गीत, आवाज लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम इज्जत।

0: छाया गीत
1: लग जा गले।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। अगला गीत आशा भोसले और सुरेश वाडकर का गाया हुआ फिल्म है परिंदा। खुर्शीद के लिखे इस गीत की धुन बनाई है आरडी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपके लिए। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ। यह है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था। लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा

0: भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
1: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी। हा, हा।

0: तुमको मुझसे प्यार है। बागों में बहार है।
1: वो जो बहुत खूबसूरत हैं, चुलबुली हैं, भोली हैं, भोले भोले चेहरे से बड़ी सहजता से संवाद बोल देती हैं, जो कभी सहनायिका थी अभिनेता राजेश खन्ना की। प्यारी भोली मासूम आवाज में बोलने वाली फनकार, आज उन्हीं पर केंद्रित है हमारा ये कार्यक्रम। इनका नाम है फरीदा जलाल।

0: प्यार है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: अगर आपने फिल्म आराधना देखी होगी तो इस दृश्य को जरूर देखा होगा। इनके साथ अभिनेता थे राजेश खन्ना। इस फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया गया था। फरीदा जलाल का फिल्मी कैरियर सन 1967 से फिल्म तकदीर से शुरू हुआ।

1949 में फरीदा जलाल का जन्म हुआ था नई दिल्ली में। शुरू की युवा आयु में जब इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी तो इन्होंने कई फिल्मों में अलग अलग भूमिकाएं की, सखी के रूप में, बहन के रूप में, और ये भूमिकाएं सराही गईं। फिल्म तकदीर में गोपाल की छोटी लड़की की भूमिका निभाई।

सन 1973 में एक फिल्म आई थी लोफर। इस फिल्म में अभिनेत्री फरीदा जलाल ने रूपा की भूमिका निभाई थी, जो कि गोपीनाथ की बेटी है। इसी फिल्म का गाना सुनिए।

0: चर्चित फिल्में बहारों की मंजिल 1968 में, महल 1969 में, आराधना पुरस्कार, नया रास्ता 1970 में, गोपी देवी, पारस में बेला देवी नाम से भूमिका को जीवंत किया और इस फिल्म पारस के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का इन्हें अवार्ड दिया गया। एक और पुरस्कार इन्हें दिया गया BFJA अवार्ड। इस फिल्म में अभिनेता संजीव कुमार की बहन की भूमिका फरीदा जलाल ने निभाई थी। आइए सुनते हैं पारस फिल्म का गाना।
1: अरे या या या या या या या।

0: करना आपके नाम जीते रहो। जुगनी कहती है बागपति की, जुगनी कहती है बागपति की।
1: सन 1971 में अमर प्रेम प्यार की कहानी जिंदगी जिंदगी, रिवाज, बुनियाद, हीरा, बॉबी, जिसमें इन्होंने चरित्र अभिनेत्री के रूप में काम किया, जिसे फरीदा जलाल ने बहुत ही सहजता से निभाया। बॉबी फिल्म में एक ऐसी धनी लड़की की भूमिका निभाई जो मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। उस अमीर लड़की को हीरो पसंद इसलिए करता है क्योंकि उसके पिताजी चाहते हैं कि इस अमीर लड़की से उनका बेटा शादी कर ले। फिल्म पारस के बाद इन्हें एक और पुरस्कार दिया गया फिल्म मजबूर के लिए, यानी कि मजबूर फिल्म की कहानी सलीम जावेद की जोड़ी ने लिखा था। अभिनेता अमिताभ बच्चन इसमें हीरो थे। इस फिल्म में फरीदा

सांस्कृतिक रूप से विक्षिप्त थी। उस अमीर लड़की को हीरो पसंद इसलिए करता है क्योंकि उसके पिताजी चाहते हैं कि इस अमीर लड़की से उनका बेटा शादी कर ले। फिल्म पारस के बाद इन्हें एक और पुरस्कार दिया गया फिल्म मजबूर के लिए, यानी कि मजबूर फिल्म की कहानी सलीम जावेद की जोड़ी ने लिखा था। अभिनेता अमिताभ बच्चन इसमें हीरो थे। इस फिल्म में फरीदा जलाल ने उनकी बहन की भूमिका निभाई थी। बहुत ही बेबसी और मजबूरी का अभिनय किया था फरीदा जलाल ने, जो बहुत लाजवाब था।

फरीदा जलाल ने 40 वर्ष की उम्र तक सिने जगत में अभिनय किया। 1983 और 1990 के बीच में फिल्मों से ब्रेक लिया और बेंगलोर जाकर शिफ्ट हो गईं। 1990 वर्ष के दौरान फरीदा जलाल ने अपना फिल्मी करियर फिर से शुरू किया और कई मेजर हिट फिल्म में चरित्र अभिनेत्री का किरदार निभाया। 1991 में हिना फिल्म में बीबी गुल की भूमिका निभाई और इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड से नवाजा गया। 1991 के बाद भी कई फिल्में आईं जिसमें इन्होंने तरह तरह की चरित्र अभिनेत्री की भूमिका निभाई। फिल्म पायल, बेखुदी, कल की आवाज, दिल आशना है। 1993 में गर्दिश। सन 1994 में फिल्म आई थी मम्मो, जिसमें फरीदा जलाल ने महमूदा बेगम अनवर अली उर्फ मम्मो का किरदार निभाया था। बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी, बहुत ही दमदार अभिनय था। इस फिल्म के लिए फरीदा जलाल को 2 अवार्ड मिले, एक तो फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए और दूसरा

दूसरा अवार्ड बंगाल की जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया। सन 1995 में दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म रिलीज हुई, जिसमें लाजवंती यानी लाजों की भूमिका फरीदा जलाल ने निभाया और इन्हें अवार्ड दिया गया फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का।

सन 2000 में हे राम फिल्म में कस्तूरबा गांधी की भूमिका फरीदा जलाल ने निभाई। इस भूमिका को बहुत सराहा गया। यही फिल्म हिंदी और तमिल में साथ साथ बनाई गई। ये फिल्म थी हे राम। सहनायिका बहन, पत्नी, माँ, ढाई माँ, दादी माँ, इस तरह की भूमिकाएं आगे चलकर फरीदा जलाल को मिली और सभी भूमिकाओं में इन्होंने अपने खास अंदाज में जान फूंक दी। सन 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर, 2015 तक अनेक चरित्रों को पर्दे पर इन्होंने साकार किया। सन 2012 में फरीदा जलाल को ए ग्रैंड प्लान फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया हार्लेम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल।

1990 के बाद की कई फिल्में बहुत चर्चित रहीं। फिल्म राजा हिंदुस्तानी, कहो ना प्यार है, कभी खुशी कभी गम। फरीदा जलाल ने कई टेलीविजन सीरियल में भी काम किया, जिसमें देख भाई देख हिट सीरियल था। फरीदा जलाल ने कॉमेडी रोल भी अदा किए। थोड़ा जादू थोड़ी नजाकत, इसमें आपने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया, यूं कह सकते हैं कि लीडिंग रोल था। सन 2005 में मुंबई में 50वें फिल्म फेयर अवार्ड के स्टेज पर इन्होंने एंकरिंग की। साथ में थे सैफ अली खान और सोनाली बेंद्रे। पंजाबी फिल्म यारिया में एक विशेष भूमिका में फरीदा जलाल नजर आईं। सन 1978 में इनका विवाह एक्टर तब्रेज

0: मैं दूसरों की बात नहीं करता, आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में, बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
1: ऐसी अद्भुत यादें।

गई। ये दिल जो गमगीन हुआ था और ये नजरें भी जो खफा हो गई। चलो भूल जाते हैं वो बातें कल की और करें एक शुरुआत नई।

कैसे बताएं कि जो मोहब्बत खिली है हमारे बीच वो कितनी है। चमचमा रहे हैं जो आसमान में, गिन लो उन्हें, ये तो बस उन सितारों जितनी है।

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत।
1: तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या।

बोल दिए हैं अनकहे बोल, बजने लगी है मोहब्बत की सरगम, कैसा इत्तेफाक है, सज रही है उम्मीद की वादियां और बस गई हैं अरमानों की बस्तियां, ये कैसा इत्तेफाक है।

0: संगीत के कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था से लेकर शिपिंग तक के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
2: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं, तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
1: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई, ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। द्विपक्षीय बैठक में एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते सहित कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। यह यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्ज

या मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला से भी मुलाकात करेंगे। श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्षों में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया। यह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5% अधिक है। उन्होंने कहा कि वस्तुओं और सेवाओं दोनों के निर्यात में वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जांच समिति ने आज अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। यह रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 181 रनों का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 15वें ओवर में 2 विकेट पर 131 रन बना लिए थे। चेन्नई की ओर से कार्तिक शर्मा ने 44 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।